0: Kia ora, bula, salam, namaste, sat sri akal. Main hu abhi aapke saath mein, jabki aaj hai 12th of August. Aise mein aapka saath dene ke liye apna garma garam lunch lekar aaya hoon. Aur ye jo show hai, isko kehte hain lunch box. To aise mein jo tiffin hoti hai, jo khushbudar aur saath mein jo aapke lunch boxes hote hain, isko enjoy karne ke liye aur aapke saath mein share karne ke liye. अभी से लेकर शाम तीन तक हमारा और आपका साथ रहेगा 104.2 FM साथ में रोवा पर. खास आपके लिए आज ये जो कारवा है मैं लेकर आया हूँ, ताकि आपके साथ में ये जो खूबसूरत पल है ये बांट सकूँ. तो चलो शुरुआत करते हैं आपके साथ में, एंड कीप हमिंग, अभी का साथ है.
1: बचाओ क्या?

0: हम पर, मैं हूँ अभी आपके साथ में और अब थोड़ी ही देर में आपके साथ में ऑफिस शाउट आउट रहेगा। लेकिन कल एक प्यारा सा मैसेज आया था और आपने लिखा था कि हमको भी याद कर लेना, तो चलो ऑफिस शाउट आउट में बस थोड़ी देर में आपको भी शामिल कर लेंगे और ताकि आप भी खुश रहे। अपना जो लंच है, आप लंच में खास ये सुना करते हैं प्रोग्राम को, तो आपको खुश रहना और रखना हमारा काम है।
1: लंच बॉक्स विद केतन,
2: मुझे पसंद है लड़का।
1: हम
3: We gotta go. Are you ready?
4: Come and take a trip with me.
5: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
6: Vacation. Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
7: Let's go.
6: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
8: Does someone in your house sound like this? Or like this? Does the wheezing and coughing stop them getting out and living a normal life? They need to take the cough test. Go to coughtest.co.nz. Take the cough test and show it to the doctor. Coughtest.co.nz. It's free. Prescription medicine. Medicines have risks and benefits. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
9: पूजा की थाली में राखी सजाते हैं, धागों के जुड़ने से दिल मिल जाते हैं, माथे पे रोली का तिलक लगाते हैं और मीठे की मिठास से अपनों को करीब लाते हैं। इस रक्षाबंधन दीजिए अपने अपनों को कुछ ऐसा जो उन्हें उनके होने का एहसास दिलाए। सोना संसार के साथ, जहां आप पा सकते हैं बेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन फॉर योर लव्ड वंस। सोना संसार, 190 स्टॉडर्ड रोड माउंट रॉस्किल और 138 ग्रेट साउथ रोड पापा तोए तोए। सोना संसार, संसार रिश्तों का।
10: At Bunnings, we've got gifts built for Dad, like the Jack Garden Upwall System, only $85.95. Ryobi 1 Plus 18-volt pruning saw, tool only, just $149. That's Father's Day sorted at Bunnings.
11: Bunnings Warehouse.
10: Lowest prices are just the beginning.
12: And now the latest in sport. Teams are gearing up this week for $10 deals on Uber Eats. Holy... And now time for a break, I think. Find Ding Dong Deals on Uber Eats.
13: Contact supportive promo not applied. T's and C's and fees apply.
14: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This Easter, Bali and Bangkok. One epic trip. 5-star all-inclusive stays. Breakfast, lunch, dinner sorted. Return flights from Auckland to Bali to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
15: चॉइस आपकी है एट विंगर मोटर्स। सेलेक्टेड नए ओमुडा और जेकू मॉडल्स पर पाइए 3.9% फाइनेंस या $2,000 कैशबैक। प्रीमियम डिजाइन, टेक्नोलॉजी और जबरदस्त वैल्यू, सुपर हाइब्रिड सिस्टम के साथ रोज के सफर इलेक्ट्रिक और लंबी जर्नीज के लिए पेट्रोल की कॉन्फिडेंस। 1100 किलोमीटर तक की कंबाइंड रेंज, प्लस एंजॉय 7 ईयर अनलिमिटेड किलोमीटर व्हीकल वारंटी। विजिट विंगर मोटर्स ईस्ट ऑकलैंड नॉर्थ शो और पुकेकोई या winger.co.nz। ऑफर एंड्स August 31st। क्रेडिट क्राइटेरिया, फीस, टीज एंड सीज अप्लाई।
16: Get ready!
14: Passengers, stand by. The next hum boarding call could be your ticket to paradise. Listen out and get ready for your chance to win two return air tickets to Vanuatu and $1,000 spending money.
6: Thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
1: Lunchbox with Ketan.
17: Heera ladka hai. Telescope leke dhoondega na, to bhi isse better ladka nahi milega tujhe.
1: Hum.
0: हम पर लंच बॉक्स में अब समय हुआ ऑफिस शार्ट आउट का, जहां पर डाटाकॉम से कैश हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और आपने कहा है कि अक्सर इस आवा पर, यानी कि लंच बॉक्स में मैं सुनता हूं आपका शो। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आपको याद करते हैं जबकि डाटाकॉम से आप हम के साथ में रोवा पर अक्सर जुड़ जाते हैं। थैंक यू सो मच इसके लिए। चलो, हमने आपको याद किया है। अगला जो गाना आपके लिए बजाएंगे, इसमें आपको और साथ में आपके बेटे हैं साहिल, सनीश, सनब और साथ में आपकी पत्नी है कविता, आपको भी शामिल करते हैं।
2: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

लंच बॉक्स एक ऐसा शो है जहां पर एक के बाद एक कुछ ना कुछ आपके लिए लाइंड अप रहता है और बस थोड़ी ही देर में आपके साथ में शेयर करेंगे चटनी शॉट्स और ये भी रहेगा। तो इसी तरह से आप हमारा साथ देते रहिए जबकि रोवा पर आप हमें सुन रहे हैं और साथ में 104.2 FM पर आप कहीं भी हमें सुन रहे हैं आपका खास स्वागत करते हैं। 5599 पर आप अपने मैसेजेस भेज सकते हैं और इसके अलावा आपको ये भी बता दें हमका जो फेसबुक पेज है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ पर जाकर हमें फॉलो करें क्योंकि यहाँ पर भी आपके लिए प्रमोशंस रन किए जाते हैं। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। यू कैन बी अ विनर ऑन आवर फेसबुक पेज एज वेल।

0: हम पर यह है लंच बॉक्स, और कहते हैं ना कि कुछ मामूली चीजों को लेकर गैर मामूली मेमोरीज बन जाती है। तो ऐसा ही एक सोशल मीडिया कंपटीशन है रक्षाबंधन के लिए खास, हम फेसबुक पेज पर रन हो रहा है, जहां पर $300 के इनाम आप जीत सकते हैं। आपको सिर्फ हमारे हम फेसबुक पेज पर जाना होगा और वहां जाकर आपको एक ऐसी ऑब्जेक्ट या यूं कहें कोई चीज को लेकर जहां पर आपके भाई और बहन के बीच में लड़ाई हुई थी, तू तू मैं हुई थी, या फिर कोई फोन मेमोरीज है जिसे आपको इस ऑब्जेक्ट के साथ में जोड़ती है, उसी ऑब्जेक्ट का जो फोटोग्राफ है आपको अपलोड करना है हमारे फेसबुक पेज में, और उसके साथ में नीचे लाइंस में आपको लिखना होगा कि क्यों आपके लिए ये स्पेशल है ऑब्जेक्ट, आपके भाई और बहनों के लिए क्या इम्पोर्टेंट है इसमें। तो ये अपलोड करके अपने कमेंट्स को डालकर अपने सिबलिंग को टैग करें, बस इतना ही करके $300 के इनाम में अपने आप को आप शामिल कर लेंगे, आपकी ड्रॉ शामिल हो जाएगी। हु नोज, फ्राइडे 28 अगस्त को जब ये ड्रॉ हो शायद आप ही विनर ठहरे।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
3: हम। Ladies and gentlemen,
1: unfiltered with Sandy and Rizvi, क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram-friendly stories हैं, और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real, और conversations होते हैं बिना mask के।
4: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
1: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rova, Spotify, or anywhere you get your podcast.
5: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
6: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
7: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
8: You're planning a quick pop to the shops, but then life hits the fan. Luckily, DoorDash now delivers everything from the warehouse. Groceries, PJs, toys, even their new lunchbox. In a dash. Now that's a good call.
9: Dash!
10: Celebrate your favorite big screen icons with pocket-sized pals and oodles of fun. Featuring a blockbuster cast of 40 characters, get one free Disney Ushi with every $30 you spend. Now playing at Woolworths. T's and C's apply while stocks last.
11: Keep business moving with the American Express Gold Rewards Business Card. Pay suppliers today and extend your cash flow by up to 55 days. Plus, with Reward Pay, you can pay almost any supplier in New Zealand and earn points on payments. Get started with 100,000 bonus points worth up to $750 in Amex Travel. Search Amex Business to discover a more rewarding way to pay suppliers. Offer ends 14th of December 26. 1.5K minimum spend in the first 3 months. New Amex card members only. Membership rewards, T's and C's apply, and Reward Pay enrollment required.

0: Shakti Shots.
1: वो हमेशा कहते हैं ना कि बात निकली है तो दूर तक जाएगी. तो लंच बॉक्स में आपको बता दें कि जहां पर फॉरेन मिनिस्टर विंस्टन पीटर्स ने पार्लियामेंट में कुछ ऐसे शब्दों को कहा था जहां पर उनको क्लासिफाई किया गया था उन शब्दों को एज बीइंग रेसिस्ट एंड ऑफेंसिव. तो हालांकि कुछ समय हो गया लेकिन अभी भी ये स्टिल फ्रेश है अमंग द माइंड्स ऑफ जितने भी सिटीजन्स हैं न्यूजीलैंड को के. और इसी को लेकर स्टफ ने एक रिसर्च किया, एक सर्वे किया यूँ कहें. और यहाँ पर पल्स ऑफ द नेशन सर्वे में उन्होंने पार्टनर करके आइडियली के साथ में ये सवाल पूछा है कि कितने लोग सहमत है कि प्राइम मिनिस्टर को फॉरेन मिनिस्टर विंस्टन पीटर्स को सेक कर देना चाहिए इन कमेंट्स को लेकर. तो यहाँ पर कुछ 54% ऑफ वोटर्स ने यह जवाब दिया कि वो अग्री करते हैं कि ऐसे रिमार्क्स के बाद में विंस्टन पीटर्स को सेक कर देना चाहिए एज फॉरेन मिनिस्टर. तो ये लोगों का जवाब है और हमने सोचा आपके लिए चटनी शोट्स में जल्द से लेकर आ जाए.
2: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: ऑफ बॉलीवुड
1: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: थ्रोबैक ब्रॉट टू यू बाय 0800 रचना. इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना. दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन.
2: हम पर अब समय हुआ आपको ले चले यादों की दुनिया में, क्योंकि हमें मालूम है कि इन गानों ने कहीं ना कहीं आपके जहन में एक जगह बना ली है, आपके दिल में एक जगह बना ली है. तो ऐसे में आपको सुनवाते हैं थ्रोबैक विद द काइंड कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ आवर स्पॉन्सर्स. 0800 रचना, इधर उधर जाने से बचना. अगर जो आप घर की तलाश कर रहे हैं, आपको फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए, यूं कहे साउंड फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए, तो बस यही याद रखना 0800 रचना.

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम
2: जब जिंदगी मुश्किल लगने लगे तो आपको अकेले इसका सामना करने की जरूरत नहीं है. पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज पूरे न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है. इनकी एक्सपीरियंस टीम आपकी लैंग्वेज और कल्चर को समझती है ताकि आपको सही समय पर सही सपोर्ट मिल सके. अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जिसका मकसद है मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने को बढ़ावा देना. अगर आपको या आपके किसी अपने को मदद की ज़रूरत है तो एशियन हेल्पलाइन पर 0800-862-342 पर फ्री और कॉन्फिडेंशियल सपोर्ट के लिए कॉल करें या asianfamilieservices.nz पर विजिट करें. ये सूचना एशियन फैमिली सर्विसेज की ओर से है.

0: वेतन।
1: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा तो भी इससे बड़े लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
0: हम
2: अटेंशन एवरीवन, हम बोर्डरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
3: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
2: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: आज के लिए मौसम में बताया गया है कि मिनिमम टेम्परेचर 11 डिग्रीज तक, सनसेट एट 5:46 PM. इसके अलावा शाम होते होते कुछ एरियाज में बारिश भी हो सकती है, तो खुद का बिल्कुल ख्याल रखिएगा।
0: लंच बॉक्स विद केतन,
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
0: लंच के मंच पे You're listening to Avineet.
1: हम पर इज जस्ट आफ्टर वन और मैं हूँ आपके साथ में अभी। और आपको बता दें कि इस हवा पर हमने सोचा कि आपके साथ में जो रेंट लाइन रहेगी, जहाँ पर आप अपना जो दिल का भड़ा से निकाल सकते हैं, उसका टॉपिक ये रखते हैं कि कभी कभी आप किसी को कॉल करते हो या फिर मैसेज सेंड करते हो, ये आपके फैमिली में से कोई होगा या फिर आपके फ्रेंड्स लिस्ट में से कोई होगा, और उधर से ना तो वो फ़ोन उठाते हैं और ना फिर वापस आपको मैसेज करते हैं, ना फिर आपको दोबारा ये कॉल बैक करते हैं। तो इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं कि आपने समय निकाला, आपने उसको उनको कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, या फिर कोई ज़रूरी मैसेज था जो आपने समझा कि इसको अभी दे दे और इसीलिए आपने कॉल करना चाहा, उसके बाद में आपने उस ज़रूरी मैसेज को टेक्स्ट फॉर्म में भी भेजा। और जबकि आप किसी के हाथ में भी देखेंगे तो इन दिनों मोबाइल फ़ोन्स होती हैं, हाँ वो हालांकि बिज़ी हो सकते हैं लेकिन बाद में ज़रूर आपका जवाब ये पलट कर दे सकते हैं या फिर आपका कॉल रिटेन कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ये लैक ऑफ क्वेटिसी है? तो 5599 पर अपना जो जवाब है हमारे पास में भेजिए कि इस सिचुएशन को लेकर आप क्या सोचते हैं कि जब आप किसी अपने को एक कॉल करते हैं या फिर मैसेज ड्रॉप करते हैं और आपको वापस कोई कॉल नहीं आता। Send me how do you feel on 5599.
0: Bachao kya?

0: Lunchtime Rant Line.
1: लंचबॉक्स में जबकि बातें हो रही थी कि आपको कैसा लगता है रेंट लाइन में कि अगर जो आप किसी को कॉल करते हैं, कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं या फिर मैसेज ड्रॉप करते हैं, ना तो वो आपके फ़ोन उठाते या उठाती है, ना तो फिर पलट कर आपको जवाब देते हैं। तो रीमा ने मैसेज किया है कि हमने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया और उन्होंने कहा, मैसेज किया, कॉल यू बैक इन 5, और वो जो 5 मिनट्स था, इट केम बैक अ वीक लेटर। तो ऐसे में ऐसे लोग भी होते हैं आउट देयर जो बिल्कुल रिस्पोंड आपको स्ट्रेट अवे नहीं करते हैं, जैसे कि रीमा ने शेयर किया। और इसके साथ में कुछ और मैसेजेस आए हैं जो हम बस थोड़ी ही देर में देखेंगे। बस सुनते रहिए, हम आपके लिए रेंट लाइन में एक दो मैसेजेस को जरूर और पढ़ेंगे क्योंकि इट लुक्स क्वाइट इंटरेस्टिंग।
0: लंच बॉक्स विद केतन।
2: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
3: इसके पीछे
4: हम। March 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
5: रुजबी, टिकट्स बुक हो गए।
4: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
5: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
4: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
5: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
6: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
7: हेलो एवरीबॉडी।
4: 2 शहर, 1 सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
8: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
4: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
9: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
10: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
11: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279-9439 और विजिट legalassociates.co.nz।
12: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। वी आर ऑकलैंड्स वन स्टॉप फ्यूनरल सर्विस प्रोवाइडर वेयर रिस्पॉन्सिबल ऑप्शंस एंड प्राइसेस आर ऑफर्ड। एंड्स फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रेमेशंस, 11 बोल्डरवुड प्लेस, बीरी। कॉल 24/7 ऑन 09278860.
13: Take your furry friends back to their roots. Add a little Jimbo's. Raw meat mixed into mealtime. Feed as a main meal, topper or treat. Get yours now in your supermarket pet fridge and give your pets the Jimbo's they deserve.
14: It's Woolworths Multi-Buy Week. Get more for less, like Sparkling Duet 1.5 litre bottles are just 2 for $2.50. And Dine Single Cat Food 85 gram, any 10 for just $12. T's and C's apply.
15: डॉक्टर ने क्या बोला?
16: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए।
15: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए, वरना पता भी नहीं चलता।
17: That conversation is happening in more TV homes than you think. Hi, I'm Nitesh Hira from Assured One. My job isn't to just sell policies, it is to help you understand your options and make sure your family is protected.
18: Book your free insurance review today. Call Assured One on 0800-77-HIRA. That's HIRA. Or visit assureone.co.nz. North Endville Advisory Limited, trading as Assured One, is a licensed financial advice provider. For 30 years, Avana Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, Ghee Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
0: Lunchbox with Ketan.
19: मुझे पसंद है लड़का।
0: हम। Lunchtime Rant Line.
1: हाँ, लंच बॉक्स में रेंट लाइन को आगे बढ़ाते हुए संदीप ने मैसेज किया है और उन्होंने बताया है कि जबकि मैं अपने बच्चों को कॉन्टेक्ट करना चाहता हूँ, जबकि इनके पास में फ़ोन 24 आवर्स तक रहते हैं, लेकिन ये मेरे मैसेजेस को इग्नोर कर देते हैं। आई नो हाउ इट फील्स, लेकिन जो है तो यही है। और ऐसे में आपने कहा है कि मैंने उनको एक बार रिमाइंड किया कि ये जो बिल्स है मैं ही भरता हूँ और आप मेरे ही मैसेजेस को नहीं रिप्लाई करते हो। तो ये सभी बातें आपके साथ में आज थी रेंट लाइन में, जबकि संदीप ने भी शेयर किया। इसके अलावा स्वस्तिका ने भी मैसेज किया है, उसने लिखा है कि इट्स डिसअपॉइंटिंग टू सी दैट द मैसेजेस हैव बीन, ओ आप नोटिफिकेशन की बात कर रही है कि आपके मैसेजेस आप देख रहे हैं कि रीड हो चुकी है लेकिन जवाब नहीं आ रहा है। ये भी एक सच है कि लोग आपके मैसेजेस को पढ़ लेते हैं लेकिन जवाब स्ट्रेट अवे नहीं देते, क्या करें, अब आपके साथ में इसको भड़ास में निकाल ही सकते हैं।
0: लंच के मंच पे टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: बेबी को बेस पसंद है।
1: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
3: लंच बॉक्स में कम्युनिटी न्यूज आपके साथ शेयर कर लेते हैं, जबकि न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन आपको इनवाइट कर रहा है टू द फोर्थ न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट जो रहेगा 22nd और 23rd अगस्त को एट बेकनहेड स्काउट्स हॉल। यहां पर रजिस्ट्रेशन के लिए आप जाकर विजिट कर सकते हैं न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन का फेसबुक पेज या फिर NZCA के प्रेसिडेंट पंकज को 02109085067 पर आप कॉल करें।

0: केतन।
1: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
0: हम ड्राइविंग यू होम द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
2: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
3: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
4: वो भी आई लव यू वाला।
3: मैडम ने पकड़ लिया भी, हाँ किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
4: अच्छा आप दिलजीत हो?
3: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
5: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
0: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
5: तो जल्दी ज्वाइन करें टू एंजॉय दी स्पेशल ऑफर्स। और सबसे खास बात, गो बनानास चाइल्ड केयर बीचलैंड्स इज नाउ ओपन एंड ऑफरिंग 12 मंथ्स कंप्लीटली फ्री फॉर अ लिमिटेड टाइम। तो देर मत कीजिए, कॉल 0800-46-26-26 टुडे।
0: अवेलेबल एट सिलेक्टेड ब्रांचेस, टीज एंड सीज अप्लाई।
6: द स्लीपलेस नाइट्स, द एचिंग नीज, द एनर्जी दैट्स नेवर क्वाइट देयर। दे मे बी लिंक्ड टू एक्सेस वेट एंड शुडन्ट बी इग्नोर्ड। Talk to your doctor about your weight and what support is available to you. Weight management takes time and effort to be successful. People should seek professional advice on diet, exercise, and lifestyle changes. Medicines have risks and benefits. Individual results may vary. Eli Lilly New Zealand Limited, Auckland.
7: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
8: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
9: अब हमारा क्या होगा?
10: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना,
8: तो क्या करें?
5: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
11: Welcome to Kebabs Kitchen. I am Chef Alex और ये है मेरी गेस्ट सेरा।
12: क्या बनाते हैं इन कबाब के स्पेशल Chef Alex?
11: Perfect blend of spices, tender meat और fresh vegetables. हर कबाब बनता है with love and passion.
12: Wow, these kebabs are amazing. Spices एकदम right and meat is so juicy.
11: ये है अम्मा's kebabs promise, delivering happiness bite by bite. अम्मा's food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
12: 100% authentic and pure as mother's love.
13: 19 साल बाद शिवम is back. A man haunted by grief and loss, searching for a purpose in life. आवारापन 2, starring Imran Hashmi and Disha Barney.
14: मौत, मेरा उससे एक पुराना रिश्ता है, एक कर्ज है जो मुझे चुकाना है।
13: आवारापन 2, releasing in cinemas on August 14th. आवारापन। Distribution partner Forum Films. Rating TBC.
15: Forget packing your bags for now. Just keep your ears open for the next hump boarding call. You could be boarding a dream trip to Vanuatu with 2 return air tickets from Solomon Airlines and $1,000 spending money.
0: Thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
16: Lunchbox with Ketan.
17: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
18: इसके पीछे?
0: हम
19: हम पर लंच बॉक्स के शो में अब समय हुआ लंच के मंच पे आपके साथ में कुछ हॉट एंड स्पाइसी बॉलीवुड न्यूज़ भी शेयर कर लूं, जबकि आपको ऐसे सुनकर शायद झटका लगेगा क्योंकि दिल चाहता है को 25 ईयर्स हो गए हैं जबकि 2001 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, आपने इसे काफ़ी पसंद किया था। तो अभी हाल ही में 25 ईयर सेलिब्रेशन पर फरहान अख्तर ने कहा कि जबकि ये स्टार्ट आउट कर रहे थे एज अ डेब्यूटेंट तो इनको काफ़ी परेशानी हो रही थी मेन कास्ट फाइनलाइज करने में, जबकि जो लीड हीरोज़ थे ये उस समय एक फ्रेंडशिप पर बेस्ड फिल्म नहीं करना चाहते थे। ज़्यादातर के बॉलीवुड में उन दिनों लव ट्राइंगल ही प्रिफेर किया जाता था या फिर लोग जो है स्टारकास्ट जो है ये मल्टी हीरो वाली फिल्म नहीं करनी चाहती थी। तो इन्होंने काफ़ी मुश्किलों का सामना किया बावजूद कि ये फिल्म इंडस्ट्री से ही है टू फाइनलाइज द मेन कास्ट, ऐसा इन्होंने कहा है जबकि इस फिल्म को 25 ईयर्स हो गए हैं रिलीज हुए।
1: दिल से दिल तक,
9: unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: gentlemen. This is the boarding call for Solomon Airlines flight number HUM 104.2 FM to Vanuatu. Boarding is now in progress. Please proceed to Rova and enter board now.
1: Thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
2: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
3: यह है लंच बॉक्स अभी के साथ में और आपको बता दें भजन जेम्स एक ऐसा नया एक्सपीरियंस जहां पर साउथ ओकलैंड ड्राइविंग लिमिटेड साथ में एनजेड कल्चरल ट्रस्ट के साथ में आपके लिए लेकर आ रहे हैं कलाकार रवितेश देव को जो परफॉर्म करने वाले हैं डिवोशनल म्यूजिक को और साथ में फ्यूजन भजन्स को ऑन अ लाइव बैंड और यहाँ पर आपके लिए भक्ति रस कीर्तन्स को भी प्रेजेंट किया जाएगा सभी कुछ एक लाइव कॉन्सर्ट सेटिंग जैसे एनवायरमेंट में तो एक ऐसा अच्छा मौका है जहाँ पर आप जाकर इसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं विटनेस कर सकते हैं और आपको ये बता दें कि ये जो इवेंट है 22 अगस्त को रहेगी 7 PM एट वैदिक सेंटर 32 ग्लेसगो एवेन्यू पापाटोय में टिकट से $30 और इसके साथ साथ बच्चों के लिए जो अंडर द एज ऑफ 5 है एंट्री बिल्कुल फ्री है और साथ में यहाँ पर आपके लिए स्नैक्स और रिफ्रेशमेंट्स भी बेचे जाएंगे टिकट्स अवेलेबल है ऑनलाइन eventbrite.com से और साथ में जेस फ्रेश और वेली फ्रेश पापाटोय से और साथ में शिव प्रसाद केल्सन से और मज़े की बात यह है कि जितना भी प्रोसीज रहेगा इस इवेंट से वो दिए जाएंगे इन एड ऑफ गिफ्ट ऑफ

तू लड़की कितनी क्यूट है, तेरा फेस भी कितना स्वीट है, तू ब्यूटी, तू चार्मिंग, तू टनाटन, मैं धनाधन, मैं दिल में तुझे बसाऊंगा और अपना तुझे बनाऊंगा, लंदन तुझे घुमाऊंगा, वहां पानी पूरी खिलाऊंगा, हनीमून करके आऊंगा, फिर शादी यहां बनाऊंगा, मैं रोमियो तू जूलियट, ना समझ तू मुझको इडियट, अरे हाथ छुड़ा कर चली किधर, वो यार मेरे

0: शेख चिल्ली,
1: चुप हो जा भूरी बिल्ली।
0: मैं आफत की पुड़िया,
1: तू भोली भाली गुड़िया।
0: मवाली,
2: मैं हीरो,
0: तू पागल,
2: तू जीरो,
0: आवारा,
2: तुम्हारा, समझ गए इशारा।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: सिर्फ रोवा पर।
1: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
2: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि ड्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
4: Disney Ushies are now playing at Woolworths. Treat your Disney Ushies like VIPs with the exclusive collector's case. It includes two exclusive glow-in-the-dark Ushies and a game board. Available now for $12. T's and C's apply while stocks last.
5: आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को उनकी भाषा में मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है। अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है। कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800-862-342 या विजिट करें asianfamilieservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट।
6: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert.
7: It's dream season at Beds R Us. Save up to 50% on selected sleepyhead beds like the Swiss Tech Precision. Half price, queen size, now $4,299. Check out these dream deals and more at Beds R Us Manukau and Kukekwe, where dreams begin.
8: Jackie didn't think she needed a DVS system.
9: Our home is brand new.
8: Does your new home have condensation? And can it get a bit stuffy sometimes?
9: Yeah, it does.
8: New homes are built tight. They don't breathe very well. DVS can help with that. We have innovative ventilation solutions for all types of homes, new or not so new. Say yes to DVS for a drier, more comfortable home.

0: नहीं आवाज गूंजेगी।
1: You're listening to Avineet.
2: आज के लंच बॉक्स का ये फाइनल आवाज है और ऐसे में 3 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा। 3 पर आ जाएंगी सैंडी आपके लिए कॉफी ब्रेक लेकर, लेकिन अभी के लिए मैं हूँ अभी आपके साथ में 104.2 FM साथ में रोवा पर आप हमारा साथ दे रहे हैं।
1: बचाओ क्या,

0: हम पर यह है लंच बॉक्स और कमिंग अप नेक्स्ट इज स्किप या रिप्ले, यानी कि दो ऑप्शंस देते हैं आपको, आपको चुनना है इनमें से कौन सा गाना आप सुनना पसंद करोगे। पहला ऑप्शन है अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ में हम तो दीवाने हुए यार, या फिर दूसरा जिसे अरिजीत ने गाया है और अपकमिंग मूवी आवारापन से ये आवारापन ये गाना आप सुनना चाहोगे। तो 5599 पर अपने जो चॉइसेस है जल्दी से भेजिए, ताकि कुछ कमर्शियल ब्रेक के बाद में आपके लिए वो ही गाना बजाए जिसे आपने पसंद किया है।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़े लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
1: हम
3: We gotta go. Are you ready?
4: Come and take a trip on me.
5: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hum 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win to return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
6: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
7: Let's go.
6: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
8: Does someone in your house sound like this? Or like this? Does the wheezing and coughing stop them getting out and living a normal life? They need to take the cough test. Go to coughtest.co.nz. Take the cough test and show it to the doctor. Coughtest.co.nz. It's free. Prescription medicine. Medicines have risks and benefits. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
9: डॉक्टर ने क्या बोला?
10: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए।
9: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए, वरना पता भी नहीं चलता।
11: दैट कन्वर्सेशन इज हैपनिंग इन मोर टीवी होम्स देन यू थिंक। हाय, आई एम नितेश हीरा फ्रॉम अश्योर वन। माय जॉब इजंट टू जस्ट सेल पॉलिसीज, इट इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड योर ऑप्शंस एंड मेक श्योर योर फैमिली इज प्रोटेक्टेड।
12: बुक योर फ्री इंश्योरेंस रिव्यू टुडे। कॉल अश्योर वन ऑन 0800-77-HEERA, दैट्स HIRA, और विजिट ashurevan.co.nz। नॉर्थ एंडल एडवाइजरी लिमिटेड, ट्रेडिंग एज अश्योर वन, इज अ लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइडर।
13: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sinbinning. And you need to know about it.
14: Join our tribe!
13: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
14: join our tribe!
15: Dinner is sorted with fresh deals at New World North Island. Get skinless chicken thigh fillets, $17.99 per kilo. And Pam's carrots or brown onions, select size, $3.49 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
16: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई-वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। auckland council.govt.nz/whereitgoes पे। तमाकी तुरुकी, ऑल टुगेदर ऑकलैंड।

0: विद केतन।
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे
2: हम
0: स्किप या रीप्ले।
3: लंच बॉक्स में वेडिक्ट मिल चुका है, जबकि मेजोरिटी वोट जो है ये आवारा पन को ही जाती है। जबकि समीर ने मैसेज किया है, इसके साथ में राहुल आपका भी मैसेज आया है और दिव्या आपने भी मैसेज किया है, इसके साथ में सुजन आपका भी जवाब आया, क्वीन आपने भी भेजा है और आउटराइट आप लोगों ने कहा है कि हमको आवारा पन का अरिजीत सिंह के आवाज़ में गाया हुआ गाना सुनना है। तो चलो आपके लिए पेश करते हैं अब नेक्स्ट, इन्जॉय।
0: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

हम पर लंच बॉक्स में अब समय हुआ आपको बताएं हम बोर्डिंग कॉल 2026 के बारे में. जी हाँ, हम बोर्डिंग कॉल इज नाउ ओपन और आपका जो ड्रीम आइलैंड एस्केप है कुड बी जस्ट वन बोर्डिंग कॉल अवे. दैट्स राइट, आप जीत सकते हैं 2 रिटर्न एयर टिकट्स टू वनुआतु, काइंड कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सोलोमन एयरलाइंस प्लस $1,000 स्पेंडिंग मनी. आप कैसे एंटर कर सकते हो? आपको सिर्फ वही करना है जो आप करते आ रहे हो, लिसन टू हम एवरी वीकडे और साथ में अपने कान खुले रखो फॉर स्पेशल बोर्डिंग कॉल अनाउंसमेंट्स 8 बजे सुबह, 11 बजे दिन में, 1 बजे दोपहर और साथ में शाम को 5 बजे. जैसे ही आप बोर्डिंग कॉल सुने आपके पास में 30 मिनट्स है टू हेड टू रोवा एंड एंटर बोर्ड नाउ. That's it. और इतना ही करके आप ड्रो में शामिल हो जाएंगे जहां पर आप एक अनफॉरगेटेबल वनुआतु गेटवे को जीत सकेंगे. डोंट मिस योर फ्लाइट बिकॉज दिस वन कुड टेक यू टू पैराडाइज. हम बोर्डिंग कॉल थैंक्स टू सोलोमन एयरलाइंस फ्लाइंग 4 times ईच वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ओकलैंड टू वनुआतु. विजिट flysolomons.com. T's and C's apply.

0: हम पर आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स, बस थोड़ी देर में कमिंग अप नेक्स्ट आपके साथ में शेयर करेंगे लेटेस्ट टिकटॉक ओनली ऑन हम लंच बॉक्स शो अभी के साथ में।
1: लंच बॉक्स विद केतन,
2: मुझे पसंद है लड़का।
1: हम The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
4: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
5: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West West side है ना, West side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with
4: क्या?
5: The cold weather।
4: कौन है?
5: Hunua और Waitakere।
4: अच्छा Hunua West में?
5: किधर है Hunua?
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
6: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Monaco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
1: Weekdays, 6 to 10 a.m.
6: There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.hz. Terms and conditions apply.
7: Reliance Ventilation System.
8: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
7: Moisture और ventilation का problem लगता है।
8: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है।
7: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं।
9: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
10: Face it, you're good in groups. So why not turn your superpower into getting a group of blood buddies together? Friends, whānau, workmates, book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood, give plasma, save lives.
11: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट, squirrel.co.nz.
12: Hi, and welcome to the 80s. We love acid wash jeans and overpowering aftershave as much as the next guy. But we also have some out-of-date notions about HIV you don't want to keep. Fact is, HIV can't be passed on through everyday contact, like shared food, hugging, or kissing. And with your modern-day treatment, people with HIV can stay well and have zero chance of passing it on to partners. Out of date on HIV? Get the facts at healthnz.govt.nz/HIV.
13: वो Indelible Homes वाली कहानी सुनाओ ना।
14: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year Master Builder Guarantee, awards pour in.
15: An award goes to Indelible Homes.
14: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite Master Builder.
16: Kahani of Indelible Homes.
1: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits. Lunchbox with Ketan.
17: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
6: हम
1: टिकटॉक।
0: हम पर लंच बॉक्स में टिकटॉक में आपके साथ में लेटेस्ट अपडेट्स शेयर करते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू बीबीसी, आपको ये बता दें, एवरी टाइम आप ऑनलाइन किसी भी ऑर्डर को क्लिक करते हैं, चांसेस आर कि आपके जो ऑर्डर है ये स्ट्रेट अवे प्रोसेस होने लगते हैं। और ये जो जर्नी है स्टार्ट होती है एक सिल्वा फ्लो रोबोट से, जो जाकर आपके लिए पिकिंग शेल्फ से कुछ ना कुछ हेवी सामान को उठाकर उसको कैरी अक्रॉस करती है, अक्रॉस द वेयर हाउस टू अ वेटिंग वोका। यानी कि आप कहीं ना कहीं जो रोबोट से ये इस्तेमाल होने लगे हैं पिकिंग शेल्फ से सामान उठाने के लिए। और एक फैक्ट्री है ईस्टर्न चाइनीज सिटी हेफे में, जहाँ पर बीबीसी ने विजिट किया है, उसका नाम है फैक्ट्री का एट गीक्स फैक्ट्री, जहां पर फ्लीट्स ऑफ रोबोट्स है जो बनाए जाते हैं, टेस्ट किए जाते हैं बिफोर बीइंग शिप टू मेजर वेयर हाउसेज अराउंड द वर्ल्ड। यानी कि जो वेयर हाउसेज है अब कहीं ना कहीं इन रोबोट्स का इस्तेमाल करने लगी हैं। जैसा कि हमने कहा है, जो आप सामान ऑर्डर करते हो ऑनलाइन, ये जाकर पिकिंग शेल्फ से आपके लिए उठाकर एक वोका तक पास ऑन करती है। तो अभी तक जो ह्यूमन काम करता था पिकिंग शेल्फ से उठाने की, यहाँ पर अब रोबोट्स ये काम करने लगे हैं।
1: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। फॉर फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI।

हम पर लंच बॉक्स में मैं हूँ आपका साथी अवि, और आपको बता दूं कि हमारे पास में ओनिया रक्षाबंधन प्रमोशन चल रहा है, जहां पर इसमें भाग लेकर आप अपने सिबलिंग का परफॉर्मेंस रिव्यू देकर अपने आप को एक ऐसे ड्रॉ में शामिल कर सकते हैं जहां पर आप $250 इनाम जीत सकते हैं। जो विनर्स हैं ये ड्रॉ होंगे ऑन द 28th of August, बिल्कुल इन टाइम आपके राखी गिफ्ट्स के लिए जो आप भाई अपने बहनों को देना चाहते हैं। व्हाई नॉट मेक यूज़ ऑफ दिस $250 इनाम, जहाँ पर आप ऐसे यूज़ करके अपने बहन को कुछ ना कुछ उपहार, तोहफा, गिफ्ट दे सकते हैं। आपको सिर्फ ये करना होगा, जब भी हमारे आरजेस अपने शो में आपको मौका दे लाइव होने या आने का, तो आप सिर्फ एयर पर आए और अपने भाई या बहन को एक परफॉर्मेंस रिव्यू दे। किस बातों से आप उनसे खुश है या फिर किस बातों से आप उनसे ट्रबल हो जाते हैं, ये सभी कुछ बताकर आप अपने नाम को ड्रॉ में शामिल करा सकते हैं। ऑल ऑफ दिस इज़ फॉर यू, बिकॉज विद हम यू आर ऑलवेज अ विनर।

0: विद केतन।
1: मुझे पसंद है लड़का।
0: हम
2: आज के लिए हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे यही वादा किया जा रहा है एक बार फिर कल आपसे मुलाकात होगी ठीक 12 पर, लेकर आएंगे आपके लिए एक और एक नया सेगमेंट ऑफ लंच बॉक्स। लेकिन अभी आप हमारा साथ देते रहिए, कुछ और गाने आपको सुनवाएंगे और उसके बाद में आपका साथ देने के लिए सैंडी हो जाएंगी जो लेकर आएंगी खास कॉफी ब्रेक। ऐसे में मैं तो निकल रहा हूँ और आपसे फिर मुलाकात होगी। इन द मीन टाइम डू टेक केयर, बाय।
0: Do you buy 0800 Rachna? Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.

0: rock and roll. Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.
1: हाँ सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
2: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर ले लें।
1: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए, अब रेंट भी आ रहा है।
2: पर डेवलपमेंट के पैसे
1: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800 4NZPMI.
3: You filled the pinata before I sealed it, right?
4: No, you did.
3: I thought you did.
5: Get groceries in as little as 60 minutes with New World Express Delivery. T's and C's and exclusions apply. See online for details.
6: आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को उनकी भाषा में मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है। अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है। कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800 862 342 या विजिट करें asianfamilieservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट।
7: The sleepless nights, the aching knees, the energy that's never quite there. They may be linked to excess weight and shouldn't be ignored. Talk to your doctor about your weight and what support is available to you. Weight management takes time and effort to be successful. People should seek professional advice on diet, exercise and lifestyle changes. Medicines have risks and benefits. Individual results may vary. Eli Lilly New Zealand Limited, Auckland.
8: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
9: हाँ। अच्छा
8: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
9: मिसेस सिंह,
10: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
11: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहोहो। कॉल 0928130 50 और विजिट focuskitchens.co.nz.
12: Say no to that cold, damp feeling. Say yes to DVS for a drier, more comfortable home. Call 0800 DVS DVS.
13: The heart of a healthy home, DVS.
14: Hum, time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
15: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 3. Christopher Luxon is looking ahead to the election now that he's resecured his role as national leader. The Prime Minister has survived a confidence vote, saying he has the full support of his caucus. He insists it will not be a distraction as the country gets set to go to the polls.
16: Our focus is on National's positive plan to fix the basics and to build the future so that we realise the incredible potential that sits in this country and that we set it up for our kids and our grandkids so they can do better than we can.
15: National MP Shane Rete was tight-lipped about what happened in the meeting, but says he has full confidence in Luxon.
17: I'm not going to comment anymore. What has happened, and we go out and we lift our eyes up and we make our way forward as well.

0: Two former police officers accused of obstructing justice in Alan Hall's wrongful conviction in the 80s have been found not guilty. The men had been on trial in the High Court at Auckland. Air New Zealand passengers can now go straight to the Chatham Islands from the three main centres for the first time. A direct route from Auckland, Wellington and Christchurch will start tomorrow thanks to an expanded partnership with Air Chatham's. Children's YouTuber Miss Rachel is set to release her debut album. It's set to drop on September the 23rd and will reportedly include a range of genres. To sport, given that two All Blacks have been injured out of the South African tour already, there is encouraging news over Damien McKenzie, who had his ankle heavily strapped this morning. The ABs won 54-0. McKenzie is expected to be fine for the first test against the Box next weekend. And to rugby league, with Machinery House in a league of their own, a five-city bidding war has begun to stage the 2028 NRL Grand Final, and Auckland is in the mix.
1: Sports News.
2: Brought to you by Sona Sansar, Papatoi and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
3: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 14.6 डिग्रीज और आज को ओवरनाइट 12 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है. मौसम आज का थोड़ा क्लाउडी है लेकिन कल सेटल हो जाएगा. आज का सनसेट इज 5:46 पर.
2: द बीट ऑफ बॉलीवुड
4: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
1: कॉफी ब्रेक विद सैंडी.
3: 3:01 हो चुका है. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. कॉफी ब्रेक आपके लिए शुरू हो चुका है. यू हमिंग अलॉन्ग विद सैंडी और अभी से लेके 4 बजे तक मेरा और आपका साथ है कॉफी ब्रेक में. 4 बजे के बाद मेरे साथ यहाँ पे रुजबे के साथ हो जाएगा इन द ड्राइव शो. सो कैसे हैं आप और आपका डे आज का कैसा जा रहा है? न्यूज़ तो आपने सुनी ली है. प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन जो है, इन्होंने सर्वाइव किया है कॉन्फिडेंस वोट को विद इन द नेशनल पार्टी. And he will remain both National Party leader and Prime Minister. He jo urgent meeting thi Wellington mein lasted around 3 hours. So there had been growing frustration among National MPs Christopher Luxon ki leadership ko leke. And series of recent kuch communication controversies bhi hui thi. So jo leadership speculation tha, isne intensify kiya because kafi reports thi ki senior नेशनल एमपीज जो है ये कंसीडर कर रहे हैं क्रिस्टोफर लक्सन को स्टेप डाउन करने के लिए. तो वहीं पे वोटिंग इन प्लेस आई कि लेट देखते हैं कॉन्फिडेंस वोट करते हैं. दिस इज लक्सन बाय द वे सेकंड कॉन्फिडेंस वोट इन 4 मंथ्स, मेकिंग द लेटेस्ट चैलेंज वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज इलेक्शन ईयर. सो मीटिंग के बाद क्रिस्टोफर लक्सन ने बोला है कि ही हैड द फुल सपोर्ट ऑफ हिज कॉकस एंड जो पार्टी है इज नाउ गोइंग बैक टू वर्क एंड मूविंग ऑन. ये मैटर करता है बिकॉज जो टाइमिंग है वो बहुत ही क्रूशल है. न्यूजीलैंड के लिए जनरल इलेक्शन जो है ये 7 नवंबर को होने वाली है, मीनिंग कि जो नेशनल है इज हेडिंग इन टू द फाइनल स्ट्रेच ऑफ द कैंपेन एंड लीडर ने अभी सर्वाइव किया है इंटरनल चैलेंज. तो इसके कारण ये मैटर बहुत, ये जो कॉन्फिडेंस वोट है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है. बट सर्वाइविंग द वोट का मतलब ये नहीं है कि जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो चुकी है. द फैक्ट दैट अ सेकेंड कॉन्फिडेंस वोट ये रिक्वायरमेंट थी इन सच अ शॉर्ट पीरियड हाईलाइट्स की कंटिन्यू टेंशंस है विद इन द नेशनल एंड क्वेश्चन भी करती है काफ़ी चीज़ों के ऊपर. सो लेट्स सी, देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है.

हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।

0: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
1: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
2: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279939 और विजिट legalassociates.co.nz।
3: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
4: Mobile Express is here. Our new self-service stations are your own pit stop, so you can fuel up without slowing your day down and still earn Smiles points on every fill. Mobile Express, let's go.
5: Rebel's 30th birthday continues with $30 deals on now. That's selected kids' clothing, hydro flasks and Nike equipment for only $30. Plus save $30 off selected casual running and kids' shoes. $30 deals and so much more on now at Rebel Sport. See online for T's and C's.

0: 3:15 हो चुके हैं, कॉफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं, यू हमिंग अलोंग विद सैनी राइट नाउ। कुछ इवेंट्स हो रहे हैं आपके सुपर सिटी में, हम बोर्डिंग कॉल जो है, हम बोर्डिंग कॉल भी आपके लिए यहाँ पे प्ले होने वाला है। रिमेम्बर, हम बोर्डिंग कॉल जैसे ही प्ले होगा तो उस समय पर आपको यहाँ पे रोवा ऐप पे जाना है, कॉल वगैरह कुछ नहीं करना है, आपको रोवा ऐप पे जाना है। रोवा ऐप पे जाके आपको क्यू टू कॉल, जैसे ही आप यहाँ पे सुनेंगे तो आपको रोवा ऐप पे जाके वहाँ पे बोर्ड नाउ उसके ऊपर क्लिक करना है आर्टिकल पे। सो इट इज़ हैपनिंग आफ्टर 8 AM, आफ्टर 11 AM, आफ्टर 1 PM एंड आफ्टर 5 PM। सो रिमेंबर, जैसे ही हम बोर्डिंग कॉल प्ले होता है तब आपको एक्चुअली में ये करना है। हाय, गुड आफ्टरनून रुजबे, कैसे हो तुम?
1: गुड आफ्टरनून सैंडी, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो?
0: मैं भी बढ़िया हूँ, यहाँ पे अभी भी आए हुए हैं। हाय अविनीत, कैसे हो?
2: हेलो, आई एम गुड, आप कैसे हो?
0: एकदम बढ़िया है यार, मतलब आज मैं वही देख रही थी न्यूज, तुम्हें पता चली अभी क्या हुआ है? वो जो कॉन्फिडेंस वोट हुआ?
1: नहीं, मुझे नहीं, मैंने
0: अपडेट तुमने मिस किया। तो कॉन्फिडेंस वोट में क्रिस्टोफर लक्सन इज स्टिल लीडर ऑफ नेशनल पार्टी।
1: क्या बात है,
0: या ये हुआ है, बट दिस इज सेकेंड कॉन्फिडेंस वोट इन फ्यू मंथ्स।
3: हाँ, कुछ लोगों से बातें हो रही थी तो उनका कहना था कि नेशनल के लिए अगर जो चेंज ऑफ लीडरशिप अभी होती तो इलेक्शंस में कहीं ना कहीं इनके लिए काफी डमाडोल
0: नुकसान हो सकता था। एक्चुअली रुजवी सुबह यही बात बोल रहा था कि थोड़ा वहाँ पे पंगा हो सकता था, ट्रबल हो सकता था।
3: हाँ, तो वो कुछ हो सकता था, आंदोलन हो सकता था, आंदोलन।
0: हाँ, रुजबे ठीक नहीं लग रहा है बहुत,
1: इसी ने मुझे बीमार किया है, वही बोली ठीक नहीं लग रहा है।
0: मैं तो, अरे यार इसका माइक ऑफ करो।
3: नहीं, ये भी वो बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड म्यूजिक से BGM चल रहा है, BGM।
0: ये सब बता रहे हैं पूरा। मैं ठीक नहीं हूँ,
1: बीमार हालत में भी मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ काम को।
0: प्रायोरिटी किस चीज को दे रहे हैं अभी? क्यों आया यहाँ पे? पिज्जा है बाहर
1: तो आप यहाँ पे
0: लेट्स गो एंड हैव पिज्जा, तब ये बेटर फील करेगा, राइट?
1: एग्जैक्टली, पिज्जा इज थेरेपी। एनीवे, ओके, क्या बोलना है और क्या करना है फिर?
0: नहीं, तुम्हें पिज्जा खाना है ना?
1: हाँ,
0: तो बस अभी तुम्हारा ही वेट कर रहा था।
1: लेट्स गो,
0: लेट्स गो। ओके गाइस, और भी बातें आपके लिए थोड़ी देर में।
4: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
5: गुंडी खड़ा हो या सीधा अंदर आओ, मैं लाऊं अपना ए गेम।
4: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: 2026 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं एंड मिस रेचल जो पेरेंट्स है ये मिस रेचल को तो जानते होंगे, बहुत सारे टॉडलर्स की बेस्ट फ्रेंड इस समय पर मिस रेचल है। सो मिस रेचल अपना डेब्यू एल्बम लॉन्च करने वाली है। सो यूट्यूब सेंसेशन तो ये ऑलरेडी है मिस रेचल, एंड इन्होंने अपना डेब्यू एल्बम जो है ये अनाउंस किया है जिसका नाम है आई एम सो हैप्पी। सो यहाँ ये डेब्यू एल्बम इनका जो आएगा जिसमें डिफरेंट ट्रैक्स रहने वाले हैं, 23 ट्रैक्स रहने वाले हैं आई एम सो हैप्पी इसके। 25 सितंबर को बेसिकली ये जो म्यूज़िक एल्बम है इनका लॉन्च होने वाला है। एंड स्टेटमेंट में इन्होंने बोला है कि म्यूज़िक एक बहुत ही वंडरफुल वे होता है लोगों को बॉन्ड करने का, स्पेशली पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ भी बॉन्ड करने के लिए, बिकॉज बच्चे कई बार म्यूज़िक की भाषा को बहुत अच्छे वे से समझते हैं एंड जब वो सिंगिंग में या राइमिंग में कुछ समझते हैं तो उसको वो बेटर वे से अप्लाई करते हैं, जो उन्होंने अपने खुद की पर्सनल लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया था। एंड दैट वाज वन ऑफ द रीज़न कि उन्होंने एक यूट्यूब चैनल 2019 में शुरू किया था अपने हस्बैंड के साथ। एंड या शी इज़ अ म्यूज़िक एजुकेटर। सो मिस रेचल का कहना है कि जब भी बच्चों के बारे में बात होती है तो शी गेट्स इमोशनल एज वेल एंड शी इज़ ऑलवेज थिंकिंग कि न्यू वेज के साथ जो टॉडलर्स है स्पेशली उनको कैसे एजुकेट किया जा सकता है। दिस इज़ द रीज़न कि उनको लगा कि एक म्यूज़िक एल्बम भी उनको लॉन्च करनी चाहिए। एंड या ये जो म्यूज़िक एल्बम है लॉन्च हो रही है जहाँ पे मिस रेचल के फैन फेवरेट सॉन्ग्स रहेंगे, चाइल्डहुड क्लासिक्स होंगे विद द टीम ऑफ 19 वोकलिस्ट एंड 42 इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो है ये इस एल्बम में एक्चुअली में रहने वाले हैं। सो ये जो पहली एल्बम है इनकी जिसका नाम है आई एम सो हैप्पी, इट्स कमिंग आउट ऑन 25 सितंबर को ये जो एल्बम है रिलीज़ होने वाली है। इफ़ यू आर अ पेरेंट, आपके बच्चों ने क्या कभी मिस रेचल को देखा है? सो आप भी शेयर कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर ऐसा क्या है जो आपके बच्चे कई बार देखते हैं? बिकॉज़ आजकल मैं देख रही हूँ कि ऐसे बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स, इसे कार्टून्स हम नहीं कह सकते, एजुकेशनल प्रोग्राम्स हम ज़रूर कह सकते हैं, ये YouTube पे एंड TV चैनल पे, Netflix पे भी अभी ये आते हैं। तो आपके बच्चों ने क्या देखा है या फिर देख रहे हैं, आप भी शेयर कर सकते हैं 5599 पर।
1: Non-stop Bollywood.
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम playing Bollywood's biggest hits. Keep calm because Punjabi swag is on.
3: ਮੰਗੀਏ ਤੇ

3:34 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं। 12th अगस्त है, अगर आज आपका बर्थडे है, अ वेरी वेरी हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। वैसे आर्टिकल है कि आपके कीवी सेवर को क्या होता है इफ इन केस यू पास अवे, अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद कीवी सेवर को, उनके कीवी सेवर को क्या होता है। यू नो, एक बहुत ही बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जो कीवी सेवर है इट गेट्स हैंडेड डायरेक्टली टू योर पार्टनर या फिर आपने जिसको भी नॉमिनेट किया होता है। इट डजंट वर्क क्वाइट लाइक दैट। सो जब भी कोई कीवी मेंबर, कीवी सेवर मेंबर जो है पासेस अवे, जो बैलेंस है जनरली बिकम द पार्ट ऑफ देयर एस्टेट। सो वो सिंपली ट्रीट नहीं होता है लाइक अ नॉर्मल बैंक अकाउंट जहाँ पे जो बेनिफिशरी है ऑटोमेटिकली रिसीव्स द मनी। सो दैट मीन्स कि व्हाट हैपन नेक्स्ट कैन डिपेंड ऑन थिंग, जैसे कि द पर्सन जो है उसकी विल है, साइज ऑफ एस्टेट क्या है एंड हु इज लीगली इंटाइटल्ड टू इनहेरिट इट। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि जो कीवी सेवर है वो बाद में किसको जाएगा। इट इज़ एक्चुअली मैनेज बाय अ इन्वेस्टमेंट स्कीम एंड जो मनी है बिलोंग्स टू द मेंबर ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। यू नो, इसके इसको लेके हमने एक स्केड्यूल किया है, हमने एक पॉडकास्ट स्केड्यूल किया है जिसमें ये सारी चीज़ें कवर होने वाली है। सो वी हैव टोटल वेरियस टॉपिक्स को लेके 5 पॉडकास्ट हमारे इन लाइन है जो धीरे धीरे आपके लिए हम रिलीज़ यहाँ पे करने वाले हैं। उसमें से एक टॉपिक इन सब चीज़ों के ऊपर भी है जिन चीज़ों के ऊपर हमारी कम्युनिटी बात ही नहीं करती है, डिस्कशन ही नहीं करती है घर पे। सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉडकास्ट रहने वाला है जो एक्चुअली में हम बहुत ही जल्दी रिकॉर्ड करने वाले हैं एंड देन आपके लिए हम वो रिलीज़ भी करेंगे। बट फॉर नाउ जो हमने एक पॉडकास्ट रिलीज़ किया है ये आप ज़रूर जाके सुनेगा। दिस इज़ ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट पॉडकास्ट जहाँ पे हमने ईयर 13 के स्टूडेंट्स के साथ बात की है। आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट पॉडकास्ट जहाँ पे हमने स्टूडेंट्स के साथ हमने बातें की है। ऑर्मिस्टन सीनियर कॉलेज के 4 स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ हमने बातें की है ईयर 13 के, जिन्होंने एक स्कूल बिजनेस प्रोजेक्ट को रियल वेंचर में कन्वर्ट कर दिया है, बिजनेस ही शुरू कर दिया है। इन्होंने एक बोर्ड गेम बनाई है जिसका नाम है मनी मेहम एंड यू नो मोनोपोली से इंस्पायर्ड है थोड़ी बहुत, लेकिन इस गेम को इन्होंने डिज़ाइन किया है फॉर द किड्स एज बिटवीन 9 to 15 ताकि रियलिटी ऑफ मनी उनको समझ में आए, फाइनेंशियल डिसीशंस कैसे लिए जा सकते हैं वो उनको समझ में आए और गेम खेलते खेलते समझ में आए। मतलब गेम की गेम खेल रहे हैं और एजुकेशन की एजुकेशन हो रही है। सो ये जो 4 टीनेजर्स हैं इनको ये आइडिया कैसे आया, इन्होंने इस गेम को बनाया कैसे, जो इन्होंने डिटेल हमारे साथ शेयर किया है ना कि कैसे 3D प्रिंट इन्होंने किए एंड कैसे इस प्रोडक्ट को इन्होंने फिजिबल बनाया, ये सब कुछ इन्होंने इस पॉडकास्ट में शेयर किया है। सो क्वाइट इंस्पायरिंग पॉडकास्ट आई विल से। अगर कोई किसी चीज़ के ऊपर काम करना चाहते हैं, आपके बच्चे भी किसी चीज़ के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये एक्चुअली में काफ़ी इंस्पायरिंग पॉडकास्ट हो सकता है। एक बोर्ड गेम जो है ये बच्चों को स्मार्टर मनी डिसीशंस लेना कैसे सिखा सकती है वो इस पॉडकास्ट में आपको पता चलेगा। एंड इन केस अगर आप ये गेम बाय करना चाहते हैं, बोर्ड गेम, तो आप कैसे कर सकते हैं वो भी आपको इसी पॉडकास्ट में पता चलेगा। सो द कन्वर्सेशन अबाउट विद दिस ईयर 13 स्टूडेंट्स इज़ अबाउट मनी, एंटरप्रेन्योरशिप, टीनेजर्स एंड हमने थोड़ी जेंजी वर्सेस मिलेनियल्स के बीच में की बातें भी इनके साथ वहाँ पे की है। सो अगर आप फुल पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं जस्ट टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 तो आपको फुल ऑडियो मिल जाएगा। अदरवाइज रोवा या स्पॉटिफाई में जाके जस्ट सर्च अनफिल्टर विद सैंडी एंड रुस्बे एंड टॉप पर ये पॉडकास्ट आपको मिल जाएगा।

0: दुबई 0800 रचना इधर उधर जाने से बचना कॉल करो 0800 रचना दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स इन्वेस्टर्स बिजनेस लोन कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन
1: एक लड़की थी दीवानी सी एक लड़के पे वो मरती थी नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी कुछ कहना था शायद उसको जाने किससे डरती थी जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी प्यार कैसे होता है ये प्यार कैसे होता है और मैं सिर्फ यही कह पाता था

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: Good afternoon. आज काफी सारी बारिश, एकदम ही काले बादल छाए हुए हैं हर जगह, एंड ईस्टर्लीज का भी साथ है. 5:46 को होगा सनसेट, इफ द सन इज आउट येट. फील्स लाइक 12, एंड ओवरनाइट इज गोइंग टू बी एज लो एज 12 एज वेल.
2: द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी, ब्रॉट टू यू बाय बेड्स आर अस. स्लीप इजी फॉर लेस एट बेड्स आर अस मनुगो एंड पुकेकोई. स्लीपी हेड स्लीप इजी क्वीन बेड्स फ्रॉम ओनली $7.99 ऑन सेल नाउ.
0: Super Se Upar, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Rizbe.
3: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
1: आज है 12 अगस्त और 4:02 हुए हैं. ड्राइव शो शुरू हो गया आपके लिए. गुड आफ्टरनून सैंडी, हाय.
4: हाय रुज़बे, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. यस, ड्राइव शो आपके लिए शुरू हो चुका है. रिमेंबर गाइस, आपको हम बता दें कि हम बोर्डिंग कॉल ये आज 5 के बाद आपके लिए ओपन अप होने वाली है, जहाँ पर यू कैन विन 2 रिटर्न एयर टिकट्स टू वन आर टू विद सोलोमन एयरलाइंस प्लस $1,000 स्पेंडिंग मनी एज वेल. तो करना क्या है कि हम की जो स्पेशल बोर्डिंग कॉल जो है, जैसे ये प्ले होगा तो उसी समय पर आपको रोवा ऐप पे जाना है. आर्टिकल है जिसका नाम है हम बोर्डिंग कॉल इज नाउ ओपन. तो वहाँ पर जाके बोर्ड नाउ के ऊपर क्लिक करना है. आपके पास 60 मिनट्स का समय होगा टू हेड टू रोवा एंड टाइप बोर्ड नाउ. एंड अगर आपको कॉम्पिटिशन पेज का लिंक चाहिए तो आप BC लिख के भेजिए 5599 पर, आपको लिंक मिल जाएगा. हम बोर्डिंग कॉल थैंक्स टू सोलोमन एयरलाइंस, जहाँ पर यू कैन फ्लाई 4 टाइम्स ईच वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ऑकलैंड टू वनाटू. विजिट solomons.com. टर्म्स एंड कंडीशंस हमारी वेबसाइट पे है, वहाँ पे आपको और भी जानकारी मिलने वाली है. रुज़बे, तुम्हारा डे आज का कैसा जा रहा है सो फार?
1: मेरा डे आज का थोड़ा ब्ला जा रहा है अभी के लिए तो. वो पिज्जा खा लिया ना, मेरे को लग रहा है सैंडी नजर लग गई आपकी उस पे.
4: मेरी नजर क्यों लगेगी उसके ऊपर?
1: सुस्त फील हो रहा है अभी.
4: सो यू नीड अ कॉफी राइट नाउ?
1: या मे बी. एक्चुअली आज मैंने दिन भर में कॉफी नहीं पी है बिल्कुल भी.
4: सो आई थिंक यू नीड अ कॉफी.
1: आई नीड अ नाइस किक.
4: या इसको किक चाहिए. एनीवे गाइस, आप जब ऐसा लो फील करते हैं, लो नहीं, जब आप ऐसा लेजी फील करते हैं,
1: कईयों
4: को बारिश बहुत पसंद होती है. कईयों के लिए बारिश जो है वो एक और रीजन हो जाता है कुछ नया बनाने के लिए, खाने के लिए.
1: अच्छा,
4: या कुछ बना के खाने के लिए डिफरेंट.
1: नहीं ऐसे नहीं, काफी लोगों के लिए बारिश का मौसम रोमांटिक मौसम भी होता है काफी.
4: या रोमांटिक भी है
1: तो वो भी हो सकता है, सिर्फ खाने से ही नहीं होता ना एसोसिएटेड.
4: हाँ नहीं वो भी है. लेकिन मतलब मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज बचपन से यही कनेक्टिविटी है कि जब बारिश होती थी, क्योंकि इंडिया में इतनी होती नहीं थी बारिश ना.
1: नहीं होती थी,
4: नहीं कम होती थी ना, एक पर्टिकुलर सीजन में ही बारिश होती है. फुल टाइम ऐसा बारिश नहीं होती है. तो जब बारिश हो जाती है तो उसका मतलब होता है कि चलो पकौड़े बनाते हैं आज, ये बनाते. तो इट वॉज ऑलवेज कनेक्टेड टू द फूड. सो ये रीजन से वैसे बोला था. एनीवे, आप किसके साथ कनेक्ट करते हैं और आप जब ऐसा लेजी फील करते हैं स्पेशली इस वेदर में और आपको पता है कि अभी बहुत काम करना है, देन आप क्या करते हो? इज इट कॉफी फॉर यू? इज इट चाय फॉर यू? व्हाट इज इट फॉर यू?
1: और इज इट अ क्विक रन? काफी लोग फिटनेस वाले होते हैं ना, वो बोलते हैं यार आई विल गो फॉर अ क्विक रन. और या फिर कोई किसी का होता है कि मैं पावर नैप लूंगा, पावर नैप लेके मैं एकदम फ्रेश हो जाता हूँ.
4: ऐसे मौसम में पावर नैप लेने लगोगे तो वो मुझे लगता है 2-3 आवर्स की नैप हो जाएगी, पावर नैप नहीं हो पाएगी. ऐसे मौसम में कोई सो गया तो सो गया ना.
1: ऐसा बोलते हो क्या?
4: हाँ यार, ये टोटल ऐसा वाला मौसम है, आप सो गए तो सो गए,
1: सो गए तो सुस्तड़ हो गए.
4: या मुझे ऐसा लगता है ऐसे मौसम में पावर नैप काम नहीं करती है. बट मेरे लिए तो एनीवे काम नहीं करती है पावर नैप. मेरे को नींद आने में उतना टाइम लग जाएगा तो पावर नैप तो क्या ही होगा,
1: उतने में टाइम खत्म हो जाएगा आपका.
4: उतने में टाइम ही खत्म हो जाएगा. सो बताइए आप भी, आप अपने आप को किक कैसे देते हैं ऐसे वेदर में? इफ यू वॉन्ट टू गेट इन टू द एनर्जी मोड एकदम से तो क्या करते हैं आप?
1: काफी लोगों का होगा कि बीवी की गाली सुन ली तो
4: कॉल करो तुम भी.

0: inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
1: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: Professional Financials है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
4: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
3: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यहीं अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
4: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई.
5: Do you know why so many of your neighbors are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mold and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer.
6: Showerdome.co.nz.
7: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम.
8: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
7: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है.
8: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है.
7: और दैट्स नॉट गुड. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर. और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं.
9: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111. रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18.
10: This winter, with all the dreaded lurgies about, NZ Blood needs blood and plasma donors more than ever. So, if you're able to, get your blood buddies together and book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood, give plasma, save lives.
11: It's dream season at Beds R Us. Save up to 50% on selected sleepyhead beds like the Swiss Tech Precision. Half price, queen size, now $4,299. Check out these dream deals and more at Beds R Us Manukau and Pukekwe, where dreams begin.
12: पूजा की थाली में राखी सजाते हैं, धागों के जुड़ने से दिल मिल जाते हैं, माथे पे रोली का तिलक लगाते हैं और मीठे की मिठास से अपनों को करीब लाते हैं. इस रक्षाबंधन दीजिए अपने अपनों को कुछ ऐसा जो उन्हें उनके होने का एहसास दिलाए. सोना संसार के साथ, जहां आप पा सकते हैं बेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन फॉर योर लव्ड वंस. सोना संसार, 190 स्टॉडर्ड रोड माउंट रॉस्किल और 138 ग्रेट साउथ रोड पापा तोए तोए. सोना संसार, संसार रिश्तों का.
13: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
14: Super Se Upar, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
15: You're listening to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. आपके लिए Drive Show यहाँ पे 7 बजे तक होता है, 4 से 7 के बीच.
16: Yes.
15: और इसमें एक बहुत ही बढ़िया सा इवेंट हो रहा है जिसकी बहुत चर्चे हो रहे हैं अभी आजकल.
16: सो न्यूजीलैंड फैशन वीक हमेशा अगस्त के महीने में होता है यहाँ पे न्यूजीलैंड में, और इस बार न्यूजीलैंड फैशन वीक में बहुत ही इनक्रेडिबल नाइट होने वाली है इंडियन फैशन कल्चर एंड क्रिएटिविटी की. वी टॉकिंग अबाउट खादी, खादी बियॉन्ड बॉर्डर्स. एक करियर अपॉर्चुनिटी है इंडियन फैशन को देखने की न्यूजीलैंड फैशन वीक रनवे में. खादी बियॉन्ड बॉर्डर्स क्या है, जहाँ पे 4 लीडिंग इंडियन डिज़ाइनर्स जो है ये रहेंगे ऑकलैंड में, जहाँ पे ट्रेडिशनल हैंडस्पन हैंड वूवन फैब्रिक खादी जो है इसको वो एक फैशनेबल वे में प्रेजेंट करने वाले हैं. मेजर इंटरनेशनल फैशन नेम जहाँ पे हेडलाइनिंग करेंगे शो को राजेश प्रताप सिंह, जो कि इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डिज़ाइनर्स हैं, जो अपनी सोफिस्टिकेटेड टेलरिंग एंड ट्रेडिशनल क्राफ्ट के लिए काफ़ी जाने जाते हैं. सो बेसिकली इट्स मोर देन अ फैशन शो जहाँ पे खादी प्रेजेंट होगी. शोकेस जो है ये सेलिब्रेट कर रहा है कनेक्शन बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड थ्रू द फैशन. 4 डिस्टिंक्ट डिज़ाइनर्स जो है ये खादी को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे एंड एक्सपेरिमेंटल भी है एंड काफ़ी कूल आइडिया भी वहाँ पे प्रेजेंट होने वाला है. द इवेंट इज़ ऑन 18 अगस्त ट्यूजडे की रात को 8:30 बजे शेड 10 जो कि क्वींस वॉफ पे है वहाँ पे ये होने वाला है. और जो अगर आपने कभी ये अटेंड नहीं किया ना न्यूजीलैंड फैशन वीक, बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट होता है गाइज, ज़रूर पहुँचेगा वहाँ पे. यू नो अगर आप ग्रुप में जाना चाहते हैं आप ग्रुप में वहाँ पे जा सकते हैं. टिकट्स के लिए यू कैन गो टू nzfashionweek.com/tickets और वहाँ पे खादी पे क्लिक करेंगे तो इस इवेंट के टिकट आप बाय कर सकते हैं. यहाँ पे भी टिकट जीतने का चांस है, यहाँ पे डबल पास आप जीत पा रहे हैं. आपको करना क्या है, खादी स्पेस अपना नाम लिख के भेजना है 5599 पर. खादी की स्पेलिंग है KHADI, खादी स्पेस योर नेम एंड द नंबर इज 5599 और आपका नाम इस ड्रॉ में शामिल हो जाएगा जहाँ पे डबल पास आपके नाम हो सकता है इस इवेंट का.
14: Bollywood's most wanted.
2: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
17: मैं लाऊं अपना A game.
14: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. वैसे आज है Wednesday और आज के दिन हम आपको यहाँ पे आपके साथ 5 बजे के बाद खेलते हैं Situationship.
1: आपको एक सिनेरियो में हम डाल देते हैं कि इस सिनेरियो में सिचुएशन में अगर आप होते तो आप क्या करते. तो ऐसा ही एक सिनेरियो, एक सिचुएशन आपके लिए हम लेके आने वाले हैं आज 5 बजे के बाद.
0: अभी भी इस घंटे में एक टॉपिक लेकर आएंगे आपके लिए जिस पे आपसे थोड़ी बहुत बातें करना चाहेंगे हम. एंड लेट्स सी इफ यू नो इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड टू गिव अस अ कॉल ओवर हियर. कुछ लेकर आएंगे बढ़िया सा. मोर इम्पोर्टेंटली सैंडी यार, वो ट्रेलर बहुत टाइम से नहीं प्ले हुआ यार,
1: और इसी वीकेंड पे रिलीज हो रही है मूवी.
0: वीकेंड पे रिलीज हो रही है आवारापन 2, उसका ट्रेलर हो जाए क्या?
1: या ट्रेलर हो जाए. और मेरे को मैसेजेस आ रहे थे काफी लोग ऑलरेडी आवारापन देख रहे हैं.
0: अच्छा,
1: टू गेट प्रिपेयर फॉर आवारापन 2.
0: यार कहां पे देख रहे हैं वो आवारापन यार? मैं कोशिश कर रहा हूं. YouTube पे आ गई है? YouTube पे है आवारापन?
1: मुझे लगता है YouTube पे होगी आवारापन, बिकॉज वहां पे होती है ये मूवी. तो जिसने मैसेज किया है, जो देख रहे हैं आवारापन इस समय पर, तो प्लीज आप हमें मैसेज करके ये भी बताइएगा कि आप कहाँ पे देख रहे हैं,
0: कहाँ पे देख रहे हैं, हमें बताइए
1: ताकि बाकी को भी पता चले. सो दैट आवारापन 2 के लिए एकदम रेडी है. हमारी टिकट तो बुक है. इसी फ्राइडे को वी आर गोइंग रुजवे. वी गोइंग कहाँ पे? हम वेस्ट में जा रहे हैं ना,
0: वेस्ट सिटी.
1: या वेस्ट सिटी में जा रहे हैं फॉर आवारापन 2. सो
0: अभी के लिए आवारापन 2 का ये ट्रेलर हो जाए.
2: तड़प है ये कैसी सजा?
3: कितनी हसीन शक्ल है. मौत से मिलने का शौक है तुम्हें?
4: मौत, मेरा उससे एक पुराना रिश्ता है, एक कर्ज है जो मुझे चुकाना है.

0: amazing, man.
1: मतलब टोटल अवारापन की फील दे रहा है अवारापन टू.
0: I think I'm glad कि ये थिएटर में जा रहा हूँ मैं देखने के लिए. और चाहे फिर पिक्चर फ्लॉपी भी क्यों ना हो.
1: Doesn't matter यार. Someday it's just about the story and nostalgia.
0: It's yeah, it's about living.
1: Shivam is back.
2: एक एक करके मरोगे या सब साथ में.
0: यार 20 साल हो गए ऑलमोस्ट ये अपन को. इमरान हाशमी वैसे का वैसे दिख रहा है.
1: दिख रहा है मतलब वो कहते हैं ना, महान बंदे ने बोला है ना बैड्स ऑफ बॉलीवुड में कि अक्का बॉलीवुड एक और इमरान हाशमी एक तरफ.
0: यस माय गॉड. वेल एनीवे वी आर एक्साइटेड. आर यू बताइए हमें. हाय उसके बारे में क्यों हम हमेशा बात करते.
3: एक्चुअली क्या होता है ना बॉलीवुड में दो अच्छी मूवी एक ही दिन पे क्यों आती है, ये भी एक प्रॉब्लम है ना.
0: अरे अच्छा है ना, अपने पूरा वीकेंड शॉर्ट हो जाता है ना. फ्राइडे को एक मूवी देखो.
1: अच्छी बात लगती है कि वैरायटी होती है.
0: बंटवारा भी बहुत बढ़िया मूवी लगने होने वाली है क्योंकि उसमें भी इट इज अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट मूवी.
1: हमने कुछ दिन पहले एक्चुअली उसका ट्रेलर भी प्ले किया.
0: उसका ट्रेलर तो हमने सबसे पहले प्ले कर दिया था.
3: हाँ मेरी भी बहुत फेवरेट मूवी रह चुकी है. सॉरी उसमें मतलब वो कहने का मतलब नहीं था मेरा. लेकिन ये था कि अवारापन भी मेरी जो फर्स्ट वाली थी बहुत फेवरेट थी. बहुत अच्छी स्टोरी थी उसकी.
0: या अरे नहीं राहुल, आई वाज नॉट पिकिंग ऑन यू. मतलब मैं इन जनरल बोल रहा हूँ कि हमारा ह्यूमन टेंडेंसी होता है काफी बार.
1: और हम सब करते हैं ये.
0: हम सब करते हैं ये. हम एक कोई चीज के बारे में कोई अगर बात करे तो हम बोलते हैं अरे ये ठीक है लेकिन इसका क्या. हमें आप बंटवारा के बारे में बताना, हम आपको आवारापन के बारे में बताएंगे.
1: डन हो गया यार.
3: हाँ लेकिन सारी मूवी तो 3 महीने के बाद तो नेटफ्लिक्स पे आ ही जाती है वैसे तो.
0: अरे बट वही ना कि थिएटर में देखने
1: का फील अलग है यार. जो भी हो
3: ये तो
0: क्योंकि यार प्रॉब्लम क्या होता है घर पे देखने
1: का, पब्लिक के साथ मूवी देखना ना अलग ही फील होता है.
0: वो अलग फील है यार पब्लिक के साथ क्योंकि सबके एक्सप्रेशंस रिएक्शंस उसमें एम्पलीफाई होती है काफी बार मूवी. इट्स लाइक जब आप
3: मैंने बॉर्डर 2 देखी थी तो बहुत ही अलग फीलिंग थी. जिस तरीके से जो वहाँ पे अपने दोस्त थे देसी भाई वो कितने अच्छे से डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं एक दूसरे को, यू नो लाइक मतलब जो फीलिंग आती है सीटी मार रहे हैं वो सब चीजें
0: या
1: अलग होता है. और मेरे को लगता है ना फॉर एग्जाम्पल मैं मूवी का नाम बोलूंगी मैं वापस आऊंगा ये मूवी को अगर मैं पहली बार OTT पे देखती तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसको इतना एंजॉय करती बिकॉज मैंने वो मूवी थिएटर में देखी है तो मेरे को हर एक सीन उसका बहुत अच्छा लगा है. वेरी सिनेमैटिक मूवी मेरे को वो लगी है. एंड मे बी जिन्होंने OTT पे ही उस मूवी को देखा है पहली बार वो शायद उस मूवी को उतने गहराई से ना देख पाए जो हमने देखा.
3: सफेद सागर भी बहुत अच्छा है अगर वो
1: सीरीज ना न्यू वन.
0: हाँ वो
3: इतना बढ़िया वो है वो उसका कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से उन्होंने बनाया सफेद सागर.
0: मैंने सुना है इसके बारे में.
3: सिनेमा में होता तो मजा आ जाता.
0: क्योंकि ना मेरे को एक दिक्कत क्या माने OTT पे देखने का कि ये इसको पॉज कर सकते हैं ना ये बहुत प्रॉब्लम है
1: वो यार.
0: मुझे ना पसंद ही नहीं आता है वो फ्लो तोड़ना बीच में. और
1: एंड सिनेमा में क्या है कि अपने फोन को उठा के हम स्क्रॉल भी नहीं कर सकते.
0: राहुल समझ रहा मेरी फ्रस्ट्रेशन.
3: क्योंकि मैं भी उन्हीं में से हूं एक हूं ना.
0: तुम भी पॉज करते हो क्या.
3: नहीं पर मैं पॉज नहीं करता लेकिन वो बीच में ऐड आएगा जो सब वो फिर बीच में नेक्स्ट एपिसोड सस्पेंस हो जाता है.
0: जिनके साथ देखता हूँ मूवी उनको हर टाइम पे बीच में पॉज करने का बहुत मन करता है क्योंकि सडनली मूवी के बीच में इम्पोर्टेंट सीन चल रहा है उसको याद आता है कि अरे मेरे को चॉकलेट खाना है, अरे मेरे को पानी पीना है. मैं बोला यार एक बार का निपटाओ ना
1: घर के कन्वीनियंस होती है ना उसमें. तो नेक्स्ट टाइम से वो सारी चीजें तुम लाके पहले ही रखना वहाँ पे. इट्स योर ड्यूटी.
0: दैट्स राइट.
3: बिल्कुल बिल्कुल. मैं भी नहीं करता कभी ऐसे बीच में ना वो बीच में जो ब्रेक वगैरह जो होता है. अब तो ब्रेक के जमाने इंटरमिशन
0: इंटरवल तो चला गया अभी. ठीक है
3: वो भी ठीक है.
0: थैंक यू राहुल. थैंक सो मच फॉर योर टाइम.
1: थैंक यू सो मच राहुल.
4: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
5: Ladies and gentlemen,
6: Unfiltered with Sandy and Rusby. Kyunki dunya mein already bahut sare perfect, polished, Instagram-friendly stories hain. Aur unka humse koi lena dena nahi. Yahan kahaniya hoti hai raw. Emotions hote hai real. Aur conversations hote hai bina mask ke.
7: राजा मंत्री चोर सिपाही सब यहाँ थे.
6: Unfiltered with Sandy and Rusby on Rova, Spotify, or anywhere you get your podcast.
8: Hum, accurate traffic.
9: Simplicity means lower KiwiSaver fees.
10: Rain overnight for Auckland, a low of 12 in the northern. It's very heavy northbound from West Haven to Northcote Road. The northwestern slow from Newton Road now to Te Atatū. On the southern, we've got a crash affecting northbound traffic just before Princes Street. The left lane is blocked there, and it's heavy southbound Spaghetti Junction to Mount Wellington. Southwest is hammered heading north from Wiri to Onehunga and south from Onehunga to Massey Road.
9: Keep more of your money with Simplicity, the low-fee, non-profit KiwiSaver provider.
11: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Enjoy a stopover in sunny Fiji on your way to epic destinations. Live your California dreams in LA or San Fran. Relax in Honolulu. Head to Dallas and experience southern hospitality at its finest. Or take a trip to Asia, Tokyo, Singapore, or Hong Kong. Fiji Airways on sale now. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
12: There's a reason the Big Ben six-pack is a go-to in Kiwi homes. Everyone gets hungry, just not at the same time. Someone's just walked in, starving. Someone's heading out, also starving. Someone said they weren't hungry, now they are. Someone's just eaten, and somehow hungry again. Waves of hunger just keep coming, but so do the pies. That's the genius of a Big Ben six-pack. So if hunger's a constant force at your place, grab a pack. Big Ben, feed your mission.
13: When you're finishing off that DIY project this weekend, remember to have a hmm and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
14: Dinner is sorted with fresh deals at New World North Island. Get skinless chicken thigh fillets, $17.99 per kilo. And Pam's carrots or brown onions, select size, $3.49 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
15: I know how to balance my clients' books, but not how to use AI tools to free up my time.
16: When you're a Spark Business customer, you get a network of global and local partners to help with your business. Spark, the best bench in business.
17: It's spring season at Freedom. Get up to 50% off selected sofas and furniture. Refresh your home and save up to 50%. Sale on now, only at Freedom.
18: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Single white switch, just $3. Clear silicone sealant, just $4. Painter's masking tape, just $2. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. Trade

0: से ऊपर brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: Let's go.
0: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4NZPMI.
2: You're listening to Humpling, Bollywood's biggest hit. Straight from the heart, mein ek gana likha rahenge aapke liye, lekin usse pehle thodi bahut aapke saath baatein bhi kar le.
3: You know, एक चीज मिलती है सुपरमार्केट में, आई डोंट नो तुमने वो देखी है कि नहीं देखी है, इसका नाम है उशीज।
2: अरे यार अभी वही उसी का तो मारा मारी चल रहा है सैंडी हर जगह।
3: स्कूल में बैन हो रही है उशीज।
2: ओह वेरी गुड, होना चाहिए बैन।
3: या बिकॉज़ फाइट्स हो रही है, सो डिज्नी उशीज है।
2: तो आपको पता है ये उशीज है क्या, मैं बताऊँ आपको? तो बेसिकली वूलवर्थ्स में जब आप शॉपिंग करते हो तो अबाउट अ सर्टन डॉलर्स, आई थिंक 30 डॉलर या 40 कुछ तो भी ऐसा है, पता नहीं मेरे को। एक्चुअली कोई बच्चा अगर हमें सुन रहा है एंड इफ यू वांट टू एक्सप्लेन व्हाट उशीज आर, प्लीज गिव अस अ कॉल ओवर 0800-004-866। बच्चे बहुत अच्छे से आपको समझा पाएंगे कि ये है क्या, या बच्चों के माँ बाप जो अभी
3: उनको ज्यादा पता होगा।
2: तो मेरे को इसके बारे में ज्यादा पता चला इंस्टाग्राम के रील्स के थ्रू, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो इंस्टाग्राम पे फनी रील जैसे बना रहे कि यार ये क्या चीज हो रही है यार, मतलब पेरेंट्स ट्रेड कर रहे हैं।
3: अब न्यूजीलैंड के काफी स्कूल्स जो है इनका ये कहना है कि दे आस्किंग स्टूडेंट्स नॉट टू ब्रिंग देम टू स्कूल। रीजन है फाइट हो रही है, आर्गुमेंट्स हो रही है उसके ऊपर।
2: स्कूल से डायरेक्ट हमारे संवाददाता स्कूल से ही डायरेक्ट अपडेट देंगे हमें। हाय,
4: हेलो
2: जी, बताइए क्या हुआ स्कूल में?
4: स्कूल में तो कुछ नहीं हुआ, पर मैं पेरेंट्स भी हूँ ना, तो मुझे लगता है उसकी बात कर रहे हो जो छोटे छोटे वो मिल रहे हैं,
2: अच्छा
3: ये वो है, मैंने देखा है ये।
2: अरे वो मेरे घर पे भी पड़े हैं यार, मेरे घर पे भी बच्चे हैं ना।
3: हाँ
2: नहीं, एक ही बच्चा है।
4: उसके बारे में ये है कि जब भी जाता है हरजाब को सामान लेने आता है, अभी मेरा बेटा सबसे पहले जाके बैग देखता है कि उसमें वो है क्या, हालांकि उसको खेलना नहीं है उससे, जस्ट द जॉय ऑफ ओपनिंग अ न्यू पैकेट उसको अच्छा लगता है। उसके बाद नेक्स्ट मिनट में वो चीज कहाँ है उसे नहीं पता।
2: और मेरे को लग रहा है काफी लोग उसको अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं ना, तो वो कलेक्ट करना चाह रहे हैं हर कोई, कि यार हर हर एक वेरिएंट होना चाहिए। तो वो किसी को अगर वो डबल डुप्लीकेट मिल गया कुछ, तो फिर वो ट्रेड कर रहे हैं,
3: सारे के सारे जो है वो इकट्ठे कर रहे हैं।
2: या
4: पर हम तो ट्रेडिंग भी नहीं कर सकते क्योंकि मेरा बेटा सब कुछ खोल देता है, डजंट मैटर वो सेम है कि अलग है, वो खोलेगा ही खोलेगा, उसको बहुत अच्छा लगता है न्यू चीज खोलना, चाहे वो मेरा गिफ्ट हो चाहे वो किसी का भी गिफ्ट हो, खोलना उसको ही है।
2: क्या बात है, थैंक यू सो मच।
3: स्कूल्स का कहना है कि ये डिस्ट्रैक्शन है, इसलिए वो उसको बैन कर रहे हैं।
2: सही बात है। हाय, आपका स्वागत है।
5: हेलो, ज़ाकिया स्पीकिंग।
2: हाय ज़ाकिया, बताइए कैसे हो आप?
5: Yeah, I'm very good. I'm mother of 5-year-old girl.
2: Okay.
5: And hama baby year 1 mein hai. She got the whole set and now she got some duplicates. So she asking for her second sister, middle child, to get some exchange from school.
3: My God.
2: So they are learning, so if you think about it, they are learning negotiating skills very early in life.
3: बहुत बड़ा ड्रामा हो रहा है, फाइट्स हो रही है।
2: हाँ, लोग थोड़ा बोर
5: हैं। बट स्टिल उन लोग चुप्पे चुप्पे सब करे स्कूल में।
3: चुप्पे चुप्पे तो करेंगे ये।
5: चुप्पे चुप्पे से लोग करे, डरे नहीं है लड़का यहाँ पे।
2: हाँ, क्योंकि क्या होगा ना ज्यादा से ज्यादा, एक तो मेरे को लग रहा है प्रॉब्लम है ना कि
3: उनको वार्निंग मिल जाएगी।
2: नहीं,
3: ना
2: नहीं नहीं, हम लोग जितना हमारे पेरेंट्स से डरते थे ना, उतना आजकल के बच्चे अपने पेरेंट्स से नहीं डरते। मेरे को लग रहा है रूट कॉज वो है।
5: वेरी ट्रू।
3: या फर्स्ट मेरे को लगता है इवन इन द स्कूल, स्कूल में व्हेन वी वर ग्रोइंग अप जो हमारे टीचर्स से बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, एक डर होता
2: था। वो डर था क्योंकि वो पेरेंट्स को कंप्लेन करते थे, पेरेंट्स का डर होता था, पेरेंट्स का ही डर नहीं अभी तो फिर टीचर्स का भी क्या फिर रहेगा ना उसमें। मेरा ऐसा मेरा टेक है।
5: अकॉर्डिंग टू मी हम लोगों के बताएगा कि सबकी नहीं ले जाओ स्कूल करे ना, बट बोले ना मैम हम लोग ऐसा नहीं करेगा कि कोई नहीं डाल पाई।
3: अरे वाह, आप ही को पढ़ा रहे वो
2: ऐसा। अभी मेरे को, अभी मेरे को ज़ाकिया मेरे को एक बात बोलो, यही सेम चीज आप आपके माँ बाप को ऐसा बोल सकते क्या, अगर वो आपको बोलते कि मत लेके जाओ? देखा, वही फर्क है ना।
5: बहुत डर, हम आज भी अपन पेरेंट्स से डरता है आज भी।
2: तो फिर मेरे को भी आज भी अगर मेरे पेरेंट्स ने बोल दिया कि नहीं ये नहीं करना है, मैं पूछूंगा लेकिन उसके बाद भी अगर उन्होंने डिसाइड किया कि मेरे को नहीं इसका जवाब देना है, मैं नहीं कर पाऊंगा,
3: चुप हो जाओगे तुम,
2: लाइक
5: एग्जैक्टली
2: पहले पूछना भी नहीं अलाउड होता था, अभी हम पूछ सकते हैं कि हाँ चलो भाई ठीक है, भाग सकते हैं ना, अभी
3: क्वेश्चन पूछना वाज लाइक रूड,
2: टांगे लंबी हो गई अभी भाग No, just kidding. But thank you, Zakia.
3: But thank you, Zakia, for calling.
5: Right, thanks. Bye.
2: Bye bye.
3: Thank you, bye.
2: So, yeah, Ushis.
3: Yeah, आपका कोई Ushi experience है, आप भी share कर सकते हैं.
2: कितने Ushis हैं आपके पास?
3: मेरे घर पे एक Ushi है, अब मेरे को वो समझ में आया कि वो कैसे आया है. अब मेरे को अब उसकी फोटो देख के समझ में आया कि ये Ushi है. अभी वो Ushi घूम रहा है नेफ्यू और मेरे पेट डॉग के बीच में.
2: अच्छा, ऐसा है? हाँ. वो पेट डॉग के मुंह में नहीं चला जाना चाहिए, छोटा होता है वो.
3: आई नो, वो उसको जो स्मार्ट है वो.
2: अच्छा,
3: वो चबा के फेंक रहा है उसको.
2: क्या बात है. लेकिन मेरे घर में भी अभी 4-5 है, बट एक चीज है, तो मेरी वाइफ को शौक है ये Ushis जमा करने का, पता नहीं क्या है, लेकिन उसने जब भी उसको मिला है, हमेशा कोई अलग ही मिला है, मतलब
3: एवरी टाइम डिफरेंट कैरेक्टर.
2: हां, एवरी टाइम डिफरेंट कैरेक्टर.
3: नाइस.
2: सो नो डुप्लीकेट्स एज ऑफ नाउ. आई वाज लाइक, दैट इज अ गुड रन.
3: रिकॉर्ड.
2: या गुड रन. बट आप बताइए हमें, आपने कितने Ushis है आपके पास, कितने कलेक्ट किए आपने? वी वांट टू सी हूज गॉट द लार्जेस्ट, द हाईएस्ट नंबर ऑफ Ushis,
3: कलेक्शन ऑफ Ushis.
2: फिर उसको बाद में एक दो हफ्तों में फिर कचरे के डब्बे में जाना है वैसे भी.

0: Cool Branch diye.
1: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
2: वेदर का हाल आज बवाल, बिकॉज बारिश है और बहुत हैवी बारिश भी हो सकती है काफ़ी जगहों पे. फील्स लाइक 12 डिग्रीज है और उतना ही टेम्परेचर रहेगा ओवरनाइट भी, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट कोल्ड. 5:46 पे होगा सनसेट. कल का दिन ओवरनाइट बारिश होगी, लेकिन कल दिन इज गोइंग टू बी अ लिटिल ग्लूमी.
3: द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी ब्रॉट टू यू बाय बेड्स आर अस. स्लीप इजी फॉर लेस एट बेड्स आर अस मनुगो एंड पुकेकोई. स्लीपी हेड स्लीप इजी क्वीन बेड्स फ्रॉम ओनली $7.99 ऑन सेल नाउ.
4: Power Drive at 5.
1: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. The Drive Show with Sandy and Rizbe.
5: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
2: 5:02 and Drive Show आपके लिए जारी है. Only on Hum, playing Bollywood's biggest hits. 104.2 FM, Roa app पे आप सुन सकते हैं हमें from anywhere in the world. And अभी आज का दिन जो है वो है Wednesday.
6: It is Wednesday. A very, very good evening to you.
2: Good evening.
6: And a very happy birthday to you. अगर आज अपना birthday celebrate कर रहे हैं.
2: Thank you.
6: Yeah. Remember, हम boarding call आपके लिए कभी भी play हो सकता है. So, हम boarding call जैसे ही play होगा, उस समय पर आपको Rova app पे जाना है. हम boarding call के competition page पे board now पे click करना है. 60 minutes का आपके पास समय होगा. सो ये आपके लिए इसी आवर में प्ले होने वाला है. सो स्टे ट्यून, ध्यान से सुनते रहेगा. कभी भी ये आपके लिए प्ले हो सकता है.
2: लेकिन अभी तो खेलने का टाइम है आपके लिए, आपके पास तो
1: सिचुएशनशिप
2: में आपके लिए हम एक सिचुएशन ले आते हैं और सिचुएशन में आप अगर होते तो आप क्या करते.
6: आपकी सिचुएशन ये है, आप ना एक्सट्रीमली रिच हो सकते हैं. एक्सट्रीमली रिच कहने का मतलब है कि इतने अमीर हो जाओगे कि आप आंखें बंद करके बोलोगे कि यार कल ना मुझे पेरिस जाना है. तो मतलब सुबह की टिकट भी आप खरीद सकते हैं.
2: चाहे टिकट नहीं भाई, आपका खुद का जेट आप लेकर जा सकते हो.
6: हाँ, प्राइवेट जेट भी आप अपना खरीद सकते हो. अंधाधुन पैसा, इतने अमीर आप हो सकते हैं. बट ओनली वन कंडीशन, एंड द कंडीशन इज कि करंटली आपके जितने भी दोस्त हैं, खास दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो सबसे कनेक्शन कट जाएगा.
2: फैमिली के साथ नहीं कटेगा, लेकिन
6: फैमिली के साथ नहीं, लेकिन जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके,
2: फ्रेंड्स सारी आपके जिंदगी से
6: चले जाएंगे आपकी जिंदगी से. मतलब आप किसी से बात तक नहीं कर पाएंगे, मैसेज भी नहीं कर पाएंगे उनसे.
2: मतलब
6: कह लोगे इनविजिबल हो गए वो सारे.
2: हाँ, कोई मतलब जैसे अब स्पाइडरमैन के साथ हुआ था ना, जहाँ पे उसकी आइडेंटिटी सब भूल गए थे, वैसा ऐसा सिनेरियो हो जाएगा आपके साथ.
6: या आपके फ्रेंड्स आपको भूल जाएंगे. वुड यू टेक द डील, ये सवाल है.
2: 0800-004-866 is the number. Give us a call and share it. Sandy, would you take the deal?
6: Yeah.
2: Oh my God.
6: Okay. I'm being very honest.
2: Hi, आपका स्वागत है.
7: Hi, कैसे आप लोग?
6: बढ़िया, आप कैसे?
2: बहुत ही बढ़िया, बताइए.
7: मैं भी अच्छा हूँ. मैं तो लूंगा भाई डील.
6: आप भी ले लेंगे डील क्या?
7: हाँ, क्योंकि दोस्त ज्यादा है नहीं. ठीक है, गिने चुने हैं, एक दो जो है वो इंडिया में थे, वो अभी दूर दूर के ही हो गए.
2: अभी वैसे भी वो कांटेक्ट में नहीं है.
7: हाँ, कांटेक्ट में है नहीं. दोस्त बाद में तो वाइफ से बन जाएंगे यार, पैसे से.
6: पैसे से दोस्त तो खैर नहीं, एक्वेंटेंस बनते हैं. I will say.
7: मतलब वो जो बोलते हैं ना क्या, हाँ, जो पैसे पैसे वाले दोस्त बन जाते हैं,
6: जिनके साथ आप रील्स बना सकते हो
2: यार. लेकिन बहुत जिंदगी बहुत सैड हो जाएगी यार, मेरे को ऐसा लग रहा है. क्योंकि ऑनेस्टली बोलू ना
7: यार, दोस्त तो बन जाते हैं ना रूस में. देख, समय के साथ तो अभी जैसा हमारे अगर इंडिया में भी फ्रेंड थे और जब हम यहाँ आते हैं तो फिर हमारे यहाँ भी तो दोस्त टाइम के साथ बन ही जाते हैं ना.
6: तो ये भी बात है, इंडिया में दोस्त अभी टाइम के साथ तो बन ही जाएंगे
2: यार. लेकिन
7: हाँ, तो अभी
2: ये सोच एहफाज, ये सोच यार कि आज तू ये सोच रहा है कि वैसे भी दोस्त नहीं है, कम है, यू नो, बात नहीं कर रहे. तो इनफैक्ट थिंक अबाउट इट, दोस्त बनाना इतना आसान नहीं है शायद. क्योंकि अगर इतना आसान होता तो आज शायद और दोस्त होते.
7: नहीं, वैसा नहीं है, बट वो पर्सन टू पर्सन भी होता है ना, कि कुछ लोग होते हैं वो ज्यादा दोस्त भी नहीं बनाते.
2: अच्छा,
6: ये होता ही है.
7: या ऐसे भी लोग होते हैं कि जो मे बी ऐसे भी होते होंगे जिनको शायद कुछ पहले दोस्तों ने जख्म दिए हो, तो दोस्तों पे भरोसा ना हो.
2: हो सकता है ना
7: और आई मीन इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस है बट आई वुड से कि मैं तो डील ले लूंगा.
2: अच्छा
6: बाद ये सही कह रहे हैं, देखते आएगा कि इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के ऊपर होता है.
2: या दैट्स राइट.
6: एंड कई बार ये भी होता है कि किसी को मतलब एक दोस्त है उनकी लाइफ में तो उससे भी खुश है, कईयों को ज्यादा भी दोस्त चाहिए लाइफ में. तो
7: और ये भी हो सकता है ना कि अभी इंडिया और अभी जैसे इंडिया वाले दोस्त अभी वैसे भी अभी उनको दोस्त शायद आप नहीं समझ सकते क्योंकि वो आपके पास नहीं, आप उनके पास नहीं, उनके जरूरत में आप नहीं जाते हो, तो आप उनके आपके जरूरत में वो नहीं आ पा रहे. बट हाँ ये जो दूरी बनी है, अगर मान लो आप यहाँ 10-15 सालों में रह रहे हो और अगर आपके पास इतना पैसा आ जाए तो आप यहाँ नहीं रहोगे, शायद आप इंडिया चले जाओगे और बोलोगे मैं वहां रहूंगा, तो आपको वैसे भी वो दोस्त पुराने आपको मिल सकते थे.
2: नहीं वो दोस्त नहीं है भाई, वो कंडीशन है,
6: वो कंडीशन है भाई, दोस्त सब भूल जाओगे,
2: सब दोस्त गए तुम्हारे,
7: नए बना लेंगे अपन.
6: इनको डील लेनी है बेसिकली,
2: एक जगह
7: डील लेने की अपने
2: पैसा चाहिए, पैसा
6: पैसा चाहिए,
7: पैसा चाहिए भाई बस.
2: आप
0: बस चल रहा है.
6: बताइए
0: आप ऊपर कर रहा हूँ, अश्विन बात कर रहा भाई.
2: जी अश्विन बोलो
0: भाई. मैं तो दोस्त लूंगा भाई.
6: दोस्त लोगे आप है ना?
0: पैसा नहीं लूंगा.
2: पैसा नहीं लोगे, दोस्त लोगे?
0: दोस्त लूंगा.
6: क्या कितने जरूरी है आपके
2: क्या
6: लिए?
2: रीजन है आपका वो, ऐसे दोस्त क्यों चुनेंगे आप पैसों के ऊपर?
0: पैसा जब रहेगा ना तो उसमें डर भी रहेगा, कोई तुम्हें किडनैप कर ले, कोई तुम्हें बंदूक से ताक देगा ना. दोस्त पाओगे कहीं, सो फुटबॉल नहीं खेल पाओगे, जिम नहीं जाओ पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, तुम एक बंधक में रहोगे. और फिर पैसा तो तुम साथ लेके जाएगी नहीं, पैसा तो छोड़ के जाना है,
2: यादें लेकर जाओगे एंड मोमेंट पे.
6: और ये बात भी सही है कि जब आप चले गए कोई अगर पीछे याद रखने वाला ही नहीं है
0: तो कोई क्या क्या करोगे जब पैसा रखे तो हर काम में कोई नहीं आया.
2: सही बोल रहे हो यार. मैं तो और ऑनेस्टली मुझे ये भी लगता है कि एक बार तुम्हारे पास बहुत पैसा आ गया तो उसके बाद तुम किसी पे भरोसा भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगेगा कि अरे ये दोस्ती कर रहा है मेरे पैसों के लिए.
6: वो तो पैसों के लिए ही होती है.
0: ये कभी भी मुझे मार देगा मेरे पैसे के लिए.
2: लेकिन यही अगर आपका हाँ सॉरी कहे आपके
0: तुम सुतोगे, अगर तुम स्लिप भी करोगे तो डर के सुतोगे, खाओ भी गए तो भी डर के खाओगे, मिला नहीं देगा कोई,
6: तो इतना पैसा भी फिर हानिकारक हो जाएगा ना,
0: खुल के नहीं जी पाओगे.
2: That's right.
0: जिंदगी झंड हो जाएगा.
2: सही बोल रहे हो आप.
6: बोला था किसी ने लालच बुरी बला है.
2: लालच बुरी बला है. एक मिनट अभी एक और मैसेज. थैंक यू अश्विन. बोलो.
0: मैं सोचता हूँ आज के बाद तो वही खुशी
2: क्या आज के बाद क्या
0: आधे रोटी खा लो वही खुशी पूरा दौड़ेगे तो नहीं मिलेगा.
2: सही
6: है. परफेक्ट है. साउंड्स गुड.
2: थैंक यू अश्विन. एक और मैसेज आया यहाँ पे. आई विल डेफिनेटली टेक द डील. आई एम नॉट गोना लूज फैमिली व्हिच इज ऑसम प्लस गीता सेज नेवर बी अटैच्ड टू एनीथिंग सो आई विल इजीली डिटैच मायसेल्फ फ्रॉम फ्रेंड्स विल फॉरगेट द एक मिनट तुम गीता को तुम्हारे कन्वीनियंस के हिसाब से मत पढ़ो. अगर गीता ने कहा है कि डोंट अटैच योरसेल्फ टू एनीथिंग तो दैट ऑल्सो इंक्लूड्स मनी.
6: So I will easily detach myself from friends and we will forget the friendship as part of the deal anyway. So it seems like a win-win situation. ठीक है ना उनका है वो अपने
2: बढ़िया
6: हाँ उसको वो use करना चाहते हैं कि ठीक है उनको deal लेनी है भाई family उनके लिए family ज़्यादा matter कर रही है.
2: जीओ जीओ.
1: Ladies and gentlemen.

0: flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
1: एक मैसेज आया यहाँ पे, नो डील, आई'ड रादर फॉरगेट माय फैमिली रादर देन माय फ्रेंड्स. इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस डू मैटर. और बोल रहे मनी इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल कम विद हार्ड वर्क, बट फ्रेंड्स कैन नॉट बी रिप्लेस्ड विद दैट मच मनी. हाउ विल आई स्पेंड इट अलोन?
2: ऐश ने बोला,
1: ये बहुत सही पॉइंट है यार.
3: One thing I'm for

0: Attention everyone, हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
1: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
0: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
1: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
0: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बूटरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं।
1: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
0: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
2: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सब डिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स, बॉटनी टाउन सेंटर।
3: Accurate traffic.
4: Century Batteries, New Zealand's trusted battery.
5: Rain overnight for Auckland, a low of 12. The northern's heavy around Onewa Road and then north through Albany. The northwestern slow from Newton Road to Te Atatū. The upper harbour heavy westbound through Rosedale. The southern heavy northbound Beards Road to Newmarket and heading south from town to Highbrook Drive. The southwestern, we've got a crash affecting northbound traffic after Lambie Drive. The left northbound lane blocked there.
4: As the cold mornings roll in, be ready with New Zealand's trusted battery, Century Batteries.
6: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
7: Indelible Homes, your building expert.
8: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
9: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
8: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
9: Available at selected branches. T's and C's apply.
10: At Bunnings Trade, we've got your paint jobs covered. Shop a wide range of paint and accessories from leading brands like PPG, Dulux and Monarch. Call 134 Trade on 0800 134 872 to get a quick quote today at Bunnings Trade.
11: Take your furry friends back to their roots. Add a little Jimbo's. Raw meat mixed into mealtime. Feed as a main meal, topper or treat. Get yours now in your supermarket pet fridge and give your pets the Jimbo's they deserve.
12: Are you ready to go home?
13: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
14: Power Drive at 5.
15: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
16: Power Drive at 5 आप सुन रहे हैं अभी, और अभी मौका है आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का फॉर यू नो फेस्टिवल का मौका शुरू हो जाता है यहाँ पे, मतलब फेस्टिवल्स का सीजन शुरू हो जाता है यहाँ पे इमेजिन इंडियन ट्रेडिशन
17: में अगर देखा जाए
16: आफ्टर रक्षाबंधन।
17: सो रक्षाबंधन जो है इसी महीने में है 28 अगस्त को, तो नाउ इज द टाइम टू पार्टिसिपेट। कॉल कीजिए 0800-00 हम पर और आपको अपनी सिबलिंग की कोई मेमोरी शेयर करनी है, उनका परफॉर्मेंस रिव्यू आपको यहाँ पर देना है 0800-00 हम पर। आपकी सिबलिंग जो है, आपके कभी उनके साथ ऐसे लड़ाई हुई है जहाँ पर एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर आपने ऐसा लड़ाई की है कि ये आपकी है या उसकी है, एंड द डिसीजन जो है इसको कभी मतलब यू नो फॉर एग्जाम्पल रिमोट हो गया, मेरे को लगता है रिमोट के ऊपर काफ़ी सिबलिंग्स की लड़ाई होती रही है बचपन से ही कि हाँ, क्योंकि रिमोट जिसके हाथ में उसका चैनल है।
16: अच्छा, राइट
17: या तो जिसके हाथ में रिमोट आएगा वही चैनल वहाँ पे लगने वाला है। मेरे भाई की बहुत होती थी, बिकॉज अगर उसके हाथ में रिमोट है तो स्पोर्ट्स चैनल, वो क्रिकेट ही देख रहा है। अगर मेरे हाथ में रिमोट है तो मैं बाकी चैनल्स देख रही हूँ।
16: टीवी देख रहे हो?
17: हाँ, लेकिन बाकी भी। सो वो बहुत डिपेंड करता था। सो मेरे को लगता है कि मेरी जो सबसे बड़ी लड़ाई है चीज़ों को छीनने में कि मैं इसको रखूँ या वो इसको रखे, यू नो टग ऑफ वॉर कह लो, टग ऑफ वॉर काइंड ऑफ फाइट जो है वो रिमोट की होती थी।
16: राइट,
17: व्हाट वाज योर टग ऑफ वॉर काइंड ऑफ फाइट?
16: बताइए यहाँ पे 0800-004-866 इज द नंबर, कॉल अस ओवर हियर एंड शेयर यार योर बचपन का कोई ऐसा
17: या फिर इसके रिलेटेड कोई मेमोरी आपको शेयर करनी है वो भी शेयर कर सकते हैं यहाँ पे।
16: किस बात पे आपका ऐसा खींचतानी होती थी कि भाई ये मेरा है, नहीं ये मेरा है? काफी बार ऐसे भी होता है ना अपने पेरेंट्स को लेकर प्यार कि नहीं ये मेरे से,
17: मुझे ज्यादा प्यार करते हैं,
16: तू तो अडॉप्टेड है,
17: ये तो हर कोई बोलता है, ये मैंने भी सुना हुआ है, मुझे भी बोला हुआ है तू अडॉप्टेड है, एक टाइप पे मैंने मान भी लिया था।
16: आपको आपके छोटे भाई ने बोला आप अडॉप्टेड हो? अरे बाप रे,
17: आई नो
16: छोटा भाई आपको बोल रहा है, मतलब वो था भी नहीं वहाँ पे जब आपको घर लेकर आए थे वो।
17: अरे तो मैंने एक टाइम में माना भी था, बिकॉज दीज थिंग्स यू डू ना, और आप मानते भी हो, और अब जाके ना मेरे को लगता है रियलाइज होता है कि यार ये चीजें जो होती है कितनी कॉमन है, ये हर घर में होती है, ये ऐसी टर्मिनोलॉजी ऐसे वर्ड जो है ये हर घर में होते हैं। मैं एक और रील देख रही थी, वहाँ पे एक बंदा चल रहा है और कहता है कि अगर आपने ये कभी बचपन में किया है तो लेट मी नो, और मुझे लगता था कि मैं सिर्फ पागल हूँ जो ये करती थी कि अगर मैंने इस ब्लॉक से उस ब्लॉक तक 10 स्टेप्स में मैंने ये कंप्लीट कर लिया तो आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, अगर ये मैंने कर लिया तो आज ये होने वाला है, ऐसा माइंड में सोच सोच के चलना।
16: इसके आगे एक लेवल पे जाता था मैं, क्या करता मैं करता था, एक छोटा सा पत्थर इंडिया में ना तो छोटा पत्थर होता रास्ते पे होगा, तो उस पत्थर को मैं ड्रैग करके लेकर जा रहा हूँ मेरे घर से, अगर मैं ट्यूशन जा रहा हूँ वहां तक मैं उसको ड्रैग करते करते लेकर जाऊंगा लात मारते मारते।
17: ओह माय गॉड,
16: फिर भी जिंदगी में कभी फुटबॉल नहीं खेला मैंने क्योंकि पत्थरों पे लात मार रहे थे।
17: पत्थर ही था ना वो,
16: तो ऐसे सारे भी बहुत हम लोग करते थे चीजें।
17: सो यू हैव 1 मिनट मोर गाइस, थोड़ा और टाइम हम आपको यहाँ पे देने वाले हैं।
16: कितना जीत सकते हैं वो बताइए आप पहले। सैंडी
17: प्राइस यहाँ पे है $250
16: दो लोग जीत सकते हैं, बस आपको यहाँ पे कॉल करके किस्सा शेयर करना है आपके सिबलिंग के साथ वाला,
17: परफॉर्मेंस रिव्यू उनका आपको देना है, एंड हमारे सोशल मीडिया कॉम्पिटिशन में जाके भी पार्टिसिपेट कीजिए, जहाँ पे $300 कैश आप जीत सकते हैं। आपको करना क्या है, हमारे फेसबुक पेज पे जाइए हम के, वहाँ पे पोस्ट है रक्षाबंधन की, अपलोड अ फोटो एक मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट की इन द कमेंट सेक्शन, जो आपकी जिस ऑब्जेक्ट के साथ आपके अपने भाई बहन की मेमोरी कनेक्टेड है उसके बारे में लिखिए, टैग योर सिबलिंग और आपका नाम इस ड्रॉ में जाएगा, जहाँ पे $300 कैश ये आपके नाम हो सकता है।
3: Bollywood's most wanted.
18: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ।
19: मैं लाऊं अपना A game.
3: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाज में सुन रहे थे आप ये बहुत ही बढ़िया सा गाना। वेल, तुलसी कुमार से याद आया कि आज ट्रेंड मेकर्स में हम तुलसी कुमार के रिलेटेड ही उनके फादर को ट्रिब्यूट दे रहे हैं।
1: गुलशन कुमार को आज हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं। गुलशन कुमार जिन्होंने कैसेट्स का जमाना लेके आए म्यूजिक इंडस्ट्री में, इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में, तो उनको आज हम ट्रिब्यूट देने वाले हैं। एक नया रेवोल्यूशन इंडियन म्यूजिक में वो लेके आए थे। तो ट्रेंड मेकर्स में आज गुलशन कुमार ट्रिब्यूट रहेगी, बिकॉज टुडे इज हिज डेथ एनिवर्सरी। इवेंट्स के बारे में बातें करते हैं, तो वैसे भजन जैम्स जो है ये होने वाला है, जहाँ पे रवितेश दियो जो है अपने लाइव बैंड के साथ एक अपलिफ्टिंग इवनिंग में आपका साथ देने वाले हैं, विच विल बी फ्यूजन ऑफ भजन एंड कीर्तन्स। 22 अगस्त को 7 PM ऑनवर्ड्स वैदिक सेंटर में आपको पहुंचना है। टिकट सिर्फ $30 की है। इवेंट ब्राइट पे जाके ये टिकट्स आप खरीद सकते हैं।
0: या जरूर पहुंच जाइएगा भजन जैम्स एक्सपीरियंस करने के लिए ऑन सैटरडे 22 अगस्त। वेल, हमने काफ़ी पॉडकास्ट रिसेंट में रिकॉर्ड किए और रिलीज़ भी किया आपके लिए, जैसे कि हमने न्यूजीलैंड वर्क के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, और एम्प्लॉयर्स के लिए बेनिफिट हो वैसा एक पॉडकास्ट लेकर आए।
1: और मैं आज न्यूज़ पढ़ रही थी रुजबे की, कीवी सेवर की न्यूज़ थी कि कई लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि व्हेन समवन पासेस अवे तो उसका जो कीवी सेवर है ऑटोमेटिकली उनकी फैमिली को चला जाता है। ऐसा नहीं है, अनटिल अनलेस दे हैव विल और समथिंग एल्स। इसको लेके भी हम एक पॉडकास्ट आने वाले दिनों में करने वाले हैं, विच विल बी अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट फॉर यू, सो स्टे ट्यून। उसके लिए भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट जो है वो आपके लिए लाइंड अप है।
0: राइट, तो आपको बस सुनना है उनको, बस उतना ही है आपका।
1: या जरूर सुनेगा, बिकॉज आपके लिए मेहनत बहुत करते हैं। जैसे कि राइट नाउ द स्टूडेंट्स, ईयर 13 के स्टूडेंट्स के साथ हमने पॉडकास्ट किया है, जो कि अर्मिस्टन सीनियर कॉलेज के हैं। इन्होंने एक स्कूल बिजनेस प्रोजेक्ट को रियल वेंचर ही बना दिया है इन्होंने, जहाँ पे एक बोर्डिंग गेम इन्होंने बनाई है मनी में हम,
0: जो बोर्ड गेम,
1: बोर्ड गेम बनाई है मनी में हम, जो कि बच्चों को टीच करती है बिटवीन द एज ऑफ 9 to 15 रियलिटीज ऑफ मनी, कि फाइनेंशियल डिसीशंस वो कैसे ले सकते हैं। और मेरे को लगता है कि ये एज परफेक्ट होती है इन चीज़ों के बारे में सीखने के लिए।
0: जी, सो आप ये पॉडकास्ट जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। ड्राइव लिखकर भेजिए ऑन 5599 एंड वील सेंड यू द लिंक फॉर द पॉडकास्ट।
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
3: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
4: Buri planning se aaye hain. Shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
5: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
6: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप। वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये। We have lots of fun basically with the cold weather।
5: कौन है?
6: हुनुआ और वेटाकरे।
5: अच्छा, हुनुआ वेस्ट में।
6: किधर है हुनुआ?
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
2: brought to you by Fortune with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Beds R Us Manuko, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
3: Weekdays 6 to 10 AM.
7: Accurate traffic.
8: Kitchen Mania free installation.
9: Rain overnight for Auckland, a low of 12. The northern's heavy between Oniwa and Northcote Roads. The northwestern slow from town to Te Ata 2. On the southern, it's heavy northbound Papatoetoe to just past Green Lane. South from town to Mount Wellington. On the southwestern, there's a crash affecting northbound traffic after Lambie Drive. Left northbound lane is blocked. NZTA advising you State Highway 1 instead.
8: Order your new Kitchen Mania kitchen this month and receive free installation. Kitchenmania.co.nz.
10: डॉक्टर ने क्या बोला?
11: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए।
10: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए, वरना पता भी नहीं चलता।
12: That conversation is happening in more TV homes than you think. Hi, I'm Nitesh Hira from Assured One. My job isn't to just sell policies, it is to help you understand your options and make sure your family is protected.
13: Book your free insurance review today. Call Assured One on 0800-77-HIRA. That's HIRA. Or visit assureone.co.nz. North Endale Advisory Limited, trading as Assured One, is a licensed financial advice provider.
14: Kiwi kids are active kids, creative kids, sporty kids. Are you a Weet-Bix kid?
15: Unnees saal baad, Shivam is back. A man haunted by grief and loss, searching for a purpose in life. Awara Bantu, starring Imran Hashmi and Disha Bhatni.
16: Maut, mera usse ek purana rishta hai, ek karz hai. जो मुझे चुकाना है।
15: आवारा बन 2 रिलीजिंग इन सिनेमास ऑन अगस्त 14th। Distribution partner Forum Films. Rating TBC. Professional Financials है साथ आपके. Loan और Insurance एक छत के नीचे. No broker charge. बस trusted advice. हर deal बनाए perfect right.
17: Refinance के लिए compare करें different banks. Loan process was simple and frank.
15: Business Finance या Income Protection हो. हर step पर guidance perfect हो. सब कुछ मिलेगा यहीं. अपना future secure बनाए.
17: Professional Financial Solutions. Your future, our priority. Call 09-846-9934 or search PFSL. T's and C's. Lending and credit criteria apply.
18: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Gold and Diamonds at Botany Town Center, Auckland.
19: Are you ready to go home?
20: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Bukikoi. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
21: Power Drive at 5.
22: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
23: Let's go.
22: Straight from the heart.
24: Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local developer.

0: You're listening to Humpling, Bollywood's biggest hits. वैसे हम जा रहे हैं बाली और बैंकॉक ईस्टर 2027 में और 50% टिकट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट, 50% टू गो एंड पता नहीं, होपफुली इफ वी गेट रजिस्ट्रेशंस देन Yeah, we might have to open up a few more slots as well. Because inquiries काफी आ रही है.
1: दो countries हैं और one epic adventure रहने वाला है zero stress के साथ. So सिर्फ 12 spaces बाकी है. So Bali Bangkok getaway आप मेरे और उसबे के साथ enjoy कर सकते हैं March 2027 में. So this is Easter weekend guys. 23rd मार्च से लेके हमारा travel dates है 2nd April तक.
0: All inclusive package available है आपके लिए. Around 7995 में you can get everything in there. 3 to 4 to 5 star accommodation plus breakfast, lunch, dinner, everything included.
1: And activities included. हाँ, everyday की activities है.
0: हाँ, हर रोज कोई ना कोई activity भी हम वहाँ पे कर रहे हैं. फिर उसके साथ साथ
1: it's basically guided tour जैसे होता है. हाँ. वो है ये. एंड अर्ली बर्ड बोनस भी है. अगर आप इसी महीने में अपना ट्रिप बुक करते हैं तो यू विल रिसीव वन फ्री नाइट अकोमोडेशन एनी वेयर इन न्यूजीलैंड इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट फॉर टू. लिमिटेड सीट्स है. आई एम सेइंग कि जल्दी फिल हो रही है गाइस, सो मेक श्योर कि आप बुक करा लो. सन टूर से बात कर सकते हैं 0800 4 सन टूर्स पे, विच इज 0800 4 786 868.
0: मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप एक फैमिली हो, यंग फैमिली हो एंड यू हैव चिल्ड्रन एज वेल, फील फ्री टू हैव अ चैट विद अनिल भाटिया बिकॉज ही इज गॉट सम अमेजिंग प्लान्स फॉर यू. जहाँ पे उन्होंने हमें बोला है कि वो केस टू केस बेसिस देखेंगे एंड ही विल प्रॉबली, अगर आपके जो बच्चे हैं दे आर अंडर 5 और समथिंग लाइक दैट, it'll be very reasonable for them as well.
1: Yeah, तो मतलब कुछ ऐसी deals भी है उनके पास. So it's good to, अगर आपका मन है जाने का, तो we will say कि just call him, just have a chat with him.
0: 0800 Sun Tours, 4 Sun Tours, ना?
1: 4 Sun Tours, 0800 4 numeric 786 868. या फिर अगर आप drive लिखते हैं 5599 पर, auto reply में आपको एक form मिलेगा, आप fill कीजिए and आपकी details Sun Tours के पास चले जाएंगी.
0: So yeah, get in touch with Sun Tours and Anil Bhatia from Sun Tours because spaces are going to get sold out very soon.
1: Yeah.
0: And agar aap is mahine karte ho to aapko milega mauka to win one free night accommodation. To wo ek bahut important cheez hai ki let's
1: kahin
0: say
1: kahin pe bhi agar aap South Island ja rahe ho kahin pe ghumne ke liye,
0: and it's transferable, so it doesn't have to be you going for that. You can give it to your parents, you can give it to your
1: even for
0: children.
1: This trip, ye trip bhi agar aap you know apne parents या किसी के लिए प्लान करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं.
0: और पेरेंट्स के लिए काफी सही हो जाता है क्योंकि पेरेंट्स को अकेले भेजना थोड़ा ये भी लगता है ना कि यू नो हु विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ देम. सो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, दे विल हैव फन विद अस, वी विल टेक देम अराउंड एंड वी विल एंजॉय.
1: आपको कॉन्फिडेंस होगा कि भाई ये ग्रुप में जा रहे हैं तो वो सेफ है.
0: Yeah, so yeah, get in touch with Sun Tours. Well, आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया सा आवर लेकर आने वाले हैं नेक्स्ट आवर ट्रेंड मेकर्स में. It's a tribute to Gulshan Kumar. Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. इधर उधर जाने से बचना. Call करो 0800 Rachna. That's 0800-722-4624. First home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.

0: सुबह 11 बजे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कॉल करें 027-2810-968 पे। सूचित किया जाता है अलका, कल्पा, नीता, ममता, मुक्ता और डॉक्टर हर्षद पटेल की माँ, भूतपूर्व सुआ और मैंगरी के ठाकुर भाई गोपाल भाई पटेल की पत्नी ताराबेन पटेल की मृत्यु सूरत इंडिया में हो गई। अंतिम संस्कार 9 AM को सैटरडे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा और बरियल किया जाएगा मनुकाओ मेमोरियल गार्डन्स सुबह 11 बजे। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कॉल करें 027-2810-968 पे।
1: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
2: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
3: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
2: हाँ।

0: beds are as Manugo and Bukikoi. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Let's go! 3, 2, 1.
2: Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rizbe.
3: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
4: छह बज चुके हैं और ट्रेंड मेकर्स में आपका स्वागत है। हाय सैंडी, गुड इवनिंग।
5: गुड इवनिंग। आज ट्रेंड मेकर्स में हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं गुलशन कुमार को। गुलशन कुमार, ये नाम काफी लोगों ने सुना है। टी सीरीज के साथ जुड़ा हुआ है। कैसेट्स को ट्रेंड करने का जो हम कह सकते हैं कि खिताब है, वो गुलशन कुमार को जाता है।
4: आज भी जब टी सीरीज का कोई हम गाना देखते हैं तो पहले वो उनका वो आता है ना, फोटो, ऐसा
5: फोटो आता है। काफी मूवीज में भी आता है।
4: हाँ, मूवीज में भी आता है।
5: या सो इंडिया के बिगेस्ट म्यूजिक कंपनी टी सीरीज, इसको इन्होंने बनाया था। ही स्टार्टेड द टी सीरीज,
4: वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूब चैनल्स ना, आई थिंक
5: YouTube चैनल्स भी, लेकिन उससे पहले कैसेट कंपनी। YouTube खैर बाद में आया, लेकिन उससे पहले कैसेट कंपनी दैट इज स्टार्टेड इन 80s एंड 90s।
4: जी, तो आज उनके बारे में थोड़ी बहुत बातें करेंगे, उनके बारे में थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन देंगे एंड उनके हिट गाने आपको हम सुनाएंगे, विच इज़ गोइंग टू बी अ वेरी टफ चॉइस टू बी ऑनेस्ट।
5: बिकॉज टी सीरीज के अंडर, गुलशन कुमार के अंडर जो कुछ हिट गाने हैं, ये आज आपके लिए हम यहाँ पे प्ले करने वाले हैं। एंड वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग सम सॉन्ग्स जब वो एक्टिव थे इंडस्ट्री में। उनके एक्टिव रहते हुए जो गाने उन्होंने खुद प्रोड्यूस करवाए हैं, वो गाने आज हम एक्चुअली में यहाँ पे प्ले करने वाले हैं। आज
4: थोड़ा 90s वाला माहौल रहने वाला है रेडियो पे इस घंटे।
5: या
4: बट एक्चुअली आपको पता है कि ये इनकी फैमिली माइग्रेट हुई थी वेस्ट पंजाब, जो अभी पाकिस्तान में। तो 1947 के टाइम पे वो वर्चुअली लिटरली आए थे विदाउट एनी एसेट्स एंड वो काम करते थे अपने डैड के एक जूस स्टॉल पे।
5: ओके।
4: और वो जब यहाँ पे काम करते थे तो उनका डेली रूटीन होता था शुगर केन को क्रश करना और सिट्रस फ्रूट्स को क्रश करना और वो सब करना। तो मतलब काफ़ी मेहनत वाले काम किए उन्होंने।
5: एंड उनका जो विजन था ना, बहुत ही सिंपल था कि इंडियंस उस समय पर इम्पोर्टेड ओरिजिनल रिकॉर्डिंग्स जो है वो बाय कर रहे थे, विच वॉज वेरी एक्सपेंसिव। उनका था कि इंडियंस के लिए कुछ अफोर्डेबल म्यूजिक होना चाहिए, तो इसलिए वो कैसेट्स का जमाना लेके आए।
4: और उन्होंने पहले एक छोटी सी दुकान, चीप ऑडियो रिकॉर्ड्स वाली दुकान उन्होंने चालू की, जहाँ पे वो ब्लैंक कैसेट्स और वो सब करते थे। 1978 में बेचते थे, ब्लैंक कैसेट्स बेचते थे वो पहले। और फिर वहाँ से फिर उन्होंने डिसाइड किया कि यार नहीं, म्यूजिक ये जो है ये बहुत ही अनटैप्ड मास कमोडिटी है एंड विजनरी यार, क्योंकि उनको पता चल गया कि इसमें काफी स्कोप हो सकता है।
5: वन ऑफ द बिगेस्ट इनोवेशन हम कह सकते हैं म्यूजिक की दुनिया में, ही चेंज द इकोनॉमिक्स ऑफ इंडियन म्यूजिक
4: कैसेट्स को लॉन्च करके।
5: बिकॉज इट प्लेड ह्यूज रोल इन म्यूजिक इंडस्ट्री, क्योंकि हम कैसेट्स खरीदते आए बाद में म्यूजिक की।
4: या एब्सोल्युटली, आई थिंक कैसेट्स पे डिपेंड किया था हमने काफी टाइम तक। काफी मतलब हमारा बचपन तो हमने कैसेट्स में निकाला है। जैसे हम कॉलेज में गए तब जाके सीरीज और डीवीडीज और वो सब चली गई। सो एनीवे, आज गुलशन कुमार को हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं, तो एंजॉय कीजिए दिस आवर ऑफ गुलशन कुमार।

0: ट्रेंड मेकर्स में आज एक से एक 90s के गाने आपको सुनने मिलेंगे, क्योंकि गुलशन कुमार को हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं इस घंटे।
1: वैसे गुलशन कुमार ने ना बहुत ही बड़ी मार्केट भी उस समय हिट किया था, भजन्स, आरतीज एंड डिवोशनल सॉन्ग्स। So he treated devotional music as niche market at that time, जो कि बाद में major commercial category बनी।
0: Yeah, and no wonder उनके वो photo में भी काफी ऐसा वो आता है ना, ऐसा पूजा वाला type।
1: हाँ, थोड़ा religious,
0: religious आता है। But उन्होंने एक बहुत बढ़िया cassette revolution में एक ultra low pricing strategy launch की थी 1983 में, जहाँ पे उन्होंने कैसेट्स बेचना शुरू किया एज सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड इस नाम से, और उन्होंने लिटरली 10 और 15 रुपए की रखी थी कैसेट एक जमाने में, एंड देन स्लोली स्लोली ही इंक्रीज द प्राइस ऑफ द, बिकॉज उनको रियलाइज हुआ कि ये मास प्रोडक्ट हो सकता है।
1: बिकॉज पहले चीज सस्ती रखोगे, लोग खरीदेंगे उसको, यूज करके देखेंगे, देन कि यू नो उनको सही भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है,
0: फिर उनको आदत पड़ जाएगी ना। और फिर मेरे को याद है कि हम लोग 50-55 रुपए की कैसेट लेते थे एक जमाने में। सो या इट डिड बिकम क्वाइट एक्सपेंसिव, बट दैट वॉज नॉट हिज ओनली इनोवेशन। उसके बाद उन्होंने म्यूजिक स्टोर्स भी खोलना चालू कर दिया था, जहाँ पे वो ट्रेडिशनल रिकॉर्ड लेबल्स बेचते थे इन हाई थ्रू हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिकॉर्ड शॉप्स।
1: वैसे इनका जो टी सीरीज इन्होंने बनाई कंपनी, इट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म काफ़ी सिंगर्स के लिए, म्यूजिशियंस के लिए। कंपनी की जो हिस्ट्री है वो क्रेडिट देती है गुलशन कुमार के विजन को, उन्होंने एक टैलेंट बैंक बनाया जहाँ पे नया टैलेंट वो प्रमोट करते थे।
0: आपको पता है व्हाट डज टी स्टैंड फॉर इन टी सीरीज? त्रिशूल। वो द ट्राइडेंट ऑफ लॉर्ड शिवा, और वो रिफ्लेक्ट करता है गुलशन कुमार का इंटेंस पर्सनल डिवोशन। वेल, और भी बातें करेंगे हम गुलशन कुमार के बारे में आज, बट अभी उनके कुछ गाने आपके लिए।

0: You're listening to Hum, playing Bollywood's biggest hits. Gulshan Kumar को आज हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं और उनके बारे में थोड़ी बहुत बातें कर रहे हैं. सैंडी, आपको पता है उनका जो फाइनेंशियल ग्रोथ है टी सीरीज का, ये पहले एक 20 करोर था 1985 में, वहाँ से ये 200 करोर्स पे गया. अभी इन टर्म्स ऑफ डॉलर वैल्यू मैं बताता हूँ तो 1985 में 16 मिलियन डॉलर्स था. बाई 2000 by 1991 it went to 88 million and then it reached 500 crores which is 140 million by 1997.
1: Wow.
0: और वो गुलशन कुमार बने थे officially India's highest individual taxpayer उस time पे.
1: Wow.
0: So yeah, like and आज भी मुझे लग रहा है T series I think one of the richest
1: है ये
0: entertainment में at least.
1: Well, T series ने कुछ movies को produce भी किया है 90s में. It was not just about the music, was about producing the movies as well. लेकिन 90s में इन्होंने कुछ movies को किया था, but mostly they produce the music only that became part of Bollywood culture. So T series catalog जो है इसमें म्यूजिक एसेट्स 1980s की भी आती है, 90s की भी आती है बेसिकली. एंड बिग टर्न था इस टी सीरीज को जब गुलशन कुमार का मर्डर हुआ इन 1997.
0: तो आपको पता है ना क्यों हुआ उनका मर्डर? सो बेसिकली उसका बैक स्टोरी ये है कि 90s में बहुत एक्सटॉर्शन होता था डी कंपनी के द्वारा बॉलीवुड मूवीज का. सो यूजुअली उनका डिमांड होता था 10 करोर्स के इतना पे करना है मूवी रिलीज करने के टाइम पे. तो गुलशन कुमार ने फर्मली रिफ्यूज़ कर लिया था पे करना. और फिर आज ही के दिन मतलब 12 अगस्त 1997 में वो जब अपने प्रेयर्स डेली प्रेयर्स से रिटर्न कर रहे थे टेंपल से, उनको एम्बुश करके उनको 16 टाइम्स शूट किया था.
1: या एंड कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे वो. ये मर्डर जो है बॉलीवुड की वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्री भी है, बिकॉज ये जो केस है वॉज इन फेमस बिकॉज इट इन्वॉल्व्ड एलिगेशंस ऑफ मुंबई अंडरवर्ल्ड एक्सटॉर्शन जैसे तुमने बताया, एंड इवन पीपल फ्रॉम द म्यूजिक इंडस्ट्री जैसे कि नदीम सैफी का नाम फ्रॉम नदीम ग्रोवर, उनका नाम बहुत बार हाईलाइट हुआ इसमें कि वो इन्वॉल्व थे, लेकिन उन्होंने हमेशा बोला कि डिनाई किया है अपने इन्वॉल्वमेंट को. हमेशा
0: काम भी करते थे ना.
1: यस, तो होता है कई बार कि जो साथ में काम करते हैं उनके ऊपर भी नाम आता है. बट या हिज टी सीरीज जो थी, हिज सन भूषण कुमार टुक ओवर टी सीरीज को आफ्टर हिज डेथ. ही टुक कंट्रोल ओवर द कंपनी
0: एट द एज ऑफ 19.
1: एट द एज ऑफ 19, यार इमेजिन बीइंग 19 एंड सडनली इंडिया के बिगेस्ट म्यूजिक इंडस्ट्री को आप संभाल रहे हो.
0: और उसको अच्छे से और बढ़ाया उन्होंने,
1: बहुत अच्छे से बढ़ाया है. उनकी बेटी ने भी आगे जाके बढ़ाया ही है उसको.
0: दैट्स राइट. एनीवे, और भी बातें करेंगे लेकिन अभी के लिए कुछ गाने आपके लिए गुलशन कुमार इराक के राइम्स से.

0: Trend Makers.
1: Are you ready to go home?
2: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Bukikoi. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
3: How soon are Trend Makers? Or aaj Gulshan Kumar ko humne tribute diya because he was assassinated on this day.
4: On this day, well,
3: in 1997, which is almost 30 years back now.
4: So Bollywood industry में तो ये पैदा नहीं हुए, लेकिन इन्होंने अपना empire business जो है Bollywood में ऐसा बनाया कि 80s, 90s, 20, 2000s ले लो या फिर आपका time ले लो,
3: अभी तक वही तो T-series के ही
4: T-series छाया हुआ है. So उनकी power जो है देखा जाए music की जो उन्होंने build किया जो उन्होंने अभी तक है कायम है.
3: But अभी T-series बहुत खुद भी अभी उसमें चला गया ना, infamous हो गया है for putting copyright strikes and being very very strict about a lot of things ना.
4: Yes,
3: काफी क्रिएटर्स को बहुत अपसेट किया है टी सीरीज ने.
4: या 100% रिसेंटली वो भी आया था. वेल, उनकी जो बेटी है तुलसी कुमार और सेल्फ इज अ सिंगर, उन्होंने कई बार अपने डैड के बारे में बातें की है कि उनकी जो सिंगिंग एबिलिटी है उसके डैड ने बहुत यंग एज की जो वो थी जब से उनको नोटिस करना शुरू किया था कि ये बड़ियों की सिंगर ही बनेगी एंड शी इज अ सिंगर टुडे. टी सीरीज ने वैसे कई ट्रिब्यूट शोज भी ऑर्गेनाइज किए हैं गुलशन कुमार के लिए. एक बहुत बड़ा किया था 2015 में जहाँ पे एआर रहमान, शंकर महादेवन, अनुराधा पौडवाल, अनुराधा पौडवाल वाज अ बिग वन फ्रॉम टी सीरीज, राहत फतेह अली खान, अलका याग्निक, उदित नारायण, हिमेश रेशमिया 2015. तब ये ट्रिब्यूट, इन सब ने ट्रिब्यूट दिया था उस समय पर गुलशन कुमार को.
3: Well, that was all about Gulshan Kumar today. Thank you so much यहाँ पे सुनने के लिए Trend Makers. आपके लिए ड्राइव शो हम लेकर आएंगे कल दोबारा, तो 4 बजे से हमारा साथ यहाँ पे दीजिएगा. कल थर्सडे है, बहुत ही शुभ दिन, एंड आज का जो आज की शाम है उसको एंजॉय कीजिए. टेक केयर, हैव फन विथ योर फैमिली फ्रेंड्स एंड एंजॉय. वील सी यू टुमारो.
4: बाय.

हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।

0: 19 saal baad, Shivam is back. A man haunted by grief and loss, searching for a purpose in life. Awarapan 2, starring Imran Hashmi and Disha Barney.
1: Maut, mera usse ek purana rishta hai, ek karz hai, jo mujhe chukana hai.
0: Awarapan 2, releasing in cinemas on August 14th. Distribution partner Forum Films. Rating TBC. TradeDepot.co.nz.
2: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. 12 panel hybrid solar system. Fully installed for just $9,999. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
3: Time check. Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
4: Good evening to you with the latest at 8. I'm Geoff Ryan. The Prime Minister says Chris Pink's ministerial position had become untenable after he launched a leadership challenge that saw a confidence vote today. Christopher Luxon survived the ballot, his second this year, and afterwards stripped Chris Pink of his portfolios. The Opportunity Party would have the numbers to enter Parliament, rising to 8% support. According to the latest One News Varian poll, ACT rose 3 points to 9. State Highway 1, just south of Hines, near Ashburton, is shut following a crash. There are reports of serious injuries and motorists are asked to avoid the area. In sport, a key forward has re-signed with New Zealand Rugby, the Highlanders and Southland. 43-test loosehead prop Ethan de Groot's new deal extends his contract for another 2 years and runs through to the end of 2029. The 28-year-old says staying down south was an easy choice. And in rugby league, with Machinery House in a league of their own, Auckland is one of five cities competing to host the 2028 NRL Grand Final in what is the biggest bidding war ever for the showpiece event.
5: Sports News.
3: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
6: World's best, hamari good brands bhi hai.
3: Hum. Night Cafe on Hum. A moment. Krishka Magic. Only on Hum.
7: Good evening, everyone. Welcome to the show. मैं क्रिश आ गया हूँ आपके लिए मिडवीक ये जो शो लेकर मिडवीक मसाला आपके लिए मैं शुरू करूँगा लेकिन उससे पहले नाइट कैफ़े में स्वागत है आपका. मिडनाइट तक ये चलता रहेगा आपके लिए. बैक टू बैक सॉन्ग्स होंगे, इंटरेस्टिंग बॉलीवुड खबरें होंगे और बहुत सारे तमाम अन्य जानकारी है जो आपके लिए हम लेकर आए हैं, चाहे वो रक्षाबंधन प्रमोशन हो, हम पॉडकास्ट पर जानकारी हो या फिर कोई इवेंट्स हो, कोई शो जो आने वाला है या कोई इंटरनेशनल ट्रिप के बारे में बातें अगर हो, वो सभी कुछ आज आपके साथ हम करेंगे. इसके लिए आपको बस हमारा साथ देना है. बट फर्स्ट आप देर ना करते हुए मिडवीक मसाला आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं.
3: थोड़ा हटके, थोड़ा स्पाइसी, ये है मिडवीक मसाला.
7: वेलकम एवरीवन टू मिडवीक मसाला, जिसमें मसालेदार गॉसिप हम लेकर आते हैं आपके लिए. बॉलीवुड की ताज़ा तरीन खबरें हम मैं लेकर आया हूं और हम आपके साथ शेयर करते हैं. गुरु रंधावा रिस्पॉन्स टू फाइन शाइट बैकलैश, आर माधवन डिफेंस धुरंधर, ये तो मैंने आपको बता दिया. अमृता खलविलकर ने लीगल वार्निंग इशू किया है और साथ ही मोहनलाल सिडनी शो को कैंसिल कर दिया गया है. मिथुन चक्रवर्ती को सर्जरी के का सामना करना पड़ा. पीयूष मिश्रा ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया है. सिद्धार्थ ने बात किया है अबाउट सपोर्टिंग स्टूडेंट प्रोटेस्ट. कुमार शानू ने ही टुक अ डिग एट उदित नारायण, इस पर जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूँगा बहुत ही जल्दी इसी घंटे पर. इनफैक्ट मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

मिडवीक मसाला जारी है जिसमें बॉलीवुड खबरें आप तक हम लेकर आते हैं। शुरू करते हैं गुरु रंधावा ने जो रिप्लाई दिया टू फाइन शाइट बैकलैश, ये 10th अगस्त की स्टोरी है। गुरु रंधावा ने रिस्पॉन्ड किया है टू क्रिटिसिज्म सराउंडिंग हिज सॉन्ग फाइन शाइट। क्रिटिक्स ने अक्यूज़ किया है द ट्रैक ऑफ बींग मिसोजिनिस्टिक और ऑकवर्ड, लेकिन कॉन्ट्रोवर्सी और भी बड़ी जब काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शंस ऑनलाइन इस गाने को मिला। गुरु ने लोगों से कहा कि ही दे मस्ट काम डाउन, और इन्होंने डिस्क्राइब किया है द फ्रेज एज ए स्लैंग। इन्होंने गाने को डिफेंड किया वाइल एक्नॉलेजिंग द सॉन्ग वाइल एक्नॉलेजिंग द स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया रिस्पॉन्स जो इस गाने को मिला है। कुछ और गाने आपको सुनाते हैं क्रिश के साथ है।

मिडविक मसाला आपके लिए जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, एक एक करके आपके सारे फेवरेट सॉन्ग्स भी मैं लेकर आऊँगा। बॉलीवुड खबरें भी हमारे साथ होगा। मोहनलाल सिडनी शो को कैंसिल कर दिया गया है। मोहनलाल ने एक स्टेज शो प्लान किया था इन सिडनी, लेकिन वीज़ा प्रॉब्लम के कारण इसको कैंसिल किया गया है। ये एक मलयालम सुपरस्टार है जो सिडनी नहीं ट्रेवल कर पाए बिकॉज ऑफ हिज वीज़ा इशूज़। इन्होंने ऑर्गेनाइजर्स से अपोलॉजी लिया है, परफॉर्मर्स और ऑडियंस से भी माफ़ी मांगी है, और ही टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। और कैंसिलेशन की वजह से फैंस और पार्टिसिपेंट्स काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुए, लेकिन उनके हाथ में ये नहीं था, इट वॉज बियॉन्ड देयर कंट्रोल। कुछ ही देर में मिथुन चक्रवर्ती अंडरगोज सर्जरी, इस पर जानकारी देंगे। कोलकाता में मिथुन चक्रवर्ती है और इनका सर्जरी हुआ, इस पर जानकारी बहुत ही जल्दी। मिडवीक मसाला सुनते रहो

0: the moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: मिडवीक मसाला आपके लिए जारी है 8 to 9 एवरी वेंसडे नाइट हम लेकर आते हैं आपके लिए. मिथुन चक्रवर्ती के बारे में बातें कर रहे हैं हम. ये ही अंडरवेंट सर्जरी. वेटरन एक्टा को अस्पताल में भर्ती किया गया था टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल इन कोलकाता और इन्होंने उनका सर्जरी हुआ टू रिमूव वही मेटल प्लेट जो इम्प्लांट किया गया था इसमें आफ्टर एन अर्लियर इंसिडेंट. प्रोसीजर सक्सेसफुल हुआ है लेकिन ये स्टेबल कंडीशन में है आफ्टर द ऑपरेशन. लेकिन अभी भी थोड़ा वीकनेस है इनमें, फ्रेजाइल है. और 5 decades का इनका करियर रहा है और अभी इनका फिल्म कुछ आने को भी है. होपफुली ही रिकवर्स फ्रॉम द सर्जरी एंड गेट्स बैक ऑन हिज फीट ताकि इनको हम फिल्मी पर्दे पर देख सके. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: Day on Hum.
1: We gotta go. Are you ready?
2: Come and take a trip with me.
3: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hum 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special Hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money. Vacation.
0: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
4: Let's go.
0: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
5: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
6: क्यों, क्या हुआ?
5: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने ही डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
0: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G. दैट्स 0800 564 424.
7: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
8: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है. सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
9: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994939 और विजिट legalassociates.co.nz.
10: आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं. पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को उनकी भाषा में मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है. अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है. कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800 862 342 या विजिट करें asianfamilieservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट.
11: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना.
12: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
13: And award goes to Indelible Homes.
12: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
14: Kahani of Indelible Homes.
15: Hi everyone, New Zealand's 2026 general election is coming soon, and this time it's different. You now need to enrol before voting starts. We're out telling everyone, aren't we, pup?
16: Remember, if you want to vote, you need to enrol first. Do it by 25 October at vote.nz. If you're already enrolled, you'll receive a pack from us soon. Just open it up, check your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.
17: नाइट कैफे ऑन हम. थोड़ा हटके, थोड़ा स्पाइसी, ये है मिडवीक मसाला.
18: You're listening to number one, Hum playing Bollywood's biggest hits. कुछ और बॉलीवुड खबरें आपके लिए हम लेकर आते हैं मिडवीक मसाला में. सिद्धार्थ ने कहा है कि ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं और इन्होंने डिस्कस किया है सपोर्ट फॉर दी CJP स्टूडेंट प्रोटेस्ट. और जो प्रोटेस्ट जंतर मंतर में हुआ, इन्होंने कहा कि एजुकेशन रिफॉर्म्स और अकाउंटेबिलिटी होना ज़रूरी है. यंग बच्चे जो लोग हैं, यंग पीपल इनफेक्ट है, इनको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है टू स्पीक अप. ये सिद्धार्थ का कहना है. दिया मिर्जा ने ऑल्सो सपोर्ट दिखाया स्टूडेंट्स राइट टू प्रोटेस्ट. और बोथ एक्टर्स ने अर्ज किया है क्वाइट स्ट्रॉन्गली कि ऐसे इश्यूज जो इंडियाज यूथ को अफेक्ट करता है, इनको और भी ज़्यादा अटेंशन दिया जाए. कृष के साथ है.

एक बहुत ही शॉर्ट न्यूज मैं आपको देना चाहूंगा अबाउट कुमार सानू टेक्स अ डिग एट उदित नारायण. जोकिंगली दो इन्होंने कहा है कि जो कंट्रोवर्शियल वायरल किसिंग वीडियो है इन्होंने इसको एड्रेस किया है. दो सिंगर्स वर मेजर राइवल्स ड्यूरिंग बॉलीवुड फेमस ईरा 90s के दौरान और कुमार सानू ने जोकिंगली कहा कि ये इंसिडेंट के बारे में कि इन्होंने कभी किसी को किस नहीं किया ना ही किसी फैन ने इनको किस किया है. मैं एक क्वेश्चन आपके साथ दे रहा हूँ.

0: Attention everyone, हम बोर्डरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
1: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
0: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
1: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
0: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बोर्डरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं।
1: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
0: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
2: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स, बॉटनी टाउन सेंटर।

0: non-stop Bollywood.
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम playing Bollywood's biggest hits.
2: March 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
3: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए.
4: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा.
3: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी.
4: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन.
3: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
5: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
6: हेलो एवरीबॉडी.
2: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
7: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
2: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस. क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम.
8: डॉक्टर ने क्या बोला?
9: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए.
8: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए, वरना पता भी नहीं चलता.
10: That conversation is happening in more TV homes than you think. Hi, I'm Nitesh Hira from Assured One. My job isn't to just sell policies, it is to help you understand your options and make sure your family is protected.
11: Book your free insurance review today. Call Assured One on 0800-77-HIRA. That's HIRA. Or visit assureone.co.nz. North Endville Advisory Limited trading as Assured One is a licensed financial advice provider.
12: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई-वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें. पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए. oaklandcouncil.govt.nz/whereitgoes पे. तमाकी तुरुकी, All Together Oakland.
13: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते.
3: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा.
14: अब हमारा क्या होगा?
15: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना.
3: तो क्या करें?
16: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना. दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन.
17: Want to be rewarded 5 times faster? Boost your offers in the Everyday Rewards app, spend with our partners and scan your card to enjoy more points. Download the Everyday Rewards app today and boost away. TCs and exclusions apply.
18: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert. Indelible.

0: contract for another couple of years, running through to the end of 2029. And round three of rugby's NPC kicking off tomorrow evening. It's Wellington hosting North Harbour, and Wellington persisting with that plan of playing open side Lucy Duplessis-Kirrifi at second five.
1: Sports News.
2: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill.
1: Playing Bollywood's biggest hits.
2: Night Cafe.
3: You're with Krish on Hum, playing Bollywood's biggest hits. Raksha Bandhan ke dauran aap $300 cash jeet payenge. Hamare Facebook page par jaye. Sibling bonds ko expensive gifts se nahi dekha jata hai ya tola jata hai. In fact, ordinary objects or extraordinary memories hi hamare liye kaafi hota hai. Jaise old cassette tape ho ya ek shared key ho, stolen t-shirt ho shayad. रक्षाबंधन पोस्ट हमने फेसबुक पेज पर डाला है, हम फेसबुक पेज पर. आप हमारे फेसबुक पेज पर जाए, एक फोटो अपलोड करें ऑफ वन मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट इन द कमेंट सेक्शन. दो तीन सेंटेंसेस आप जरूर लिखें अबाउट द मेमोरी जो इससे जुड़ी है, और टैग योर सिबलिंग. ड्रॉ में शामिल होकर $300 जीतने का मौका है. विनिंग स्टोरी को लाइव रेडियो पर पढ़ा जाएगा ऑन एयर ऑन फ्राइडे 28 अगस्त, और $300 कैश गिव अवे अनाउंसमेंट भी विनर को दिया जाएगा. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

सुनते रहो आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ रक्षाबंधन स्पेशल सिबलिंग परफॉर्मेंस रिव्यू। आपने जो एक्चुअल वर्क होता है उनका रिव्यू के बारे में सुना होगा, लेकिन अपने सिबलिंग को रिव्यू करना ये भी एक टास्क है आपके लिए जो हम लेकर आए हैं। थिंक योर ब्रदर और सिस्टर डिजर्व्स अ ग्लोइंग रिव्यू और नीड्स अ सीरियस अप्रेजल। आप कॉल करें जब हमारे साथी आपको इन्वाइट करते हैं टू गो लाइव ऑन एयर और ऑफिशियल परफॉर्मेंस रिव्यू आप उनको दे पाएंगे। रिव्यू में आप उनको मतलब इन चीज़ों पर इंक्लूड कर सकते हैं, बेस्ट और वर्स्ट सिबलिंग एवर, बोरोइंग योर स्टफ विदाउट आस्किंग, या हमेशा ट्रबल में होना, या आपका बिगेस्ट सपोर्टर बनना, या आपको अनॉय करना 24/7। आप अपने रिव्यूज़ को शेयर करें और ड्रो में शामिल होकर कैश जीतने का मौका है। 2 लकी विनर्स को $250 ईच दिया जाएगा। 28 अगस्त को ड्रॉ होगा और दो विनर्स को चुना जाएगा। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।

0: Night Cafe. You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: You're listening to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. Main Krish aapke saath de raha hoon. Hum boarding call is now open. Dream Island Escape jeetne ka mauka hai. It could be just one boarding call away. Do return air tickets to Vanuatu with Solomon Airlines plus $1,000 spending money jeetne ka mauka hai. Is tarah se aap enter kar payenge. Aap hum ko sune every weekday aur apne kaan ko khule rakhe for the special boarding call. 8 AM, 11 AM, 1 PM और 5 PM होगा. जैसे आप ये बोर्डिंग कॉल सुनते हैं, आपके पास 30 मिनट्स है टू हेड टू रोवा एंड एंटर बोर्ड नाउ. दैट्स इट. आपको बस बोर्ड नाउ लिखना है और आप ड्रॉ में शामिल होकर अनफॉरगेटेबल वनुआतु गेटअवे जीत पाएंगे विद सोलोमन एयरलाइंस. और अपना फ्लाइट ना मिस करें, बिकॉज दिस कुड टेक यू टू पैराडाइज थैंक्स टू सोलोमन आइलैंड्स फ्लाइंग 4 times ईच वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ओकलैंड टू वनुआतु. आप विजिट कर सकते हैं flysolomons.com पर. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. सुनते रहो हम.

You're listening to number one humping Bollywood's biggest hits. Main Krish aapke saath de raha hu. Hump podcast aap sunna na bhule. Do podcast aapke liye pesh hote hain. Breakfast Ketchup. BF text kare 5599 par ketchup likh karke aapko breakfast ketchup with Vijay and Pooja. Few bits and conversations जो इनके साथ होता है वो भी सुनने का मौका रहेगा. Unfiltered Drive का जो पॉडकास्ट होता है विथ सिंडी और उज़्बे. इंटरेस्टिंग टॉपिक इस हफ्ते लाया गया है. अगर आप एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, काफ़ी टाइम हम लोग शायद फाइन प्रिंट के बारे में समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, या ऐसे ही साइन कर देते हैं एंड वी एक्चुअली हैप्पी कि हमें काम मिल गया है. लेकिन क्या आपको पता है कि आपका राइट्स क्या है व्हेन यू वर्क इन न्यूजीलैंड? क्या एम्प्लॉयर आपको अनपेड काम करा सकता है? क्या आपको करेक्ट सिक लीव मिल रहा है? एनुअल लीव एंटाइटलमेंट्स मिल रहे हैं? क्या आपको फेयरली ट्रीट किया जा रहा है? या आप अंडरपेड है? या आप प्रेशर्ड होते हैं इनटू एक्सेप्टिंग कंडीशंस जो राइट नहीं है, जो सही नहीं है? तो ये अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रुज़्बे इनफैक्ट इज गोइंग टू अनपैक ऑल दीज क्वेश्चंस, जहां पर अभय खोले से बातें होंगी. प्रिंसिपल एडवाइजर एंड एम्प्लॉयमेंट सिस्टम गाइडेंस एंड एंगेजमेंट एट एम्प्लॉयमेंट न्यूजीलैंड MBIE, जहां पर वो सारे क्वेश्चंस का जवाब होंगे जो वर्कर और एम्प्लॉयर को जानना ज़रूरी है, चाहे आप माइग्रेंट है या जो यहाँ पर ये सालों से काम कर रहे हैं, चेंजिंग करियर्स के बारे में सोच रहे हैं या बिजनेस होना, ये जानना ज़रूरी है आपके लिए. योर जॉब इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट्स ऑफ योर लाइफ, इसलिए आपका राइट्स जानना ये ऑप्शनल नहीं है, इट इज़ एसेंशियल. तो ड्राइव टेक्स्ट करें 5599 पर. फुल ऑडियो आपको मिलेगा. ऑडियो के लिंक मिलेंगे अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रुज़्बे ऑन रोवा या स्पॉटिफाई पर भी आप इनको सुन पाएंगे. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. सुनते रहो हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.

आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स में क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन इनवाइट कर रहे हैं कम्युनिटी को टू द फोर्थ न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट जो 22nd और 23rd अगस्त को होगा बकनहेड स्काउट्स हॉल में। प्लेयर्स ऑफ ऑल स्किल लेवल्स को इन्वाइट किया जा रहा है टू पार्टिसिपेट। रजिस्ट्रेशन के लिए आप कॉल करें ऑन 021-090-85067 पर। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम।

0: Night Cafe on Hum.
1: Ladies and gentlemen,
2: unfiltered with Sandy and Rusbe. Kyunki duniya mein already bahut sare perfect polished Instagram friendly stories hain aur unka humse koi lena dena nahi. Yahan kahaniyan hoti hain raw, emotions hote hain real aur conversations hote hain bina mask ke.
3: Raja, mantri, chor, sipahi sab yahan aate hain.
2: Unfiltered with Sandy and Rusbe on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
4: Professional financials hai saath aapke. लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट.
5: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक.
4: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यहीं. अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए.
5: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी. कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL. T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई.
6: Bathroom moisture from shower steam. It's a problem in most homes, so eliminate steam with a Shower Dome shower top. With Shower Dome, you get a warmer, drier bathroom and a lifetime guarantee. That'll give you the warm fuzzies. Showerdome.co.nz.
7: Adore your floor for less with Flooring Extra's affordable floor makeover sale. Save on their best-selling range, including 15% off all Quick Step. Visit your local Flooring Extra showroom today.
8: Flooring Extra. Adore your floor.
9: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
10: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
11: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279-9439 और विजिट legalassociates.co.nz.
12: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
13: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें.
12: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
13: पर डेवलपमेंट के पैसे
12: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा. NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट. फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI.
14: South Auckland Driving Limited presents Bhajan Gems, live concert by Ravitesh Dev, devotional fusion bhajans or kirtans with live band. Saturday 22nd August, 7 PM, Vedic Center, Papatoy. Tickets sirf $30. Free entry for children under 5. Sare proceeds, Gift of Life, Fiji ko donate honge, providing free heart surgeries. Powered by Events Auckland, Maki and Party Hire. Tickets available from Eventbrite, Jay's Fresh and Valley Fresh, Papatoy, or Shiv Prasad, Kelston.

0: Coffee on Hum.
1: You're humming along with Krish on your number one hum, playing Bollywood's biggest hits. Ek ke baad ek aapke favorite songs bhi lekar aayenge. Waise RRB, Radhe Radhe Boys NZ, proudly present kar rahe hain A Night to Remember. Grand Bhajan Night sunne ka mauka rahega. Hanuman Vistar hone ko hai. To be continued from where it was left last year. Avinesh Balram Australia ke hai aur Juni Ashok America ke hai. 14th August ko ye hone ja raha hai. To Vedic Center Papatoy mein ye hoga. स्पॉन्सरशिप इंक्वायरी के लिए आप जनरल नायडू बंटू को कॉल कर सकते हैं 0211-758-602 पर. ग्रैंड भजन नाइट हनुमान विस्तार ये होने जा रहा है 14 अगस्त को वैदिक सेंटर पापटोए में. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

नाइट कैफे यहीं पर खत्म हो रहा है दोस्तों. आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा लगा आपका साथ. हमारी मुलाकात होती है कल रिदम एंड रोमांस में लेकर आ जाऊंगा, जबकि कल थर्सडे नाइट है. अपना बहुत ही ख्याल रखे, कृष का बहुत सारा प्यार. गुड नाइट एवरीवन.

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजवे, ओनली ऑन हम।
6: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
1: क्यों, क्या हुआ?
6: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
0: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800-564-424।
7: The beat of Bollywood.
2: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
7: Night Fly.

0: FM.
1: Unfiltered with Sandy and Rusby. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. Ya

0: Crispy on Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
1: सुनो, bills बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
2: हाँ, mortgage भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर लेने.
1: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी. अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
2: पर डेवलपमेंट के पैसे
1: आपको नहीं लगाने. NZPMI सब संभाल लेगा.
3: NZPMI, your local development expert. Free site assessment के लिए visit nzpmi.co.nz या call 0800-4-NZPMI.
4: South Auckland Driving Limited presents Bhajan Gems, live concert by Ravitesh Dev. Devotional fusion bhajans or kirtans with live band. Saturday 22nd August, 7 PM, Vedic Center, Papatoy. Tickets serve $30. Free entry for children under 5. Sare proceeds, gift of life, Fiji ko donate honge. Providing free heart surgeries. Powered by Events Auckland, Maki and Party Hire. Tickets available from Eventbrite, Jay's Fresh and Valley Fresh, Papatoy. Or Shu Prasad,

0: ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी, हाँ जी किसने बनाया। वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत हो?
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: Pooja ki thali mein rakhi sajate hain, dhagon ke judne se dil mil jate hain, maathe pe roli ka tilak lagate hain aur meethe ki mithas se apno ko kareeb laate hain. इस रक्षाबंधन दीजिए अपने अपनों को कुछ ऐसा जो उन्हें उनके होने का एहसास दिलाए। सोना संसार के साथ, जहां आप पा सकते हैं बेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन फॉर योर लव्ड वंस। सोना संसार 190 स्टॉडर्ड रोड माउंट रॉस्किल और 138 ग्रेट साउथ रोड पापा तोए तोए। सोना संसार, संसार रिश्तों का।
5: डॉक्टर ने क्या बोला?
6: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए।
5: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए, वरना पता भी नहीं चलता।
7: दैट कन्वर्सेशन इज हैपनिंग इन मोर टीवी होम्स देन यू थिंक। हाय, आई एम नितेश हीरा फ्रॉम शोर वन। माय जॉब इजंट टू जस्ट सेल पॉलिसीज, इट इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड योर ऑप्शंस एंड मेक श्योर योर फैमिली इज प्रोटेक्टेड।
8: बुक योर फ्री इंश्योरेंस रिव्यू टुडे, कॉल अश्योर वन ऑन 0800-77-HEERA, दैट्स HIRA, और विजिट ashurevan.co.nz। नॉर्थ इंडियन एडवाइजरी लिमिटेड, ट्रेडिंग एज अश्योर वन, इज अ लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइडर।
9: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sin-binning. And you need to know about it.
10: Join the Tribe!
9: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
10: join the Tribe!
11: Playing Bollywood's biggest hits.
12: Budget gun day.

0: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hum 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special Hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money. Vacation.
1: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
4: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
5: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेज सब डिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz
6: वेलकम टू कबाब्स किचन आई एम शेफ एलेक्स और ये है मेरी गेस्ट सेरा
7: क्या बनाते हैं कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स
6: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन
7: वाओ दीस कबाब्स आर अमेजिंग स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो जूसी
6: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स
7: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West West side है ना, West side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua West में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स

0: एवरीवन, हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
1: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
0: क्या आप

0: सिबलिंग को ले आइए हम बोर्डरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं।
1: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
0: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
2: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सब डिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Malabar Golden Diamonds, Botany Town Center.
3: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो,
4: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
5: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
6: When life becomes overwhelming, you don't have to face it alone. For over 28 years, Asian Family Services has supported Asian communities across New Zealand, offering mental health, addiction, gambling, and social support by professionals who understand your language and culture. Now launching Reach In, Reach Out, a national campaign to encourage open conversations about mental health, because a simple conversation can make a real difference. Call Asian Helpline 0800-862-342 or visit asianfamilieservices.nz for free and confidential mental health support.
7: Night flight on hum.
8: Hum dil ke bure nahi, bas ek kharabi hai.

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money. Vacation.
1: Hum boarding call, thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
4: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें.
3: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
4: पर डेवलपमेंट के पैसे
3: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा. NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट. फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट NZPMI.co.nz या कॉल 0800 4NZPMI. Smile.

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक, स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम।
6: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
7: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
8: And award goes to Indelible Homes.
7: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
9: Kahani of Indelible Homes.

0: with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के.
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिज़्वी ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट.
2: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना.
3: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
4: And award goes to Indelible Homes.
3: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
5: Kahani of Indelible Homes.
6: डॉक्टर ने क्या बोला?
7: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए.
6: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए, वरना पता भी नहीं चलता.
8: दैट कन्वर्सेशन इज हैपनिंग इन मोर टीवी होम्स देन यू थिंक. हाय, आई एम नितेश हीरा फ्रॉम अश्योर वन. माय जॉब इजंट टू जस्ट सेल पॉलिसीज, इट इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड योर ऑप्शंस एंड मेक श्योर योर फैमिली इज प्रोटेक्टेड.
9: बुक योर फ्री इंश्योरेंस रिव्यू टुडे. कॉल अश्योर वन ऑन 0800-77-HEERA. दैट्स HIRA. और विजिट ashurevan.co.nz. Northernville Advisory Limited, trading as Ashore One, is a licensed financial advice provider. For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel their best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumati oil facials, and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
10: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Gold and Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Gold and Diamonds at Botany Town Center, Auckland.

फिरूं, अपने वस्त्र नहीं अपना मन ही फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरूं। यदि आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने हृदय को कर...

आपकी महान करुणा के लिए धन्यवाद। इन श्रोता मित्र के लिए हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा इनके हृदय में एक नई उमंग भर दो, आपके आनंद को अपने में ये भरपूरी से पाए, आपके आश्चर्य कर्म करने वाले हाथों में हम इन्हें सौंपते हैं। इनके दिल में जो बोझ है, जिस समस्या का ये सामना कर रहे हैं, उस पर इन्हें विजय बनाओ। इनके आत्मिक जीवन में, परिवार में, व्यवसाय में और जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु हम आपकी शांति को घोषित करते हैं। अविश्वास या निराशा लाने वाली, आशीषों को रोकने वाली तमाम दुष्ट शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम बांधते हैं। प्रतिदिन ये आपकी अनंत आशा में बढ़ते जाए, यीशु के नाम में।

0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. We have lots of fun basically with the cold weather.
2: क्या? कौन है? अरे
3: Hunua और Waitakere.
2: अच्छा Hunua west में.
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.

0: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
1: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
0: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
1: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
0: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
2: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 इयर्स।
3: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। ईट बेटर, लिव बेटर। फ्रॉम मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz। अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
4: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
5: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक,
4: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
5: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 9846-9934 और सर्च PFSL, T's and C's, lending and credit criteria apply.
6: चाहे आप स्लो रोस्ट कर रहे हो, बेकिंग कर रहे हो या फैमिली के लिए डिलीशियस पीस बना रहे हो, द डी एंटोनियो विंटर सेल हैज यू कवर्ड। शॉप कीजिए माइकटन मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन में और पाइए कुकवेयर और किचन एसेंशियल्स पर जबरदस्त डील्स। द डी एंटोनियो विंटर सेल ऑन नाउ, एंड्स अगस्त 16th।
7: It's dream season at Beds R Us. Save up to 50% on selected sleepyhead beds like the Swiss Tech Precision. Half price, queen size, now $4,299. Check out these dream deals and more at Beds R Us Manukau and Kukekwe, where dreams begin.
8: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट, squirrel.co.nz।
1: गुड मॉर्निंग, इस समय ठीक 6 बज रहे हैं।
9: हम न्यूज ब्रॉट टू यू बाय लॉजिक फाइनेंस लिमिटेड, चेंजिंग लाइव्स विद लॉजिक।
10: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 6. It's believed National will be scrambling to put on a good face after a week of chaos. Chris Pink has been stripped of his portfolios and won't seek re-election after being accused of sparking the party's leadership challenge. Political commentator Lara Greaves says it has left a sour taste.
11: It's a bit of drama, it's a bit of disunity, it's a bit of just distraction, and maybe, it doesn't necessarily show the best management of people by Luxon.
10: The Commerce Commission is stepping in to help Wellington with its water woes by providing tougher oversight of Te Aki Wai. Spokesperson John Small says they need to resolve ongoing issues with the network.
12: We'll get better information about things that are important to customers, such as rectifying faults, maintaining the network, minimising leaks, more detailed information about major investment programs.
10: The spotlight's being shone on understaffing at Auckland's Waitakere Hospital. Nurses and Te Aritu MP Phil Twyford will host a meeting today on how to tackle the issue. The union says it's among the worst staffed and resourced hospitals in the country. A rare total solar eclipse is racing across the North Atlantic and Europe. The moon moves between the sun and Earth, blocking the face of it. NASA's tracking it live.
13: It runs into Spain, where we expect more than 15 million people will be watching this eclipse.
10: In sport, England Test cricket captain Joe Root has abolished the team's midnight curfew. The rule was introduced 7 months ago after a number of late-night incidents on the tours of New Zealand and Australia. But Root told Sky Sports UK he doesn't think curfews work.
14: If you want guys to take responsibility on the field, they've got to feel like they can be grown adults off it.
10: Into rugby with Shafour, Duplessis Karifi starts again at second five for Wellington, who host North Harbour in the MPC from 7:10 tonight.
9: Sports News brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
15: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं, Ann's Funeral Home and On-site Cremations.
16: सूचित किया जाता है कि अलका, कल्पा, नीता, ममता, मुक्ता और डॉक्टर हर्षद पटेल की माँ सुबह के भूतपूर्व निवासी मैंगरी के ठाकुर भाई गोपाल भाई पटेल की पत्नी ताराबेन पटेल की मृत्यु सूरत, भारत में हो गई। प्रार्थना सभा शनिवार की सुबह 9 बजे एन्स फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस 11 बोल्ड आउट प्लेस वीरी में होगी, जिसके बाद अंतिम संस्कार दिन में 11 बजे मैनुकाउ मेमोरियल गार्डन्स में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0272-810-968 पर संपर्क कर सकते हैं। अलका, कल्पा, नीता, ममता, मुक्ता और डॉक्टर हर्षद पटेल की माँ यानी सुवा के भूतपूर्व निवासी मैंगरी के ठाकुर भाई गोपाल भाई पटेल की पत्नी ताराबेन पटेल की मृत्यु सूरत, भारत में हो गई। प्रार्थना सभा शनिवार की सुबह 9 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बोल्ड आउट प्लेस वीरी में होगी, जिसके बाद अंतिम संस्कार 11 बजे मेनुकाउ मेमोरियल गार्डन्स में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0272-810-968 पर संपर्क कर सकते हैं।
15: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
9: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
17: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
9: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800-462626.
1: तो आज के मौसम के लिए कहा गया है क्लाउडी वेदर रहेगा विद ओट शावर्स और कुछ कुछ इलाकों में आज मॉर्निंग एंड लाइट फोग जो है ये भी हम एक्सपीरियंस करेंगे। शाम के समय बारिश थमती हुई नजर आएगी। सनराइज होगा अगले घंटे 7:06 AM पर एंड सनसेट 5:46 PM पर। टेम्परेचर राइट नाउ 14 degrees है, हाई ऑफ 18 एक्सपेक्टेड है बाद में चलकर, जबकि आज का ओवरनाइट टेम्परेचर 10 degrees तक रहेगा।
9: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
6: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
9: Breakfast catch up.
1: हेलो कियोरा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। आगे हैं आपका साथ देने के लिए आज के हमारे द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा के सफर में और 104.2 FM साथ में रोवर ऐप पर अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं, थैंक यू सो मच आप सभी के साथ के लिए। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू, कैसे हैं आप?
16: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
1: मैं भी एकदम बढ़िया ही हूँ और आज के सुबह के लिए एकदम एक्साइटेड। और वेदर थोड़ा अनफेवरेबल है When it comes to traveling and all, ना क्योंकि बारिश होती है तो यार बहुत तकलीफ होती है। हाँ, लाइक यू नीड टू कैरी योर अम्ब्रेलास इधर से उधर कम्यूट करने के लिए। रास्ते पर भी जो नॉर्मल स्पीड लिमिट होता है, इट्स नॉट दैट यू हैव टू फॉलो दैट एग्जैक्ट स्पीड लिमिट, उससे थोड़ा कम में भी शायद आपको ड्राइव करना पड़े ना। स्लिपरी कंडीशन होते हैं, विजिबिलिटी कम होती है, सो देर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू कंसिडर।
16: लेकिन होपफुली आज बाद में चलकर मौसम में कुछ इम्प्रूवमेंट्स जो है ये हमें देखने को मिले। व्हाटएवर इट मे बी, आपका साथ देने के लिए हम आएंगे, ऐसा कल हमने कहा था, तो आ गए हैं और अभी से ठीक 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे।
1: और जैसे कि आपको पता है, शुरुआत तो हम करेंगे ही ब्रेकफास्ट कैचअप के साथ, जहां पर आपके साथ होगा हमारा एक क्विक कैचअप खबरों के मामले में, बॉलीवुड के मामले में, एंटरटेनमेंट के मामले में, आपके फेवरेट गानों के मामले में एंड आपके हालचाल के मामले में। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी हैव टू एक्चुअली डू, बट ऑन टॉप ऑफ इट बहुत सी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ भी है। रक्षाबंधन का हमारा प्रमोशन जारी है, जहाँ पर ऑन एयर सिबलिंग्स परफॉर्मेंस रिव्यू में पार्ट लेकर आप जीत सकते हैं योर शेयर ऑफ $500 और हमारा सोशल मीडिया प्रमोशन जिसमें आप भाग ले सकते हैं, जिसके तहत आपको मिल रहा है मौका

0: Sunnyside Up.
1: सनीसाइड अप का वक्त अब हो चुका है. आज की कहानी, जब क्रिसमस का टाइम आता है तो अलग अलग यू नो ऑर्गेनाइजेशंस में, स्कूल्स में या फिर फैमिलीज में भी जब फैमिली गैदरिंग होती है क्रिसमस की, तो कभी कभार ऐसा होता है कि कोई ना कोई सेंटा क्लॉज बन के आता है ना.
2: हाँ.
1: ड्रेसअप होता है और जो बच्चे होते हैं उनको टॉयज वगैरह देता है.
2: या एंटरटेनमेंट भी हो जाता है और साथ में बच्चों का वो जो बिलीफ है ऑन सेंटा क्लॉज वो भी बरकरार रहता है.
1: बट एक शख्स जो है वो अपने शहर के अब ऑफिशियल सेंटा क्लॉज जो है ये रहे हैं और हर साल वो वॉलंटियर करते हैं कि एवरी डिसम्बर वो अपने शहर में सेंटा क्लॉज बनेंगे.
2: ओह अच्छा.
1: और उन्होंने अभी तक का अपना सबसे बड़ा गिफ्ट जो है ये दिया है. उन्होंने उन्हें ये पता चला कि उनके इलाके में रहने वाले एक शख्स जो है वो सीवियर रीनल फेलियर सफा कर रहे हैं.
2: okay.
1: और उसके बाद उन्होंने क्वाइटली टेस्ट किया अपने आप को एज अ डोनर, लिविंग डोनर. द मैच केम थ्रू और उन्होंने अपना किडनी जो है ये उनको डोनेट कर दिया.
2: रियली?
1: यस. अपना किडनी डोनेट कर दिया. द ट्रांसप्लांट सर्जरी वॉज सक्सेसफुल और दोनों जो डोनर हैं और रिसिपियंट हैं आर रिकवरिंग स्मूथली.
2: आई डोंट रियली नो कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ इस स्टोरी को लेकर, बट आई मस्ट से यार दैट्स लाइक अ बिग डील, क्योंकि गिविंग अ पर्टिकुलर ऑर्गन ऑफ योर बॉडी ताकि किसी की जान बच सके या किसी को आप हेल्प कर सको for you know to lead a healthy life, it's like a big deal. और ऐसा हर कोई नहीं कर पाता, हर किसी में वो हिम्मत नहीं होती ना. But here this stranger has done something so beautiful and so big for someone he doesn't even know.
1: Basically he's given the gift of life to someone.
2: Exactly. Yeah.
1: और अब ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि आप ऐसे सिर्फ सेंटा क्लॉज हो.
2: हाँ, इन्होंने तो सच में लाइक इनको जिनको इन्होंने डोनेशन दिया है, ऑर्गन डोनेशन जिनके लिए भी किया है, इनको इनकी लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट जो ये दिया बेसिकली. तो देयर वी गो, ऐसी बहुत सी स्टोरीज होती हैं और ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो ऐसी चीज़ें कर जाते हैं विच एक्चुअली मेक्स यू फील कि वाओ, मतलब ये शख्स जो है इन्होंने तो एक ऐसा काम कर दिखाया है जो हर किसी के बस की बात नहीं है. तो ऐसी कुछ स्टोरीज आपके लिए सनी साइड अप में हम लेकर आते हैं, जहाँ पर वी शेयर स्टोरीज दैट आर इंस्पायरिंग, दैट आर ब्यूटीफुल, दैट आर बेसिकली पॉजिटिव, हैप्पी हो, जो आपकी भी सुबह एकदम बना दे. फिलहाल 18 मिनट हो रहे हैं 6 बजकर और कमिंग अप नेक्स्ट आपके लिए आज का हमारा ग्लोबल हेडलाइंस.
3: Gentlemen,
0: unfiltered with Sandy and Rusby. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हम

0: anywhere you get your podcast.
1: Does someone in your house sound like this? Or like this? Does the wheezing and coughing stop them getting out and living a normal life? They need to take the cough test. Go to coughtest.co.nz. Take the cough test and show it to the doctor. Coughtest.co.nz. It's free. Prescription medicine. Medicines have risks and benefits. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
2: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewellery making charges. Saath hi, $2,000 ki har diamond aur precious gem jewellery purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Gold and Diamonds at Botany Town Centre, Auckland.
3: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes Bombay biryani हो या butter chicken korma या chana masala recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian Shan recipe mixes हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से Shan recipe mixes खरीदिए Shan Foods असली स्वाद हर घर के लिए
4: डॉक्टर ने क्या बोला
5: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए
4: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए वरना पता भी नहीं चलता
6: दैट कन्वर्सेशन इज हैपनिंग इन मोर टीवी होम्स देन यू थिंक हाय आई एम नितेश हीरा फ्रॉम अश्योर वन माय जॉब इजंट टू जस्ट सेल पॉलिसीज इट इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड योर ऑप्शंस एंड मेक श्योर योर फैमिली इज प्रोटेक्टेड
7: बुक योर फ्री इंश्योरेंस रिव्यू टुडे कॉल अश्योर वन ऑन 0800-77-HEERA दैट्स HIRA और विजिट ashyourone.co.nz नॉर्थ इंडियन एडवाइजरी लिमिटेड ट्रेडिंग एज अश्योर वन इज अ लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइडर
0: The beat of Bollywood.
8: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: The breakfast show with Vijay and Pooja.
9: Brought to you by Fortune with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
10: Global headlines.
11: सुबह के ग्लोबल हेडलाइंस में यूएस ऑफिशियल्स ने वाइटल वाटरवे में कम ट्रैफिक के चलते ऑयल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है हालांकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि यूएस का स्ट्रेट पर अब भी कंट्रोल है दूसरी तरफ ईरान के एक एडवाइजर ने वो को ट्रंप के ऑफिस छोड़ने तक लंबा खींचने की बात कही है जबकि पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री के मुताबिक दोनों देशों के बीच अग्रीमेंट अभी भी रेलेवेंट है इसी बीच एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से शोल्डर फायर्ड मिसाइल को के सीरियस थ्रेट और उनकी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के बाद पिछले महीने नेटो समिट के बाद ट्रंप को एक अल्टरनेट जेट से टेकी से सीक्रेटली निकाला गया था भारत में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित 454 फार्मेसी ऑफिसर पोस्ट की रिक्रूटमेंट एग्जाम में पेपर लीक के आरोपों के बाद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अपॉइंटमेंट्स पर 17 सितंबर तक स्टे लगा दिया है 19 जुलाई को हुए इस एग्जाम में पंजाब पुलिस ने पेन कैमरा के जरिए चीटिंग करवाने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है फिजी में 38 साल के विमल विकास नंद की मर्डर के आरोप में 51 और 19 साल के बाप बेटे को आज सिंगटोका मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में पेश किया जाएगा जबकि विक्टिम को कल उनके चाहने वालों ने अपनी अंतिम विदाई दी दोनों आरोपियों पर मर्डर एक्ट विद इंटेंट टू कॉज ग्रेवियस हार्म और असोल्ट के चार्जेस लगाए गए हैं उन्होंने फार्म एनिमल के विवाद को लेकर नंद और दो 16 साल के छात्रों पर जानलेवा हमला किया था ओएफसी चैंपियंस लीग के दो मैचेस कल खेले गए फिजी के रेवा की जीत टूपापा के खिलाफ 4-2 से हुई जबकि गैलेक्सी एफसी ने लय सिटी ड्वेलर्स को 3-1 से हराया आज दिन में 12 बजे टीगर स्पोर्ट ऑकलैंड सिटी का सामना करेगा जिसके बाद 3 बजे आईएस विनस और सेंट्रल कोस्ट के बीच मैच खेला जाएगा इन मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम पर हम लेकर आएंगे उधर एनआरएल के एक मैच में आज 9:50 PM पर पैंथर्स रूस्टर्स का सामना करेगा इन मैचेस पर भी अपडेट्स आपके लिए हम पर हम लेकर आएंगे ये रहे सुबह के ग्लोबल हेडलाइंस
0: Bollywood's most wanted.
12: Kundi khad gao. Ya seedha andar aao.
13: Main laau apna A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: तो आपके लिए अमित कुमार और साथ में श्रेया घोषाल को हम पेश कर रहे थे आज सुबह सुबह चार्ट बस्टर का ये ट्रैक आपके लिए हमने हिम्मत वाला 2 से जो है ये शामिल किया। हिम्मत वाला जब आई इन द 80s मेरे ख्याल से ना,
1: जितेंद्र या
0: जितेंद्र और साथ में
1: श्रीदेवी
0: श्रीदेवी यस बहुत चली थी और सारे कैरेक्टर्स बहुत पॉपुलर हुए, बी इट कादर खान साहब का जो कैरेक्टर था वो या फिर जो लीड्स थे वो। और फिर पता नहीं क्यों ये गलती जो है ये की गई कि इस फिल्म को वापस से बनाने का फैसला किया गया। एंड कमाल की बात ये थी कि द मूवी वॉज एक्चुअली रीमेड इन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट व्हिच ईयर, आई थिंक इट वॉज 2013 जब ये फिल्म जो है दोबारा से बनी। कॉन्सेप्ट वही था, कहानी वही थी और सेटिंग भी वही था। एंड यू कांट एक्सपेक्ट कि कोई एक फिल्म जो 80s के ज़माने में चली हो वो 2013 में उसी हिसाब से चलेगी। एंड दैट्स वाई हिम्मत वाला जो ये पिट गई। अजय देवगन, तमन्ना भाटिया, परेश रावल ये सारे थे इस फिल्म में। परेश रावल ने आई थिंक कादर खान साहब का जो किरदार है ये निभाया था। बट ऑन द अदर हैंड तमन्ना भाटिया ने इसी फिल्म से बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा था, बिकॉज शी डिड अ लॉट ऑफ मूवीज इन द साउथ फिल्म इंडस्ट्री और काफी बड़ी हस्ती जो है ऑलरेडी वहां बन चुकी थी। एंड दिस इज द मूवी हिम्मत वाला जिससे इन्होंने पहली बार बॉलीवुड में अपना लक ट्राई किया था।
1: Amazing, very nice.
0: Yep, but it didn't do well. That was the
1: but
0: thing.
1: But I love the Jitendra one.
0: हाँ वही मैं बोल रही
1: हूँ। उस time पर you know IT's का जब वो दौर था एक और जोड़ी बहुत popular हुई थी ना, जितेंद्र श्रीदेवी, जितेंद्र जया प्रदा, jumping jack जितेंद्र, उस time पर उनको नाम जो है ये भी दिया गया था ना, जिस तरह से उनका डांस जो होता था वो
0: बहुत कर करके
1: हाँ बहुत यूनिक था। एंड एक एक एक जोड़ी और बहुत पॉपुलर हुई थी, दैट वॉज कादर खान एंड शक्ति कपूर।
0: हाँ एग्जैक्टली, बट वो जोड़ी सिर्फ 80s में नहीं, वो अर्ली 2000 तक भी आई, आई मीन हाँ अर्ली 2000 तक भी चली थी, बिकॉज अ लॉट ऑफ मूवीज जिसमें गोविंदा ने काम किया हो उस फिल्म में कादर खान एंड शक्ति कपूर कहीं ना कहीं होते थे।
1: हाँ, और आईटीज में क्या होता था कि एक थोड़ा ठाकुर टाइप होता था, एक थोड़ा क्या बोलते मुनीम टाइप होता था और समथिंग, या फिर दोनों एकदम सीरियस
0: विलन वाले रोल्स। या
1: That was amazing to watch उस दौर में।
0: But anyways ऐसी और भी you know फिल्में होती हैं जो आपके लिए बहुत सारे beautiful memories recreate करती है, और कुछ ऐसी भी फिल्में होती हैं जो आपके लिए expectations बढ़ा देती हैं। I think आवारापन जब आई थी तो इमरान हाशमी उस time पर you know he was doing well for himself और फिल्म जो है ये काफ़ी अच्छी चली। In fact इमरान हाशमी ने 2007 में इस फिल्म के साथ बहुत से beautiful गाने जो है ये भी दिए थे इंडस्ट्री को, और I mean not that he sung songs but of course इनकी फिल्म के गाने जो ये हमेशा पॉपुलर होते हैं। सो 2007 में आवारापन आई जिसमें इमरान हाशमी ने काम किया, मोहित सूरी ने इसे डायरेक्ट किया था। एंड कमाल की बात इनके ऑपोजिट श्रिया सरन जो है ये भी थी, और इफ आई एम नॉट मिस्टेकन मृणालिनी शर्मा जो है इन्होंने भी इस फिल्म में काम किया था। और अब तैयारियां हो रही है आवारापन 2 की। इमरान हाशमी एक बार फिर आने वाले हैं इस फिल्म में, आई मीन नजर आने वाले हैं और दिस टाइम अराउंड आवारापन 2 जिसमें ये दरअसल दिखने वाले हैं दिशा पाटनी के साथ।
1: सो लेट्स सी, अपडेट्स हम आपको और भी देंगे। बाय द वे एक वन ऑफ माय फेवरेट्स एवर इन बॉलीवुड जो है, उनके लाइफ पर एक फिल्म बनने की बात जो है ये अभी चल रही है।
0: हु इज दिस वन ऑफ योर फेवरेट्स?
1: राहुल देव बर्मन।
0: R.D. Barman.
1: Haan.
0: Oh, nice.
1: I just love his music.
0: Yeah.
1: And उन्होंने जो
0: Who doesn't?
1: जो music create किया, it's just iconic. और नीरज पांडे जो है इन्होंने तो you know बहुत different तरह की फिल्में बनाई है।
0: Yeah.
1: Apparently खबर आ रही है कि नीरज पांडे जो है ये पंचमदा की बायोपिक जो है
0: ये बनाने में interested है।
1: Script पर काम कर रहे हैं and काफी तेजी से script पर काम हो रहा है। और वहीं पर ये भी रिपोर्टें आ रही हैं कि जो लीड रोल है पंचमदा का रोल निभाने के लिए स्क्रीन पर बातें हो रही हैं फरहान अख्तर से।
0: ओह दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग।
1: या आई एम नॉट रियली श्योर, अभी तक कंफर्म्ड रिपोर्ट्स जो है ये तो नहीं आई है कि डिस्कशन हो रहा है, लेट्स सी क्या होता। वहीं पर ये भी कहा गया है कि इस फिल्म में शायद राजेश खन्ना का रोल जो है मालूम है कौन निभाए?
0: राजेश खन्ना क्यों? क्योंकि उनके गाने ज्यादातर इन्होंने बनाए हैं।
1: उनके गाने बहुत पॉपुलर हुए थे। आई डोंट नो स्टोरी क्या है ना, किस हाँ। किस तरह से वो डेवलप कर रहे हैं स्क्रिप्ट, तो शायद कोई किरदार हो जहाँ पर राजेश खन्ना साहब का जो
0: कोई कैरेक्टर दिखे। हु इज डूइंग इट? अक्षय कुमार।
1: यस,
0: गुड चॉइस।
1: एक और कैरेक्टर जो है अभी मालूम नहीं, उनका नाम आया था लेकिन रिपोर्ट आ रही है कि उन्होंने मना कर दिया है कि वो इस फिल्म में किसी तरह से जुड़े हुए हैं। एंड दैट्स इमरान हाशमी।
0: ओके, तो किस कैरेक्टर के लिए इनको
1: पता नहीं अभी नहीं, उन्होंने बस इतना ही कहा है कि
0: ऐसा कुछ नहीं है,
1: ही इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। बट ये सब उड़ती बातें आ रही हैं। द गुड थिंग इज कि यू नो आई एम हैप्पी टू सी कि उनकी लाइफ पर कोई फिल्म बन रही है। आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ बायोपिक्स पर्सनली, बट आई जस्ट होप
0: It does well. Because see, अगर आप किसी भी सेलिब्रिटी को पसंद करते हो, किसी भी आर्टिस्ट को पसंद करते हो, और जब उनकी लाइफ की कहानी दिखाई जाए, एंड यू एक्सपेक्ट इट टू बी द गुड स्टोरी, यू नो द गुड स्टोरी बेसिकली जो वो रीज़न से आपको पसंद है या जिस रीज़न से वो इतने मेहनत करके इतने आगे बढ़े हैं, उन्होंने एक नाम कमाया है, अगर उनको वो क्रेडिट ना मिले उनकी बायोपिक में, तो इट डजंट वर्क।
1: More about his music, basically.
0: Yeah.
1: कि उनकी music जो है, उनका music जो है,
0: उसका representation अच्छा होना चाहिए. Yeah. So let's see how it works out. और biopics are always very risky. But क्या ये काम करता है या नहीं? And नीरज पांडे doing a biopic, जबकि उनकी फिल्में काफी अलग होती है, baby, special 26, ऐसी फिल्मों को उन्होंने direct किया हुआ है. तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि वो क्या कर पाते हैं इसमें। फिलहाल 22 मिनट बाकी हैं हमारे स्टूडियोज में सुबह 7 बजने में, और आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं थोड़ी देर बाद आज का बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे। लेट्स सी इफ यू कैन गेस दैट। बट ऑन द अदर हैंड, गुड मॉर्निंग मैसेजेस भी आपने भेजे हैं, ये भी बस थोड़ी देर में हम देखेंगे।
2: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।
3: डोंट माइंड, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है।
2: Passengers, stand by. The next hump boarding call could be your ticket to paradise. Listen out and get ready for your chance to win 2 return air tickets to Vanuatu and $1,000 spending money.
4: Thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com. Hum, accurate traffic.
5: Rebel Sport, celebrating 30 years.
6: Cloudy today, showers on and off, a warmer day, a high of 18 degrees. Northern Motorway, we're slowing down a little bit overall, and a slow patch from Constellation to Sunny Nook, which is fairly standard. 16 minutes Constellation to the city, 32 from Silverdale. Northwestern, 20 minutes in from Massey, mostly okay, but could be an incident at Western Springs. Southern, 25 minutes in from Manukau, slow Manurewa to Papatoetoe.
5: Rebel celebrates 30 years with $30,000 up for grabs. T's and C's apply.
7: Discover the magic at Go Bananas Chaike, jahan aapke bachche seekhenge in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, hum hamesha aapke paas hai.
8: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
7: So, jaldi join kare to enjoy these special offers. Aur sabse khas baat, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. So, deer mat kijiye. Call 0800 46 26 26 today.
8: Available at selected branches. T's and C's apply.
9: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है, क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
10: And now the latest in sport. Teams are gearing up this week for $10 deals on Uber Eats. Holy... And now time for a break, I think. Find Ding Dong Deals on Uber Eats.
11: Contact support if promo not applied. T's and C's and fees apply.
12: Take your furry friends back to their roots. Add a little Jimbo's. Raw meat mixed into mealtime. Feed as a main meal, topper or treat. Get yours now in your supermarket pet fridge and give your pets the Jimbo's they deserve.
13: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Gold and Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Gold and Diamonds at Botany Town Center, Oxford.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzara Smunko. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
2: 18 मिनट रह गए हैं अभी इस सात बजने में ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 एफएम और रोवर पर. और सबसे पहले आज गुड मॉर्निंग मैसेजेस के लिए थैंक यू सो मच बॉबी मान जी, आपको बृहस्पतिवार का ये दिन बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो. राम राम, जय श्री कृष्ण, हैप्पी थर्सडे एवरी वन, हैव अ गुड डे. मिस्टर मटा मटा, आपको भी ये दिन ये सुबह अनेकों बार शुभ और मुबारक हो. गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा, हैव अ ग्रेट डे. मैंडी, आपको भी ये दिन ये सुबह अनेको बार शुभ और मुबारक हो. जय सिया राम, विजय और पूजा जी, हैव अ ग्रेट डे. जय हो परम महाराज जी, आपको भी इस दिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं. साई राम भाई, विजय एंड पूजा, कीप हमिंग, हैव अ ग्रेट डे. संजेश, आपको भी इस दिन इस सुबह की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच. सुबह दिन की शुरुआत करते समय आप सभी ने हमें याद किया और इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं.
3: एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच आपके साथ के लिए, आपके समय के लिए. नाउ एज यू गाइस नो कि हम आपके लिए लेकर आते हैं बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे दिस टाइम अराउंड, जहां पर आपको बताते हैं कुछ एक्टर्स के नाम एंड देन यू हैव टू गेस कि कौन सी फिल्म हो सकती है जो आज की हमारी बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे हो. और फिर अगर कुछ डिफिकल्टी हो तो बाकी नाम रिवील करते हैं. दैट्स व्हाट वी गोना डू दिस मॉर्निंग. मैं आपको बताने वाली हूं दो नाम राइट नाउ, और अगर इन दो नामों को सुनने के बाद आप अनुमान लगा सके कि आज की हमारी बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे कौन सी मूवी है, तो BF लिखना है आपको सबसे पहले, फिर आपको लिखना है उस मूवी का नाम और अपना नाम लिखकर 5599 पर भेज देना है. और उसके बाद जो गाना जो हम अभी प्ले करेंगे इसके बाद विल सी इफ एनीवन कैन गेट इट राइट और नॉट, एंड इफ नो वन गेट्स इट राइट तो हम क्या करेंगे, आपके लिए हम लेकर आएंगे दो और नाम. ये फाइनल दो नाम होंगे जिससे डेफिनेटली आपकी हेल्प होगी टू आइडेंटिफाई द मूवी. सो आज की मूवी ऑफ द डे में हमारे जो दो नाम आपके लिए आर अक्षय कुमार एंड महिमा चौधरी. अक्षय कुमार एंड महिमा चौधरी.
2: आई नो महिमा चौधरी एंड शाहरुख खान. अक्षय कुमार एंड महिमा चौधरी मुझे नहीं याद आ रहा.
3: हाँ, तो इसीलिए तो ना.
2: I cannot remember.
3: Okay. So let's see. क्या आप फिगर आउट कर पाते हैं कि आज की हमारी मूवी ऑफ द डे कौन सी मूवी है? अक्षय कुमार एंड महिमा चौधरी. दीज आर द फर्स्ट टू नेम्स जो आज हमने रिवील किया है. BF स्पेशल आंसर ये नेम 5599 पर भेजे. देखेंगे क्या कोई भी पहचान पाता है या नहीं. एंड उसके बाद विल सी व्हाट वी कैन डू अबाउट इट.
4: लेट्स गो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZ PMI.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chubo jao, papi ho. Chubo jao.
2: Accurate traffic.
3: Save on Sky Tower visits.
4: A high of 18, cloudy with showers on and off. Coming in on the northwestern motorway, 27 minutes, messy to town. A crash just past St. Luke's. It's quite heavy point shift to Grey Lynn at the moment. Southern, 30 minutes, Manukau to the city. Slow Papakura to Papatoetoe and at Mount Wellington. Northern, 20 in from Constellation. Slow there to Waino Valley and close to the bridge. Southwestern, just slowing a little bit.
3: Enjoy discounted $30 adult Sky Tower passes. Terms apply. Search skytower.co.nz.
5: Arey Babita, thank you so much for giving me गुरुज नंबर यार
6: क्यों क्या हुआ
5: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था $20,000 चाहिए थे बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत एक हफ्ता हो गया नो रेस्पॉन्स फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है
7: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री कॉल 0800 लॉजिक जी दैट्स 0800 564 424

0: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
1: Busy subah ho ya shaam ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manuko. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
2: Breakfast catch up. Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
4: बस 8 मिनट बाकी है समय हमारे स्टूडियोज में 7 बजने में और बिफोर हम आपके लिए आज का थ्रोबैक जो है ये पेश करें, हमने आज का मूवी ऑफ द डे आपको गेस करने को कहा. मैसेजेस देख लिए आपने, अभी क्या लगता है आपको, कोई आइडिया है?
5: बढ़िया लगता है, आज मौसम थोड़ा ठीक हो जाएगा.
4: नहीं, मैं बात कर रही हूँ कि कोई आइडिया कि कौन सी फिल्म है आज.
5: आई स्टिल हैव नो आइडिया.
4: नो आइडिया, ओके.
5: मैंने किसी का जवाब पढ़ा नहीं.
4: ओह अच्छा, वेरी ऑनेस्ट यू आर. तो हमने जब आपको दो नाम बताए, विच वॉज अक्षय कुमार एंड महिमा चौधरी,
5: मैंने तो बिल्कुल नहीं देखा कि कुछ लोगों ने क्या ना कौन एक मूवी का नाम लिखा है.
4: एक मूवी का तन्हा ने हमारे पास लिखा है खिलाड़ी. अश्मिता ने कहा खिलाड़ी 420. फिर उसके बाद प्रशांत का मैसेज आया खिलाड़ी 420. निलेश हैज रिटन द सेम आंसर. हरमिला आपने खिलाड़ी 420 लिखा. एशलिन ने सेम आंसर. और गुड मॉर्निंग BFF खिलाड़ी 420. नील, हैव एन ऑसम डे गाइस, इन्होंने कहा थैंक यू सो मच नील आपके मैसेज के लिए भी. जेरी ने कहा है खिलाड़ी 420. और अजय ने कहा है मेरी बीवी का जवाब नहीं, वो तो है ही नहीं सच में. और उसके साथ साथ अनुरीत, इन्होंने भी कहा है गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा, खिलाड़ी 420 इज द आंसर. अभी खिलाड़ी 420 तो आई थी 2000 में.
5: हाँ.
4: 2000 में, जिसमें महिमा चौधरी और साथ में अक्षय कुमार ने एक साथ काम किया था.
5: ओके.
4: पर अब बारी है कि बाकी के दो नाम हम रिवील करें.
5: अच्छा, करो करो करो करो जल्दी.
4: हाँ, मैं बता रही हूँ ना, एक मिनट.
5: हाँ.
4: कुछ लोगों ने हमारे पास अपने मैसेजेस भेजे हैं जिनका नाम थोड़ी देर बाद हम बताएंगे. बट द अदर टू नेम्स दैट वी आर रिवीलिंग नाउ फॉर आवर बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे इज सुनील शेट्टी एंड शिल्पा शेट्टी. सो अक्षय कुमार, महिमा चौधरी, सुनील शेट्टी एंड शिल्पा शेट्टी. हाँ, अभी आई नो, अभी आई नो,
5: इट्स सो इजी,
4: इट इज वेरी इजी. इट्स वन ऑफ द,
5: आई एम राइट कि माचिस की तरह तो नहीं है
4: वो, देखेंगे हम. इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मूवीज दैट वाज रिलीज्ड इन द ईयर 2000. बीएफ स्पेस यान से नेम 5599 पर भेजें.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: Finally, temperatures are rising और 14 degrees तक अभी हम फिलहाल सुपर सिटी ऑकलैंड में फील कर रहे हैं. आज का हाईएस्ट अराउंड 18 degrees रहेगा. ओवरनाइट 10 degrees टेम्परेचर आज रहने वाला है. मौसम के बारे में कहा गया है, बादल छाए रहेंगे, बारिश होगी, कुछ कुछ इलाकों में मॉर्निंग फॉग भी रहेगा, लेकिन बाद में चलकर स्पेशली इन द आफ्टरनून आज मौसम साफ होता हुआ नजर आएगा. सनराइज इसी घंटे अभी से करीबन 3 मिनटों में 7:06 AM पर होगा और सनसेट 5:46 PM पर.
2: Pooja. Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Mungo. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Good morning. Morning Madness.
1: हेलो क्यूरा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. फिलहाल हमारे स्टूडियोज में 4 मिनट हो रहे हैं 7:07 और ये है मॉर्निंग मैडनेस ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. अभी मॉर्निंग मैडनेस हम शुरू कर ही रहे हैं. वी अंडरस्टैंड देयर इज अ लॉट दैट्स हैपनिंग राइट नाउ, जो आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, बट देयर इज अ लॉट दैट्स हैपनिंग ऑन हम एज वेल. एंड हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको इन सारी चीज़ों के साथ अपडेटेड जरूर रखें. सबसे पहले हमारा हम बोरिंग कॉल, ये आपके लिए अब ओपन है, जहां पर व्हाट यू need to do is, अगर आपको जीतना है to return air tickets to Vanuatu with Solomon Airlines plus $1,000 spending money, तो इसके लिए अपने कान आपको खुले रखने हैं और एकदम अलर्ट होकर सुनना है.
3: अभी ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो ये पूछ लेते हैं कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं
1: जिन्होंने बोर्ड कर लिया है,
3: जिनको इनफैक्ट सच में इंटरेस्ट है इन गोइंग टू वनुआतु फ्री ऑफ चार्ज. कोई एयर फेयर नहीं भरना पड़ेगा, एयरलाइन आई मीन टिकट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो
1: स्पेंडिंग मनी भी दे रहे हैं,
3: $1,000 भी दे रहे हैं.
1: अच्छा, मेरे को बात बताओ,
3: पूछो
1: कौन ऐसा होगा जिसको फ्री में घूमने को मिले और वो नहीं करेगा?
3: आई डोंट नो, क्योंकि लोगों को वनुआतु के बारे में उतना पता नहीं है ना.
1: हाँ, वो बात
3: है. इस रीजन से मैं पूछ रहा हूँ कि आप में से कितने लोग हैं जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं इन गोइंग टू वनुआतु.
1: आई एम इंटरेस्टेड, बट मेरे को नहीं मिलेगा ये.
3: हाँ, आपको इतना करना, अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं, तो BC अपना नाम और कहां से आप सुन रहे हैं वो हमें बताएं.
1: ठीक है, तो BC लिखना है आपको, अपना नाम लिखना है और 5599 पर सेंड कर देना
3: पर भी.
1: और आप सुनते रहिए, क्योंकि हम आपको बता दें कि बोर्डिंग कॉल के लिए एक स्पेशल कॉल जो है ये अनाउंस होगा. और जब ये स्पेशल कॉल अनाउंस होगा, नॉर्मली ये सुबह 8 से 9 बजे के बीच, फिर 11 से 12 के बीच, फिर 1 से 2 के बीच और शाम 5 से 6 के बीच जो है ये स्पेशल बोर्डिंग कॉल अनाउंसमेंट जो ये होती है. एंड एज सून एज यू हियर दैट अनाउंसमेंट, तो आपको अपना रोवर ऐप ओपन करना होता है और आपके पास होते हैं 60 मिनट्स का टाइम. एंड वंस यू ओपन द ऐप, आपको जाना होता है एक टैब पर जहां पर लिखा होता है एंटर कोड नाउ. वहां पर आपको टाइप इन करना होता है बोर्ड नाउ, विच इज BOARD स्पेस NOW बोर्ड नाउ, और फिर सबमिट पर क्लिक करना होता है. जब आप ये चीज करते हैं तो आपका नाम उस ड्रॉ का हिस्सा बनता है जहां पर आप जीत सकते हैं टू रिटर्न एयर टिकट्स टू वनुआतु विद सोलोमन एयरलाइंस एंड $1,000 स्पेंडिंग मनी थैंक्स टू Solomon Airlines, flying 4 times each week non-stop from Auckland to Vanuatu. Visit Solomon, flysolomons.com. Yaad rahe, visit flysolomons.com. Our T's and C's apply for this particular promotion. But remember, ki agar aap Vanuatu ke liye 2 return air tickets aur $1,000 spending money jeetne mein interested hai, to main bataye to sahi na ki you are interested.
3: Abhi tak mere paas jo messages aaye hain, to Krunal Ellesley se aur Sheena Papa Toitoi se.
1: Vidhika bhi aaya hai Papa Kura se.
3: So, see, wahi main bol raha tha ki aap mein se kitne log genuinely interested hain. BC, aap

0: 468 newborns जो हैं इनका नाम रजिस्टर हुआ है विद हॉलैंड.
1: अच्छा, मतलब उनका नाम हॉलैंड रखा गया.
0: और उनमें से 91 ऐसे थे जिनको पूरा नाम दिया गया अर्लिंग हॉलैंड.
1: ओ, जो फेमस प्लेयर है उनके नाम पर.
0: हाँ,
1: हाँ, तो ये आपको पता है 1994 में जब सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स जीता था.
0: हाँ?
1: मेरे ख्याल से थाईलैंड में हुआ था ये, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. थाईलैंड या फिलीपींस में कहीं पे तो वो हुआ था. तो उस साल उस कंट्री में जितने भी लड़कियां पैदा हुई थी मेजोरिटी लड़कियों का नाम सुष्मिता रखा गया था.
0: अच्छा,
1: या सो दिस इज व्हाट हैपेंस ना, इट्स लाइक पीपल गेट अट्रैक्टेड बाय दैट नेम एंड पीपल गेट नोटिस्ड कि अच्छा ये इतना अच्छा नाम है बिकॉज दिस पर्सन डूइंग सो वेल इन लाइफ. तो लोग अपने बच्चों का नाम जो ही रखते हैं. कुछ लोग को इजी ऑप्शन भी मिल जाता है ना कि पॉपुलर है तो चलो इनके ऊपर अपने बच्चों का नाम रखते हैं. बट एनी वेज, आपके लिए और भी इस इंटरेस्टिंग खबरें हम जरूर लेकर आएंगे. फिलहाल पिछले घंटे बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे, आज किसने किसने सही गेस किया. कृणाल सबसे पहले इनका सही जवाब आया. सैयद का मैसेज हमारे पास आया था. एंड देन हमारे पास निर्मल जीत जी, इन्होंने अपना राइट आंसर भेजा. विश्निल का राइट आंसर आया. प्रितेश ने सही जवाब भेजा. देविका है, हर मिलाप है, कवनीत है. फिर कुछ लोगों ने मैसेजेस भेजे, नाम नहीं लिखा. तन्हा ने कहा वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज एंड बाद में इन्होंने भी सही जवाब दिया. प्रकाश का मैसेज आया और किसी और ने अपना मैसेज लिखा लेकिन नाम नहीं आया. नितिका ने भी अपना सही जवाब दिया. एडन, वी गॉट योर मैसेज. विनील है मनुरेवा से, आपने भी बिल्कुल सही जवाब जो है ये हमें दिया. एंड द बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे फॉर टुडे वाज धड़कन. ये 2000 में फिल्म आई थी जिसमें अक्षय कुमार, महिमा चौधरी, सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी ने एक साथ काम किया था. सो वेरी इंटरेस्टिंग, देखते हैं इस घंटे हमारे पास कितने लोगों के मैसेजेस आते हैं हु आर इंटरेस्टेड इन गोइंग टू वनवातु एंड विनिंग टू रिटेन टिकट्स विद $1,000 स्पेंडिंग मनी. BC स्पेस अपना नाम आपको लिखकर भेजना है.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Tumo ja, papi ho. Tumo ja.
0: Rashi Vibes.
2: सबसे पहले मेष यानी एरिस, आज कहा गया है ऑफिस में काफ़ी सक्सेस हासिल करेंगे और बिजनेस में जो आपको एडवाइस मिल रहा है खासतौर पर आपके बुजुर्गों से काफ़ी फायदेमंद आपके लिए होगा। आज पार्टनर्स के साथ पेशेंस की काफ़ी ज़रूरत आपको पड़ेगी और हेल्थ बढ़िया रहेगा।
3: उसके बाद वृषनि टोरस, आपके लिए कहा गया है नौकरी में आप जो पेशेंस रख रहे हैं, यू नो यू हैव बीन वेरी पेशेंट, यू हैव बीन वेरी ऑब्जर्वेंट, तो ये चीज़ आज आपके काम ज़रूर आने वाली है। और उसके अलावा ये भी कहा गया है कि लेन देन के मामले में थोड़ा केयरफुल हो जाए, अच्छी तरह से चीज़ों को समझ लें एंड देन यू प्रोसीड आज के दिन।
2: और उसके बाद मिथुन यानी जेमिनी, आज कोलीग्स के साथ हो सकता है कि डायलॉग्स, बातचीत के जरिए और अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ की वजह से अच्छी तरह से काम आप पूरी करेंगे। बिजनेस में नए जो प्लान्स रुके पड़े थे उनमें कुछ तेज़ी आप देखेंगे। मेंटली काफ़ी फ्रेश आप फील करेंगे। पैसों का लेन देन करते समय थोड़ा सावधान रहें।
3: कर्क ने कैंसर, काम के मामले में आपकी जिम्मेदारियाँ जो है ये आज पूरी होंगी और बढ़ेंगी भी, सफलता ज़रूर हासिल करेंगे आप। बिजनेस के मामले में कहा गया है जो प्लान्स आप बना रहे हैं, Probably this is a situation जहाँ पर आप नौकरी तो कर ही रहे फिलहाल, लेकिन you plan on opening something small, your own business, तो ये आपके लिए आज काम हो सकता है। Life partner के साथ बहुत अच्छा समय बीतेगा and it'll be a memorable day for you.
2: सिंह यानी लियो, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी लीडरशिप क्वालिटीज उभर कर सभी के सामने आएंगी। बिजनेस में कोई बड़ा मुनाफा हो सकता है और आज इनकम आपका बढ़ेगा। काफी एनर्जेटिक रहेंगे लेकिन अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें।
3: कन्या यानी वर्गो, आपके लिए कहा गया है कामकाज के मामले में थोड़ी रुकावटें हो सकती है, कुछ चीजों पर आपको थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू रखने में आज डिफिकल्टी होगी, जिसकी वजह से हो सकता है कोई आर्ग्यूमेंट हो, इसीलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आज आपके लिए ये भी कहा गया है कि अचानक से कुछ पैसे जो है ये खर्च हो सकते हैं और इसकी वजह से आपका फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ा डामाडोल होगा, इसलिए प्लान थिंग्स अकॉर्डिंगली।
2: तुला यानी लिब्रा, क्रिएटिव कामों में आज सक्सेस हासिल करेंगे, मुनाफा बढ़ेगा और आज एक रोमांटिक इवनिंग भी आप स्पेंड कर सकते हैं। फाइनेंशियली आपका दिन काफी अच्छा होगा।
3: वृश्चिक ने स्कॉर्पियो, आपके लिए कहा गया है कि करियर को लेकर जो भी प्लान्स आप बना रहे हैं, जो जिम्मेदारियां थी आपकी, ये आज पूरी करेंगे आप। मान सम्मान में कोई कमी नहीं होगी, यू विल एक्सपीरियंस सम रियल गुड थिंग्स। और आज आपके लिए कहा गया है कि बिजनेस भी अगर आपका है तो अच्छा चलेगा।
2: धन यानी सेजिटेरियस, नई नौकरी की तलाश में आज कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। पिता फिर या फिर बड़े बूढ़ों से जो गाइडेंस आपको मिलेगा ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। पैसों का अच्छा फायदा आपको आज हो सकता है।
3: और उसके बाद आज मकर यानी कैप्रिकॉर्न, आपके लिए कहा गया है नौकरी में अपनी जो भी यू नो आइडियाज हैं, जो प्लान्स हैं, उनको आप खुद तक ना रखें, यू जस्ट मेक श्योर कि वो सही लोगों तक पहुँचे ताकि पर कुछ एक्शन हो, बिकॉज दिस इज हाउ आपकी हेल्प होगी टू ग्रो इन लाइफ प्रोफेशनली। आपके लिए ये भी कहा गया है कि अनबन से बचे, किसी के भी साथ आज किसी भी तरह का कोई भी आर्ग्यूमेंट हो, जस्ट मूव अवे फ्रॉम देयर। और पैसों के मामले में कुछ फाइनेंशियल ड्रॉबैक्स होंगे जिसकी वजह से आपको उधारी तक लेनी पड़ सकती है।
2: कुंभ यानी एक्वेरियस, आज ऑफिस में दिन अच्छा गुजरेगा आपका। बिजनेस में जो कुछ डील्स हैं ये आज फाइनल हो सकते हैं। पति पत्नी के बीच संबंध अच्छा रहेगा और आज अपनी आंखों को और अपने सिर को थोड़ी राहत दे, अदरवाइज ये कुछ परेशानी का कारण बन सकती है।
3: और फाइनली आज बताया जा रहा है मीन यानी पाइसिस, आपके लिए कि ये जो दिन है आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा नौकरी के मामले में, खास तौर पर तरक्की जो है ये आप देखेंगे, बहुत से अवसर ऐसे आपको मिलेंगे, मतलब प्रोग्रेस आप यू नो पा सकते हैं और ऐसे सिचुएशन ज़रूर आज बनेंगे। ठंडी चीज़ों के इस्तेमाल से, उसको कंज्यूम करने से आज आप बचें, बिकॉज ये कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो ये थे आज के आपके राशि वाइब्स। उम्मीद करते हैं दिन आपका सभी का बहुत ही बढ़िया और कमाल का गुजरेगा। मीन अप वेरी शॉर्टली आज का सेलिब्रिटी अलार्म।

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
1: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
0: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09277644. T's and C's apply.
3: Make your space your own at Mitre 10. Upgrade your storage with a MaxRack Heavy Duty 5 Shelf Wire Unit, now 165. And get your fire going faster with Samba Fire Lighters. Grab 236 packs for $7. T's and C's apply. Shop now at Mitre 10.
4: You filled the pinata before I sealed it, right?
5: No, you did.
4: I thought you did.
6: Get groceries in as little as 60 minutes with New World Express Delivery. T's and C's and exclusions apply. See online for details.
7: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Gold and Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Gold and Diamonds at Botany Town Center, Auckland.
8: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल 100% वेजिटेरियन जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए टैंगी डिप्स बनाने के लिए पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए या बस सीधा टब से खाने के लिए क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस ऑलवेज देसी अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन कशिश नेचुरल योगर्ट
9: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
11: Celebrity Alarm.
2: My favorite segment and iske liye I really look forward to and I am quite excited. Aaj ke celebrity ko kaun kaun pehchanta hai ye dekhne ke liye. To
12: बहुत इजी
2: इजी है ना
12: नहीं होगा
2: उनके लिए इजी है जो इनको बहुत दिलो जान से पसंद करते हैं और फॉलो करते हैं
12: अच्छा
2: बिकॉज देन दे'ल नो पर अगर कोई इनको उतना यू नो रिलीजियसली फॉलो ना करता तो आवाज पहचानने में डिफिकल्टी होगी
12: कई लोग शायद जो इनको फॉलो भी करते हैं उन्होंने इनकी आवाज पर कभी फोकस नहीं किया
2: अगर दैट्स द थिंग लाइक ध्यान नहीं देते हैं ना बिकॉज कम बोलते हैं इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लोग तो चलिए सुनाते हैं
12: एक्शन ज्यादा बोलता है ना
2: एब्सोल्युटली सुनाते हैं आज की हमारे सेलिब्रिटी की आवाज हमारी सेलिब्रिटी अलार्म के लिए इन देखते हैं क्या आप इन्हें पहचान पाते हैं या नहीं
13: Good evening, everyone. It's a wonderful story. It's my story. You know, I was already focused. I had a dream to be a professional player. I watch a lot of players. I watch Robert when I was young.
2: तो कौन है आज के हमारे सेलिब्रिटी एक चीज तो खैर आपको पता चली चुकी होगी इनकी बातों से अगर आपने इनकी बातों पर ध्यान दिया कि ये एक प्लेयर है बट किस चीज के प्लेयर
12: हैं
2: रियलिटी में प्लेयर तो नहीं है लाइक वो बात अलग है बट या स्पोर्ट्स पर्सन लेकिन कौन सा स्पोर्ट ये खेलते हैं वो अगर आपने फिगर आउट कर लिया तो शायद आपको इनकी आवाज पहचानने में आसानी होगी तो देखते हैं आज का चैलेंज कौन पूरा कर पाता है आज के हमारे सेलिब्रिटी कौन है अगर आप पहचान चुके हैं तो
12: बी एफ अपना आंसर और अपना नाम ये 5599 पर आपको हमारे पास भेजना है।
2: और एक आखिरी बार इनकी आवाज।
13: It's a wonderful story. It's my story. You know, I was already focused. I had a dream to be a professional player. I watched a lot of players. I watched Robert when I was young.
2: जल्दी जल्दी अपने आंसर्स हमारे पास भेजे 5599 पर बी एफ योर आंसर योर नेम। और कमाल की बात यह है कि नॉर्मली जब हम सेलिब्रिटी अलार्म लेकर आते हैं तो कोई ना कोई जवाब तो आ ही जाता है। कल भी इनफेक्ट एक आंसर आ गया था, सही या गलत वो अलग बात है, बट आज अभी तक किसी ने भी कोशिश नहीं की। देखते हैं क्या ये आवाज हम आपके लिए कल वापस लेकर आएंगे या आज रिवील करना पड़ेगा कि ये है कौन।
11: सीधा अंदर आऊं
14: मैं लाऊं अपना ए गेम।
15: Brought to you by Indelible Homes, build your dreams.

0: Madness.
1: News headlines.
2: सुबह के मुख्य समाचारों में लीडरशिप चैलेंज के चलते प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन द्वारा मिनिस्टीरियल पोर्टफोलियो से हटाए जाने के कुछ ही घंटे बाद क्रिस पेंक ने नवंबर इलेक्शंस न लड़ने का फैसला किया है। एमरजेंसी कोकस मीटिंग के बाद लक्सन ने कॉन्फिडेंस वोट जीतकर अपनी लीडरशिप को कायम रखा और पेंक की भूमिका को अनटेनेबल बताते हुए उन्हें पद से हटा दिया। इसके बाद पेंक ने अपने पॉलिटिकल फ्यूचर पर विचार करके इलेक्शन से हटने का ऐलान किया। हालांकि उन्होंने नेशनल पार्टी और लक्सन को अपना पूरा सपोर्ट देने की बात कही है। उधर लेटेस्ट वन न्यूज वेरिएंट पोल के मुताबिक द अपॉर्चुनिटी पार्टी के पास पार्लियामेंट में एंट्री करने और किंग मेकर बनने के नंबर्स हैं, जिससे लेबर के अगुवाई वाले लेफ्ट ब्लॉक को गवर्नमेंट बनाने का रास्ता मिल सकता है। पोल रिजल्ट में लेबर 38% पर लीड कर रही है, नेशनल 29% पर कायम है, लेकिन दोनों ही ब्लॉक्स को फिलहाल क्लियर मेजोरिटी नहीं मिल रही है। क्रिस्टोफर लक्सन द्वारा अपॉर्चुनिटी के साथ काम करने से इनकार करने के बाद अगर लेबर, अपॉर्चुनिटी, ग्रीन्स और तेपाती माउरी के साथ मिलकर काम करती है तो उनके पास सरकार बनाने के लिए जरूरी 68 सीटें हो जाएंगी। एनपीसी के एक मैच में आज जबरदस्त मुकाबला होने को है। यह मैच वेलिंगटन में खेला जाएगा, जिसमें वेलिंगटन नॉर्थ हार्बर को होस्ट करेगा। यह मैच कल या आज रात 7:10 पर खेला जाएगा, जिस पर अपडेट्स आपके लिए हम पर हम लेकर आएंगे। फिलहाल ओएफसी चैंपियंस लीग के दो मैचेस आज खेले जा रहे हैं। आज दिन में 12:00 ऑकलैंड सिटी टीगर स्पोर्ट्स से खेलेगा, जिसके बाद 3:00 सेंट्रल कोस्ट और आईएस वीनस के मैच होगा। इन पर अपडेट्स आपके लिए हम पर हम जरूर लेकर आएंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living. Hum. Accurate traffic.
4: Switch to AMI car insurance.
5: Cloudy today. Showers on and off. High of 18. Very heavy on the northwestern motorway. 58 minutes. Massey to town. It should ease a little bit, but a crash just past St. Luke's has really slowed us down. That crash is sorted, but it is heavy right from Massey to the city. Southern 42 and from Monaco, slow from Papakura, heavy patches frequent. Northern 25 from Constellation, slow all the way to the bridge and heavy at Silverdale.
4: AMI Roadside Rescue is free with every AMI comprehensive car policy. T's and C's apply.
6: Chahe aap slow roast kar rahe ho, baking kar rahe ho, ya family ke liye delicious feast bana rahe ho, the D'Antonio Winter Sale has you covered. Shop kijiye Mitre 10 Mega Westgate and Henderson mein aur paiye cookware aur kitchen essentials par zabardast deals. The D'Antonio Winter Sale on now ends August 16th.
7: Hey, the boss shouted us coffees this morning from BP.
8: No way.
9: We in trouble?
7: Nah, it's BP Plus.
9: What is that?
7: A fuel card that saves a business on BP fuel. Plus, we get free coffees.
10: Sweet. Fuel you and your crew with 14 cents off every litre of eligible fuel for 6 months, plus 25 free Wild Bean Cafe coffees through BP Me. Apply for a BP Plus fuel card today at bp.co.nz. T's and C's apply. New customers only for a limited time.
11: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है, क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
12: The Afterpay Day sales are back. Score up to 70% off thousands of brands like Harvey Norman, Kiwi Tech, Hallensteins, and Zed when you check out with Afterpay. And Sunday, T's, C's, fees, and credit checks may apply. See afterpay.com for Afterpay terms.
13: At Macca's, you can get the new honey sriracha sauce on any breakfast. McMuffins, brekkie wraps, big brekkie burgers, hotcakes. Nah, that'd be weird. Honey sriracha, only for a limited time. T's and C's apply.
0: Bollywood.
14: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
0: Birthday greetings.
15: इसका बर्थडे भाई?
16: मेरा भी बर्थडे है. चलो लाइन में आ जाओ.
15: Happy birthday to you.
2: A very, very happy birthday. Many, many happy returns of the day. Sumit Narayan, आज आप अपना 22nd birthday celebrate कर रहे हैं और आज खुशी के इस मौके आपके parents हैं Mr. Mrs. Sugen Narayan. इसके अलावा उमलेश महाराज, शनील महाराज, अमितेश महाराज सभी ने आज आपको याद किया है. आशना है. इसके अलावा कार्तिक ने भी आज आपको याद किया है. सभी की ओर से, आपके सभी दोस्तों की ओर से भी आज का ये खास दिन आपको अनेकों बार शुभ और मुबारक हो. A very, very happy birthday. Many, many happy returns of the day.
8: जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको. आज आप भी अपने बर्थडे अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ड्यू टू सम रीजंस यू माइट नॉट हैव बीन एबल टू सेंड अस अ मैसेज, आपको डेफिनेटली हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं बर्थडे के लिए भी. और अगर शादी की सालगिरह है आज ऑन द 13th ऑफ ऑगस्ट, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी एज वेल.
0: मॉर्निंग मैडनेस.
8: चलिए मॉर्निंग मैडनेस आपके लिए जबकि हम लेकर आ रहे हैं और इस बार मॉर्निंग मैडनेस में समय हो रहा है कि आज के हमारे जो सेलिब्रिटी हैं, सेलिब्रिटी अलार्म के लिए उसका हाल देखें क्या हो रहा है.
2: आज तो सभी का हाल बेहाल हो गया. मैंने बोला था कि आज इजी नहीं होगा एंड वही हुआ है. अभी तक सिर्फ 1, 2, 3, 4 चार ही लोगों ने अटेम्प्ट किया है इटसेल्फ. सही गलत क्या तो की तो बात ही आप छोड़ दो,
8: वो हम बाद में डिसाइड करेंगे.
2: चार ही लोगों ने अटेम्प्ट किया है कि टू आइडेंटिफाई कि आज के हमारे सेलिब्रिटी कौन है.
8: और कमाल की बात ये है कि अलग अलग आंसर्स चारों ने दिए हैं.
2: अच्छा,
8: किन्हीं के भी आंसर्स, किन्हीं दो के या तीन के आंसर सेम नहीं है. सनी का जो जवाब है ये आया है और इन्होंने कहा है हाउ डू यू से
2: सर्जियो रामोस.
8: अच्छा ओके. और गौरव ने कहा है राफेल नडाल. साथ में नेहा ने अर्लिंग हालैंड ये लिखा है. Probably because we were talking about him ना.
2: हाँ.
8: तो हो सकता है ये इसी वजह से इन्होंने सोचा. But हालैंड has a very distinguished way of speaking and voice as well.
2: Okay, तो आप क्या करें, आपको एक और गाने का टाइम हम दे रहे हैं.
8: Right.
2: Around throwback. Around throwback हम रिवील कर देंगे कि हमारे सेलिब्रिटी कौन है. एक आखिरी बार आवाज हम आपको सुना रहे हैं और अच्छी तरह से आप सुने. और हमने इतना बताया है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन है.
8: हाँ, लेकिन कौन सा स्पोर्ट प्ले करते खेलते ये वो हमने नहीं बताया. यू हैव टू गेस इट. सो आज के हमारे सेलिब्रिटी की आवाज ये रही इन सेलिब्रिटी अलार्म.
9: गुड इवनिंग एवरीवन. इट्स अ वंडरफुल स्टोरी. इट्स माय स्टोरी. यू नो आई वाज ऑलरेडी फोकस्ड. I had a dream to be a professional player. I watch a lot of players. I watch Robert when I was young.
8: तो चलिए ये तो पता चल चुका है कि प्लेयर है ये. हमने ये भी बता दिया स्पोर्ट्स पर्सन. लेकिन किस स्पोर्ट्स में स्पोर्ट में ये खेलते हैं वो आपको अनुमान लगाना है. किसकी आवाज़ है इतना आपको बता सकते हैं कि ये शख्स बहुत पॉपुलर है. बहुत ज्यादा पॉपुलर
2: ग्लोबली. कई बहुत सारे लोगों के ये फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं
8: जी.
2: तो आप कोशिश करें BF आंसर और नाम 5599 पर हमारे पास टेक्स्ट करें. अराउंड थ्रोबैक अगर किसी का सही आंसर आया तो बताएंगे, अगर नहीं आया तो विल कैरी इट ओवर टू टुमारो.
8: यस निक आपका भी मैसेज आया. थैंक यू सो मच. आपने कहा मेसी नहीं, ये मेसी की आवाज नहीं है. He also has a very distinguished way of speaking. Voice bhi unke alag hai. And if I'm not mistaken, unko angrezi nahi aati. To ye angrezi mein bol rahe hai na, English mein bol rahe hai. To it's not messy. Let's see, kya is agle gaane tak koi bhi sahi jawab de paata hai ya nahi.
15: Let's go. Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local developer.

0: Georgia.
1: Driving you home.
2: The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
5: वो भी आई लव यू वाला।
4: मैडम ने पकड़ लिया भी हाँ किसी ने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो बना रहा था बेटा।
5: अच्छा आप दिलजीत हो?
4: आए आए बताओगे
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku. Hum, accurate traffic.
6: Winter calls, Sky Tower answers.
7: Scattered showers on a cloudy day, a high of 18 degrees. Coming into the city, northwest and slowest of the bunch, 50 minutes messy to town. It's mainly due to a crash we had past St. Luke's. That's been sorted, but heavy on and off all the way from Massey. Southern 48 Manukau to town, heavy on and off Papakura to the CBD. Southwest and heavy northbound through Whitty. Northern half an hour from Constellation, heavy patches there to the bridge and at Silverdale.
6: Discounted adult passes just $30 direct at the Sky Tower this winter. Terms apply.
8: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Enjoy a stopover in sunny Fiji on your way to epic destinations. Live your California dreams in LA or San Fran. Relax in Honolulu. Head to Dallas and experience southern hospitality at its finest. Or take a trip to Asia, Tokyo, Singapore, or Hong Kong. Fiji Airways on sale now. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
9: Hello. NZHL helps you get ahead on your mortgage without living off office snacks, Christmas shopping on Boxing Day, buying handbags on the dark web.
10: It's a very Stassi.
9: Selling your organs, DIY Botox, ignoring expiry dates. Knitting, pickling, homebrewing, live camming, dining, dashing, or borrowing toilet paper from work.
10: Ah, you keep it.
9: Nope, there's a better way to have a mortgage and a life with NZHL.
11: NZHL.
12: When you're finishing off that DIY project this weekend, remember to have a hmm and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
13: Rebel's 30th birthday continues with $30 deals on now. That's selected kids' clothing, hydro flasks and Nike equipment for only $30. Plus save $30 off selected casual running and kids' shoes. $30 deals and so much more on now at Rebel Sport. See online for T's and C's.
14: Zabardast hits. Shuru ho jaye to rukte nahi. Playing Bollywood's biggest hits. Hum.
15: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
16: Don't mind, lekin aap dono ki jodi badi cute hai.
15: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
10: 12 minute baki hai samay hamare studios mein aaj bajne mein Thursday 13th of August ki subah aur Morning Madness on the Breakfast Show with Vijay and Pooja aapke liye lekar aa rahe hain. Idhar imagine kijiye ki aapke sibling ka jo performance review hai, basically kitne masti khor है, वो कितने बदमाश है, कितना परेशान करते हैं आपको, कितना प्यार करते हैं आपको, ये सारी चीजों के बारे में बातें करते हुए आप एक मौका पा सकते हैं टू विन योर शेयर ऑफ $500, क्योंकि हम दो लोगों को $250 ईच जो है ये देने वाले हैं.
17: इजी मनी है.
10: हाँ, आपको सिर्फ कॉल करना है 0800-004-866 पर और बस अपने भाई या बहन जिसके बारे में भी आप बताना चाहें उनके बारे में बता सकते हैं कि वो एज अ ब्रदर और अ सिस्टर कैसे हैं.
17: ऐसा करेंगे, आज हम आपको एक टॉपिक देंगे.
10: अच्छा,
17: उस पर आपको अपने भाई या बहन को रिव्यू करना होगा.
10: वेरी नाइस, या दैट विल मेक थिंग्स इजीयर ना. तो 0800-004-866 पर अभी हमारे पास आपको कॉल करना है एंड द वेरी फर्स्ट पर्सन जो कॉल करेगा उनको हम जरूर ड्रो में शामिल करेंगे वंस दे गिव अ सिबलिंग्स परफॉर्मेंस रिव्यू एंड आप उस ड्रो का हिस्सा बनेंगे जहां पर आपके पास मौका है टू विन योर शेयर ऑफ $500.
17: सो कॉल करें 0800-004-866 पर राइट नाउ टू टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन. और इन द मीन टाइम आपको बता दें जल्दी से आज के हमारे सेलिब्रिटी कौन रहे हैं.
10: आज के हमारे सेलिब्रिटी जिनका नाम कैसे बोलते हैं वो पहचानने के लिए बोलने के लिए मेरे को जाकर सीखना पड़ा. बट बिफोर दैट वी डिड गेट अ फ्यू करेक्ट आंसर्स, इसीलिए रिवील करना पड़ रहा है हमें. अगर नहीं मिलता एक भी जवाब तो हम नहीं बताते. फ्रांसिना वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इनकी आवाज़ जो पहचानी थी. इन्होंने गुड मॉर्निंग मैसेज भी भेजा अपना, जिसके बाद कुछ और लोगों ने आंसर्स भेजे पर नाम नहीं लिखा है. सनी का मैसेज आया विद द करेक्ट आंसर. अनिल है साथ में हमारे पास, किसी और मोविन का आंसर आया था करेक्ट. कुछ और लोगों ने अपने आंसर्स भेजे लेकिन नाम नहीं लिखा. आरती ने भी सही जवाब दिया. देयर वर अ फ्यू पीपल आउट देयर जिन्होंने थोड़ा अलग आंसर दिया था, जिनमें हमारे पास आई थिंक किसका मैसेज आया था, शिमल, इन्होंने कहा था माइकल जॉर्डन. राहुल ने कहा था क्रिस्टियानो रोनाल्डो. समीर ने कहा था नोवाक जोकोविच. और उसके साथ साथ कुछ और लोगों ने भी डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स जो है ये लिखे थे. नीलेश ने भी वही जवाब लिखा था. और साथ में हमारे पास नीलेश दयाल ने भी रोनाल्डो लिखा. संध्या ने लिखा था केन विलियम्स son, I think that's what she wanted to say.
17: So the correct answer Kylian Mbappe.
10: Yes.
17: Thank you so much aapke answers ke liye. Ab jaldi se kyunki time bahut hi kam hai hamare paas.
10: Less than a minute.
17: To kya aaj kisi ka naam draw mein shamil hoga jahan par your share of $500 cash aap jeetenge raksha bandhan ke mauke par?
10: Ya fir itni baatein kar hum aise hi aage badh jayenge. Kisi ka naam nahi jayega draw mein. Acha hamare paise bachenge. I mean we are getting this money for you. और इतना सिंपल सा कुछ करते हुए अगर आपको पैसे मिल रहे हैं, यू शुड एटलीस्ट ट्राई योर लक. यू नेवर नो ना, आप जीत जाओ. हाँ, कितने सारे विनर्स हमारे साथ हुए हैं. अब तो 30 सेकंड से भी कम समय बाकी है. लेट्स सी 0800 004 866 पर आपको कॉल करना है. और आया कॉल. लेट्स सी. गुड मॉर्निंग.
0: हाय,
10: क्या बात है यार, इतना ठंडा गुड मॉर्निंग. आज तो टेम्परेचर आर नॉट सो कोल्ड, यू नो.
17: क्या नाम है आपका?
0: शीतल.
17: ओके शीतल, आपके भाई का नाम क्या है?
0: प्रशांत.
17: सॉरी क्या?
0: आई हैव टू ब्रदर्स, प्रशांत एंड नीरव.
17: अच्छा, प्रशांत एंड नीरव. तो आप ऐसा करें, आज प्रशांत का रिव्यू हम करते हैं, ठीक है? प्रशांत आपसे बड़े या छोटे हैं?
0: बड़े
17: हैं. आप हमें ये बताइए, हाउ गुड और बैड is Prashant at complaining about things?
0: He doesn't complain at all.
10: Achha.
0: About anyone.
17: नहीं, about anyone नहीं. कोई चीज के बारे में, लोगों के बारे में नहीं. कोई
10: इतनी ठंडी है, मेरे को काम पे जाना पड़ रहा है. I am so tired.
17: खाने में यू क्यों बनाया है?
10: खाने में नमक कम है, you know, like these things. या फिर शीतल तुम इतनी बातें क्यों करती हो?
0: नहीं, I have never seen him about complaining about anyone. But he gets agitated when house is not clean.
10: Achha.
0: Yeah, and then he himself starts cleaning it up. But he doesn't complain.
17: Okay.
10: So he's not very good at complaining.
17: वो शिकायत नहीं करता, खुद ही कर देता है.
10: उनको नहीं चाहिए,
0: खुद ही कर देता है.
10: उनको अपने सिर पर किसी भी तरह की मुसीबत नहीं चाहिए.
17: Amazing review. See, कितने अच्छी तरह से इन्होंने रिव्यू किया. अपने भाई के बारे में बताया भी.
10: Exactly.
17: और
10: ड्रो में भी शामिल हो गई.
17: बिल्कुल. थैंक यू सो मच शीतल, आपका नाम हम ड्रो में शामिल कर रहे हैं.
10: थैंक यू. अब आ रहे कॉल्स इतने सारे, बट अनफॉर्चुनेटली अभी हम नहीं ले पाएंगे कॉल्स आपके. रीजन
17: इंतजार करें.
10: हाँ, रीजन बिंग क्योंकि टाइम
17: इतनी देर हम इंतजार कर रहे थे, आप कॉल नहीं कर रहे थे. अब आप इंतजार कीजिए कि अगली अपॉर्चुनिटी कब आपको मिले.
10: बिल्कुल. और जैसे ही अगला मौका आपको मिले, 0800 004 866 पर आप हमारे पास कॉल कर पाएंगे अपने सिबलिंग का परफॉर्मेंस रिव्यू करने के लिए. एंड वंस यू डू दैट, यू विल बी पार्ट ऑफ दिस ड्रॉ जहां पर आपके पास मौका है टू विन अ टोटल ऑफ $500 में से अपना शेयर, बिकॉज वी आर गिविंग इट अवे टू 2 लकी विनर्स.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: सुपर सिटी ऑकलैंड में याद रहे आज का मौसम बताया जा रहा है कि द टेम्परेचर्स ओवरनाइट आज 10 डिग्रीज रहेगा, हाई ऑफ 18 एक्सपेक्टेड है बाद में चलकर. करंटली टेम्परेचर 13.2 डिग्रीज है और आज कहा गया है लिल बिट ऑफ क्लाउड, लिल बिट ऑफ ओट शावर्स हियर एंड देयर और मॉर्निंग फॉग तो रहेगा ही, लेकिन शाम के समय साफ मौसम का अनुमान लगाया जा रहा है. सनसेट 5:46 PM पर होगा.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
4: 4 मिनट हो रहे हैं 8:00. वेलकम टू द रश आवर ट्रेंड पेट्रोल में. टॉप 5 थिंग्स दैट हैव बीन ट्रेंडिंग इन न्यूजीलैंड इन द लास्ट 24 आवर्स. नंबर 5, लूसी डेविस.
1: ओके,
4: लूसी डेविस आपको पता है कौन है?
1: नहीं.
4: द ऑफिस की एक एक्टर है ये.
1: अच्छा.
4: और पिछले 24 घंटों में ये खबर आई कि शी हैज बीन डायग्नोस्ड विद इनक्यूरेबल स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर, जिसका अब इलाज नहीं हो सकता. तो दैट्स लूसी डेविस. नंबर 4 पर इट्स आर्सेनल वर्सेस कोमो. आज कई क्लब फ्रेंडलीज जो है ये खेले जा रहे हैं. आर्सेनल और कोमो के बीच जो मैच हो रहा है, इन केस यू आर इंटरेस्टेड, तो सेकेंड हाफ में दोनों टीमें एक एक गोल से फिलहाल बराबर हैं.
1: राइट.
4: नंबर 3 पर है डेमियन मैकेंजी.
1: ओके,
4: अभी ये खेल रहे हैं ना, कहां साउथ अफ्रीका गए हैं ऑल ब्लैक्स टीम के साथ. नंबर 2,
1: पावरफुल रिजल्ट्स. कल किसी ने जीता क्या?
4: $10 million.
1: नहीं जीता कोई.
4: कोई नहीं जीता?
1: जीत गया?
4: पता नहीं, मुझे नहीं पता.
1: अरे मुझे क्या पता. हाँ. चलो मैं ही पता कर लेती हूँ अभी. कोई जीता कि नहीं जीता.
4: नंबर 1 पर है मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लीड्स. ये भी एक क्लब फ्रेंडली खेला जा रहा है और ये भी सेकंड हाफ में जारी है. मैनचेस्टर यूनाइटेड 1 और लीड्स 1. कई लोगों ने जो यूएफए सुपर कप फाइनल इसमें भी इंटरेस्ट दिखाया था. फर्स्ट हाफ पूरा होने वाला है. PSG वर्सेस एस्टन विला ये मैच अभी खेला जा रहा है और दोनों टीमें एक एक गोल से फिलहाल बराबर हैं. तो इन मैचेस पर भी और अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे. सो दीज विद द टॉप, दीज आर द टॉप 5 थिंग्स
1: दैट इज ट्रेंडिंग इन न्यूजीलैंड एज फार एज गूगल सर्च इज कंसर्न्ड. लोटो की बातें करें तो पावरबॉल के बारे में कहा गया, लोटो लास्ट नाइट 7 लोग जो है ये जीते हैं $142,857. 7 लोग.
4: Okay.
1: लोटो फर्स्ट डिविजन में और 10 अन्य प्लेयर्स हैं जिन्होंने $24,308 ईच जो है ये जीता लोटो सेकंड डिविजन में. और जो बिग अमाउंट $10 million का पावरबॉल जैकपॉट ये कोई नहीं जीता, इसी वजह से अब सैटरडे के लिए इट इज नाउ $12 million विच इज अप फॉर ग्रैब्स. सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स. टोटल ऑफ 17 विनर्स जो है ये हुए हैं इस बार, बट नो वन वन द जैकपॉट. तो सैटरडे को अपनी अपनी किस्मत आप आजमा सकते हैं. आज है थर्सडे 13th August और आज की ये सुबह जहां पर थोड़ी देर बाद हम बातें करेंगे आपके साथ आज के हमारे व्हाट्सएप एक टॉपिक के बारे में. एंड वी लव टू हियर फ्रॉम यू. 0800 004 866 पर आप हमारे पास कॉल कर सकेंगे आज के टॉपिक पर अपनी राय शेयर करने के लिए. एंड ऑन द अदर हैंड आप हमारे पास टेक्स्ट भी कर सकेंगे ऑन 5599 अगर आप हमारे पास कॉल नहीं कर पाएंगे. तो टॉपिक जो है पहले बताएंगे आपको, उसको सुनने के बाद आपकी जो भी राय हो वो जिस भी मोड से आप हो सके हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. तो चलिए इधर आज का हमारा जो पहला गाना है इस घंटे का, अ वेरी स्पेशल सॉन्ग इस बार आपके लिए हम लेकर आए हैं. स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये है एक आने वाली फिल्म साइड हीरोज से ये गाना. और ये फिल्म जो है इसमें वो सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने कभी ना कभी साइड हीरोज ही, या यू नो साइड हीरोज का जो रोल है ये प्ले किया. दे हैव नॉट प्लेड अ लीड रोल.

0: यार याद आ गई अपने दोस्तों की,
1: वो बचपन के दोस्त।
2: अजाने क्यों ये दूरियां बढ़ गई।
1: कई बार आपको लगता है कि मेरी गलती थी ही नहीं, उसी की गलती थी।
0: सच बताऊं, सही लगता है उसी की ही तो गलती थी
2: काफी हद तक, लेकिन थोड़ी गलती तो आपकी भी थी।
1: तो इसीलिए फोन उठाओ
0: और अभी इसी वक्त उनसे बात करो,
2: वरना कहते रह जाओगे।

0: with Vijay and Pooja.
1: March 2027. Ek kahani jo badlegi aapki zindagi.
2: Ruzbe, tickets book ho gaye.
3: To phir der kis baat ki? Bali bula raha hai.
2: Sunset, beach club aur thoda sa sukoon bhi.
3: Lekin kahani yahi khatam nahi hoti.
4: Fatiha.
3: Bangkok mein hoga hamara asli tashan.
2: Tuk tuk, street food aur raaton ki rahim duniya bhi.
5: Ek baar to jaana hi chahiye Thailand.
6: Hello everybody.
1: Do shehar, ek safar aur yaadein jo rahengi hamesha.
7: Thoda ghume aao, acha lagega aapko, man behal jayega aapka bhi.
1: Text drive on 5599 for the all inclusive tour price. Kyunki ye kahani ab aapke saath likhi jayegi. Bali and Bangkok getaway with Sandy and Ruzbe, only on Hum.
8: Okay. Let's run through this. You've set up a coffee group, a mum's group, a connect group, and you've adopted group fitness like a religion. Face it, you're good in groups. So why not turn your superpower into getting a group of blood buddies together? This winter, with all the dreaded lurgies around, NZ Blood needs blood and plasma more than ever, and your donations could save lots of lives. Friends, whānau, workmates, get your blood buddies together, then book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood. Give plasma. Save lives.
9: Professional Financials hai saath aapke. Loan aur insurance ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
10: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process so simple and frank.
9: Business finance ya income protection ho, har step par guidance perfect ho. Sab kuch milega yahi. Apna future secure banaye.
10: Professional Financial Solutions. Your future, our priority. Call 09-846-9934 or search PFSL. T's and C's. Lending and credit criteria apply.
11: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast, free delivery. 12-panel hybrid solar system. Fully installed for just $9,999. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast, free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply.
12: TradeDepot.co.nz.
13: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। Eat better, live better. For more information, log in to www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manuko. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
14: What's your take?
15: 18 minutes after 8 for now और अब समय हो रहा है on the rush hour breakfast show with Vijay and Pooja में आपके लिए हम लेकर आए आज का what's your take topic and I kind of like the topic today because I can relate to it. It's quite interesting. ये ना टॉपिक आज का ऐसे देख रहे थे मैं पता नहीं क्या ही बोलने जा रही हूँ बट आई वुड लाइक फॉर यू टू इंट्रोड्यूस कि आज का टॉपिक क्या है व्हाट्स योर टेक का
16: यस्टरडे आई वाज रीडिंग अबाउट दिस कल प्रोग्राम के बाद यू नो आई वाज ग्लांसिंग थ्रू अ फ्यू थिंग्स एंड
15: सीधा सीधा बोलो ना ढूंढ रहे थे कि क्या बोले क्या ना बोले शो में
16: वही करना पड़ता है प्रिपेयर ना ऑब्वियसली प्रोग्राम करने से पहले प्रिपेयर तो करना पड़ता है तब मुझे सुप्रिया बांगा जो है उनके बारे में पता चला ये जोश स्टोक्स एक है उनकी को फाउंडर है और उनके बारे में एक आर्टिकल न्यूज 18 ने पब्लिश किया है जिसमें उन्होंने एक ऐसा इशू रेज किया जिसके बारे में शायद मैंने तो ऐसे सोचा नहीं था लेकिन उनके इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद यू नो कुछ देर तक मैं सोचता रहा उन्होंने आर्ग्यू किया है कि बहुत सारी मिलेनियल इंडियन महिलाएं जो हैं उनको कुकिंग से इटसेल्फ कोई प्रॉब्लम नहीं है यू नो दे डोंट हेट कुकिंग इटसेल्फ लेकिन जिस तरह से कुकिंग को पैकेज किया जाता था पहले उसकी वजह से वो कुकिंग को हेट करने लगी थी
15: पैकेजेस इन
16: जिस तरह से उनके लिए प्रेजेंट किया जाता कि व्हाई कुकिंग.
15: हाँ
16: तो कुकिंग को पैकेज किया जाता था विद एक्सपेक्टेशंस ऑफ मैरिज, जेंडर रोल्स और द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग अ गुड गर्ल. कि ये बहुत अच्छी लड़की है, इसको खाना बनाना आता है,
15: और जो खाना नहीं बनाना जानता हो वो अच्छी नहीं है,
16: माँ बाप ने नहीं सिखाया.
15: हाँ,
16: ना exactly. और कि अगर भाई अब तुम्हें खाना बनाना सीख लेना चाहिए क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारी शादी हो जाएगी.
15: वरना तुम पति को क्या खिलाओगी.
16: हाँ, वो सारी चीजें. और तुम एक लड़की हो, तुम्हें तो खाना बनाना आना चाहिए.
15: ट्रू.
16: तो जब मैं ये पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि कल ये पूछेंगे कि क्या हम उस माइंडसेट से आगे बढ़े हैं.
15: I feel ये क्वेश्चन है आज का. Oh God, हाँ, ये क्वेश्चन है आज का. I personally feel yes, हम आगे बढ़े हैं, but it is
16: still around.
15: लेकिन कमाल की बात ये है कि ये जो thinking है ये सिर्फ हमारे से पहले generation में नहीं है, हमारे से पहले generation वालों में भी बदलाव जो है हमसे पहले आया था. For example, मेरे घर पे my dad used to cook. We've seen, like we've grew up, seen him cooking. You know, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी माँ को cooking आती है, मेरे dad को नहीं आती. And my dad doesn't cook. He cooks. And at times we joke around कि यार, this is something that dad makes and it's so tasty.
16: See, you might notice something. कि I don't know, मैं Fiji Indian community की बातें कर रहा हूँ, जहाँ पर शादी ब्याह हो या फिर ऐसा कोई बड़ा function हो,
15: men, हाँ, जो
16: मर्द ही खाना बनाते हैं.
15: Yeah.
16: एंड लेडीज हेल्प करती हैं पूरी चॉपिंग वो सारी चीजें में, बट बेसिकली
15: वो भी मर्द करते हैं. इट्स नॉट लाइक इट्स लिमिटेड कि सिर्फ महिलाएं वो करती है, बट इट्स बेसिकली हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ये पहले भी एक चेंज हुआ था, पर शायद कम लोगों के बीच में. एंड इट वॉज नॉट अ जनरेशन थिंग कि हमसे पहले वाली जनरेशन में ये चीजें होती थी. आई वुड से आई हैव नॉट सीन माई ग्रैंड फादर्स डू दैट. The funny thing is both my grandfathers, my nana and my aja, ये दोनों जो है जब कैंप वगैरह में जाते थे नौकरी के लिए तो वहाँ पे खुद कुकिंग करते थे, पर घर पर मैंने उनको कुकिंग करते कभी नहीं देखा.
16: ओके, तो जो सुप्रिया है उन्होंने ये बात एक्सप्लेन की है, ये कहा है कि कुकिंग को जो लड़कियां थी उनके सामने कभी एज अ हॉबी नहीं प्रेजेंट किया गया, एज अ लाइफ स्किल टू बी एंजॉयड नहीं प्रेजेंट किया.
15: एग्जैक्टली, इट वाज प्रेजेंटेड एज अ रिस्पांसिबिलिटी दैट हैज टू बी डन बाय यू.
16: या
15: दैट वाज द रॉन्ग थिंग.
16: रोंग है या गलत है, रोंग है या सही है,
15: हाँ.
16: ये आप हमें बताएं आपके नजरिए से. एंड
15: हाँ.
16: जो बात सुप्रिया बांगा कह रही हैं,
15: हाँ.
16: क्या आप उससे सहमत हैं
15: कि कुकिंग को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया वो तरीका गलत था? क्योंकि महिलाओं को या लड़कियों को कुकिंग से प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम इस बात से किस तरह से उन्हें वो चीज बताई गई कि क्यों कुकिंग करनी आनी चाहिए. तो वो सही है या गलत ये आप हमें बता सकते हैं 800-00 हम 800-00-4866 पर कॉल करते हुए. गुड मॉर्निंग परविंदर, कैसी हो आप? अरे क्या हो गया, मतलब गुड मॉर्निंग ही बोला मैंने और तो जोक तो सुनाया नहीं, क्या हंसने लगी?
4: कौन सा जोक?
15: नहीं आप हंस रही थी ना.
4: नहीं?
16: मुझे अच्छा, तो
15: इनकी आवाज ही ऐसी ही लगता है, लाइक बड़ी जोवियल
4: पर्सनालिटी.
15: वही मैं बोल रही हूँ, बिकॉज़ यू हैव गॉट अ वेरी जोवियल पर्सनालिटी, तो मेरे को ऐसा लगा आप हंस रही थी. अच्छा आप बताइए आपकी क्या राय है?
4: मैं तो जब सो रही होती हूँ तब भी सबको ये लग रहा है कि मैं हंस रही हूँ.
16: तो आप सबके सामने ऐसे सो जाती है? अच्छा चलो टॉपिक पर आ जाते हैं ना.
4: मुझे नहीं लगता ये माइंडसेट चेंज हुआ है अभी भी, क्योंकि लास्ट ईयर की बात है, मुझे किसी ने बोला था कि एक लड़की है उसके लिए लड़का देखना है. तो उन्होंने मतलब क्वालिफिकेशन जॉब ये सब कुछ नहीं बताया, बस ये बोला वो खाना बहुत अच्छा बनाती है. मुझे खाना बनाने से शादी होती तो अभी तक हो जाती. तो नहीं लगता मुझे ऐसा, और मतलब मुझे अभी ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, बट फिर भी बहुत लोग मुझे जज करते हैं कि इसको बोर रोटी बनानी नहीं आती, ये पति को क्या खिलाती होगी.
16: तो अभी भी आप, अभी भी
4: तो मैंने बोला कि गोल हो ना हो मेरा पति खा लेता है जैसी मर्जी रोटी हो.
15: That's important, yeah.
16: Okay. Thank you, Parvinder.
15: Thank you, Parvinder. Thank you so much आपके कॉल के लिए. और एक और एक कॉल आ रहा है. गुड मॉर्निंग एफाज.
12: गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग?
15: एकदम बढ़िया, आप बताओ कैसे हो आप?
12: पे ठीक हूँ। क्या ट्रैफिक का आपका स्टॉप का देता है? ट्रैफिक अच्छा है। मैं बोलूंगा आपके वैसे तो अभी भी मैं ये सब देखता ही चल रहा है कहीं हर जगह पे मोस्ट ऑफ द लाइक इट्स नॉट कि बहुत ज्यादा अभी हम उसको पीछे छोड़ चुके हैं बट आई वुड से कि मेरे पर्सनल लाइफ में तो मैं इसको काफी पीछे छोड़ चुका हूँ। जैसे जब जब मेरी और हिना की शादी हुई थी तो आई वॉज अवेयर कि उसको कुछ नहीं आती है बेसिकली उसने फ्रेंकली बताया था बट मैंने वो देखा था कि पर्सन कैसा है तो बेसिकली बाद में उसको खुद को लगा कि उसे सीखना चाहिए कोई चीजें तो उसे सीखी कोई चीजें मैंने सीखी और फिर हम वैसे फिक करते हैं घर में और मुझे लगता है कि यही सही तरीका है और मैं ऐसे आपको तो पता है मैं आई वुड लाइक टू बी अपफ्रंट बट अभी भी मैं अपने कम्युनिटीज में जहाँ से हम आते हैं मैं ये चीजें नोटिस करता हूँ और बहुत ऐसे कोई लोग अपफ्रंटली बोल भी देते हैं तो आई फील बैड अबाउट इट कि वैसा नहीं होता है कि वो ऐसा नहीं है कि वो फीमेल है तो वो उसका ही काम बन गया है। हाँ ऐसा नहीं होता है क्योंकि आप अगर देखो तो उसके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है क्योंकि वो ऑब्वियस की बात है वो एक दूसरे घर से आपके घर में आ रही है उसको ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें एडजस्ट करनी है फिर बच्चों के लिए भी बोला जाता है कि जैसे मॉम ज्यादा ये होती है फिर कुकिंग के लिए भी ज्यादा वो होती है तो हर चीज का अगर बर्डन उस पर डाल दिया जाएगा और हर चीज उसके लिए ही बना दी जाएगी तो आपका क्या काम है मतलब आई वुड से कि नहीं ये सही नहीं।
15: ओके थैंक यू इरफान
16: थैंक यू सो मच
14: गुड मॉर्निंग कैसे हो आप लोग?
15: एकदम बढ़िया आप कैसी हो?
14: मैं ठीक हूँ। I have been lucky enough कि मैं जब छोटे से बड़ी हो रही थी grew up with जहाँ मेरे आजा और नाना दोनों cooking करते थे more than my नानी or my आजी and I grew into a family ना कि जैसे we were two girls and a boy जितना मुझे खाना पकाना सिखाया गया था उतना मेरे भाई को भी
15: That's nice.
14: उनका था कि चलो यू नो व्हेन यू आर गोइंग टू ग्रो अप एटलीस्ट खुद खाना बनाना आएगा किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा आपको
15: राइट
14: पर आई रेकन इन मेजोरिटी ऑफ द कम्युनिटीज बीट इंडियन हो फिजी इंडियन हो इंडियन ये होता है ना कि लड़कियों को हाँ यू नीड टू नो हाउ टू कुक
15: राइट
14: करना ही होता है एंड आई हैव मैरिड इनटू एन इंडियन फैमिली लाइक इंडिया से आए हुए फैमिली जिससे शादी हुई है एंड आई थिंक आई हैव हैड अ लक रन कि माय फादर इन लॉ कुक्स क्लीन्स एंड ही लव्स डूइंग दैट एंड माय हस्बैंड इज द सेम अभी भी हम जैसे घर आते हैं दो बच्चे तो इफ ही अराइव्स अर्ली ही विल स्टार्ट कुकिंग इफ आई अराइव अर्ली आई विल कुक तो इट्स अ शेयर्ड थिंग तो आई थिंक इट्स इंडिविजुअली हमें ये देखना चाहिए कि इट्स नॉट अ थिंग अबाउट गर्ल्स टू कुक
15: Right.
14: It's about cook to survive, cook to do things where you don't depend on anyone else.
15: Right.
16: Thank you, ma'am.
15: Thank you. So, you. Sorry. बोलिए.
14: So, जितना आप लड़कियों को सिखाते हो, उतना ही लड़कों को सिखा. It's not about कि you know it's a girl that should learn how to cook only and it, that's only because with marriage. अभी भी वो mindset, I think it's a lot in there. Like even in this generation that people. डू टेल गर्ल्स को ना कि आपको सीखना पड़ेगा कल को शादी हो जाएगी फिर क्या करोगे
15: राइट
14: तो आई थिंक इट्स अ माइंड सेट इट्स नॉट ओनली कि आप लड़कियों को सिखाओ लड़कों को भी सिखाओ कल को सो दैट दे कैन हेल्प फ्यूचर यू नो कि शादी हुई तो इट्स अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इट्स नॉट वन वे
16: थैंक यू मैम थैंक यू सो मच आपके कॉल के लिए एंड शेयरिंग योर व्यूज
15: एक फाइनल कॉल हो जाए
16: गुड मॉर्निंग हेलो
17: गुड मॉर्निंग my personal view is the things have changed. I have a daughter. Okay, hum logon cooking nahi sikhaya. And then when she got married, I had to tell the in-laws that she doesn't know how to cook. And the very funny thing is the first week, shaadi ke baad, gobhi mein surwa laga ke de gaye.
16: Okay.
17: Chinese cabbage mein surwa dal di se. That's one thing. And the other thing is there is no mindset because in my ghar mein, my husband cooks and my daughter-in-law doesn't. Like sometimes she cooks and sometimes he cooks. So the mindset is not there anymore.
15: Okay.
16: All right.
15: Thank you. Aapke call ke liye.
16: Thank you. मैसेज आया है
15: जी
16: राम राम भाई विजय भाई एंड पूजा जी ग्रेट प्रोग्राम ऑलवेज लव लिसनिंग टू बोथ ऑफ यू बोथ ऑफ अस लाइक कुकिंग इवन माय बॉयज लव कुकिंग My wife cooks most of the time because she is the better cook. Have a great day. Thanks. Vim Port Waikato se.
15: Thank you so much, Vim. Aapke ko message ke liye cool.
16: Yeah, abhi to kitne mahine ho gaye. Milna bhi nahi hua inse.
15: Yeah, arre bahut deron se planning ho rahi hai, but mil nahi pa rahe hai. But thank you, Vim, for listening at least, for staying with us and, you know, sharing your views too. Abhi thodi der baad hum zarur kuch aur charcha karenge. Kamal ki baat ye hai that our topic was a different aspect of this particular conversation. We said ki kis tarah se ladkiyon ke liye cooking ko present kiya gaya tha ki not as a survival skill or not as a skill,
16: not as a hobby,
15: but it was presented like a responsibility. Wo sahi hai ya galat? But then things changed and everyone started sharing the fact ki ye mindset change hua hai ki ladkiyon ko cooking aani chahiye nahi aur saath mein ki nahi unke ghar mein kya situation, which is also good. So thank you so much for sharing all those things.
16: Ek aur message aaya hai. I'm a terrible cook and my whole family knows it. But my husband has zero problem with it. My in-laws have no problem with it. And my husband actually cooks most of our meals. In fact, my father-in-law has always cooked in his house. Plus, my husband and I are big into fitness. So our food is super clean and simple anyway. The only judgment I ever get comes from the extended female relatives in the family. They never say it directly to my face. But you can feel that subtle vibe. How can you be a woman and not know how to cook?
15: Mm-hmm.
16: Mostly because in their own homes, they do 100% of the cooking. I think mindset are shifting in our core households, but when it comes to extended family, the judgment is definitely still there. You just have to stand strong in what works for your own home.
15: Exactly. Situation pe depend karta hai ye.
0: Hollywood's most wanted.
18: Kundi khad gao. Ya seedha andar aao.
19: Main lao apna A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: फिलहाल समय की ओर देखिए 26 मिनट्स अवे फ्रॉम 9 फॉर नाउ. और इधर हमने आपसे प्रॉमिस किया था आज थर्सडे के दिन बातें करेंगे लॉजिक फाइनेंस के गुरु किंडोला के साथ. सबसे पहले तो वेरी गुड मॉर्निंग गुरु, कैसे हो आप?
1: गुड मॉर्निंग पूजा, मैं बढ़िया, आप बताओ कैसे हो?
0: एकदम बढ़िया. और इधर आज आपका इंतजार चल रहा था तो बातें हम कर रहे थे कि आज किस चीज़ के बारे में कुछ डिटेल्स आप शेयर करना चाहें, किस चीज़ के बारे में लोगों को अपडेट करना चाहें. यू हैव गॉट दिस वेरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन एंड हम उसी पर आज आपसे सवाल ये करना चाहते हैं. एंड इट्स अबाउट कार लोन्स, ट्रक लोन्स. चलो अच्छा, कार लोन्स के बारे में अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछे कि जब किसी की फैमिली बड़ी होती है या कोई ऐसा टाइम आता है लाइफ में दैट दे फील लाइक कि इट्स टाइम टू चेंज आवर कार, बिकॉज लाइफ जी रहे यार, एकदम कॉम्प्रोमाइज कर नहीं जीना चाहिए ना. व्हेन थिंग्स चेंज, व्हेन सिचुएशन चेंज एंड यू फील लाइक यू कैन अफोर्ड इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, तो कार लोन्स वगैरह या ट्रक लोन्स फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस एंड ऑल, हाउ विल इट वर्क आउट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन करंटली, जो अगर हम देखें जो भी एस्पेक्ट्स है इसके?
1: डेफिनेटली पूजा, देखो मार्केट में अभी जो कार लोन्स की इंक्वायरीज हैं और जो परचेजिंग हो रही है, दैट हैज डेफिनेटली हैज टेकन अ बिट ऑफ अ मतलब स्टांस लिया उन्होंने, काफी सेल्स बढ़ रही है. और आई थिंक आई एम पर्सनली आई एम नॉट श्योर कि वो उसका क्या एकदम से रीजन है, बट एक और जो चीज मुझे देखने में मिली है जो जब मैं डील्स कर रहा हूँ, तो जो बेसिकली जो कार्स हैं, जो स्पेशली द ब्रांड न्यू वंस, वो इवन द वन और टू इयर्स ओल्ड कार्स, उनका जो प्राइस है कम्पिटिटिव इतना आ रहा है, जब हम सेल उनका इन्वॉइस देखते हैं, सेल एंड परचेज एग्रीमेंट देखते हैं गाड़ियों का, वेरी कम्पिटिटिव प्राइस बीन कमिंग आउट देयर. और जब वो प्राइस आप कंपेयर करो तो एंड देन डेफिनेटली इट मेक्स सेंस कि ठीक है, अभी फैमिली बड़ी हो रही है और गाड़ी चेंज भी करनी थी, तो वी गेटिंग लॉट ऑफ ट्रेड इन, उसमें उस इन्वॉइस में ट्रेड इन नजर आता है हमें कि वो अपनी ट्रेड इन कर रहे हैं गाड़ी और ये नई वाली गाड़ी ले रहे हैं. और जो उसका ओवरऑल कॉस्ट है, अगर आप फिर हम जाके नॉर्मली ट्रेडमी में भी देखते हैं उस कार को जस्ट टू वेरीफाई, एंड द प्राइसेस आर प्रीटी चीप. एंड इन दो सेंस जो कार लोन्स के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, एंड देन बैंक्स हैव स्टार्टेड ऑफरिंग दैट, मतलब व्हेन आई से बैंक्स, देयर इज अ स्पेशल लेंडर्स हु ओनली सपोर्ट कार लोन्स एंड यू नो दीस पर्सनल लोन्स, दे ऑल्सो स्टार्टेड ऑफरिंग द रेट्स समवेयर स्टार्टिंग फ्रॉम 7.49, व्हिच इज वेरी कॉम्पिटिटिव रेट एज वेल. सो अगेन दैट इज, इट्स नॉट कि वो हर एक को वो रेट मिलेगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द क्लाइंट कि उनकी प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो कैसा है, उनका इनकम पोर्टफोलियो कैसा है,
0: फाइनेंशियल सिचुएशन बेसिकली उनका,
1: फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है उनकी बेसिकली. एंड देन बट अगेन दे आर ऑफरिंग एंड वी आर गेटिंग रियली गुड रेट ऑफर्स फ्रॉम द लेंडर्स, वी ऑब्टेनिंग फ्रॉम देम बेसिकली. थोड़ा पुश हमें भी करना पड़ता है, बट देन इन दैट केस लोन्स आर गेटिंग अप्रूव फॉर मैक्सिमम 7 ईयर्स. कईयों को चाहते हैं कि हमारा जो रीपेमेंट है मतलब स्प्रेड होके रहे, एंड देन जब हमारे पास मौका लगेगा तो हम पे कर देंगे उसको, बट आज की डेट में वी वॉन्ट दैट टू बी स्प्रेड. सो फॉर द न्यू कार्स और इवन 1 ईयर ओल्ड और 2 ईयर्स कार्स ओल्ड, वी आर गेटिंग 7 ईयर्स टर्म, दैट मीन्स दैट लोन कैन बी पेड ऑफ इन 7 ईयर्स. सो ओवरऑल जब आप उसको देखते हैं कि जो इनका रीपेमेंट है गाड़ियों का, दैट इज एक्चुअली गेटिंग स्प्रेड एंड उनका उनकी रीच में आ रहा है, वो बेसिकली रेंज में ही आ रहा है.
0: राइट, तो अगर
1: दैट्स व्हाट हैज बीन हैपनिंग इन द कार लोन स्पेस.
0: Yes, and you know, people don't really know about all these things. जब तक हम इसके बारे में जानकारियाँ उन तक पहुँचाते नहीं या फिर जब तक उनकी नीड नहीं है, एंड दे गो एंड डू देयर रिसर्च. बट इन दिस पर्टिकुलर केस थिंग्स आर वेरी ईजी. अगर कोई अपने लिए एक गाड़ी का लोन लेना चाहता है, अपनी गाड़ी अपग्रेड करना चाहता है, एंड दे आर फीलिंग लाइक कि कहाँ जाए, क्या करे, किससे बात करे, सो हाउ डू दे गेट इन टच विद यू टू मेक थिंग्स ईजियर फॉर देमसेल्व्स?
1: सिंपल लॉजिक लगाना है पूजा, लॉजिक फाइनेंस. आप यू कैन सर्च मी ऑन गूगल लॉजिक फाइनेंस एंड यू विल गेट माय डिटेल्स. अगर आपको मेरे को 0800 नंबर पे फ्री नंबर है उस पर कॉल करना है, तो विच इज 0800 लॉजिक जी. जब आप टाइप करते हो दैट कम्स टू मी, विच इज 0800 564 0800 564 0800 564 0800 564 0800 564 is the number to get in touch with me, and then we'll definitely get you in your new ride. These car loans, we can get it approved within a same day, and we can settle on the same day as well.
0: Okay.
1: But depending on the settlement has to be done, we need to do everything before 3 p.m.
0: ओके, थैंक यू सो मच गुरु फॉर ऑल दैट इन्फॉर्मेशन. नेक्स्ट वीक थर्सडे को और भी जानकारी आपसे जरूर हम जुटाने की कोशिश करेंगे इन अनदर एस्पेक्ट, बट राइट नाउ आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. हैव अ वंडरफुल थर्सडे.
1: थैंक यू, सेम टू यू पूजा. चीज़, बाय.
0: बाय. सो याद रहे लॉजिक फाइनेंस के गुरु कंडोला, जिनसे हम नेक्स्ट वीक थर्सडे को और बातें करेंगे. एंड इफ यू गॉट एनी सिचुएशन इन रिगार्ड्स विद योर लोन्स, योर मॉर्गेजेस, ट्रक लोन या कार लोन, तो आप डेफिनेटली इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं. दिस इज द रश ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
2: लेडीज एंड जेंटलमैन,

0: Attention everyone, हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
1: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
0: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
1: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
0: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बूटरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं।
1: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
0: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
2: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर।
3: Accurate traffic.
4: Seville's Academy. Hairdressing, makeup and barbering courses.
5: Cloudy today. Showers on and off. 18 now high. Into the city at the moment. Southern Motorway 56 minutes. Manukau to the city. We're slow from Manurewa. Heavy on and off. Manukau to the city. Southwestern. Still a bit heavy northbound through Whitty. Northwestern 46 minutes in from Massey. Heavy from Upper Harbour to Grey Lynn. Then slow to the city. Northern 35 from Constellation. Heavy Greville to the bridge and back at Silverdale.
4: Looking for a creative career? Seville's Academy. 0800 Seville's or Seville's.com.
6: Choice up ki hai at Vinga Motors, selected nay Omuda or Jeku models per paye 3.9% finance, ya $2,000 cashback. Premium design, technology or zabardast value. Super hybrid.

0: criteria, fees, T's and C's apply.
1: Dinner is sorted with fresh deals at New World North Island. Get skinless chicken thigh fillets, $17.99 per kilo. And Pam's carrots or brown onions, select size, $3.49 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
2: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, e-waste हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। oaklandcouncil.govt.nz/whereitgoes पे। तमाकी तुरुकी, All Together Auckland.
3: 19 साल बाद शिवम इज बैक, अ मैन हॉन्टेड बाय ग्रीफ एंड लॉस, सर्चिंग फॉर अ पर्पस इन लाइफ. आवारापन 2, स्टारिंग इमरान हाशमी एंड दिशा पाटनी.
4: मौत मेरा उससे एक पुराना रिश्ता है, एक कर्ज है जो मुझे चुकाना है.
3: आवारापन 2, रिलीजिंग इन सिनेमास ऑन ऑगस्ट 14th. Distribution partner Forum Films. Rating TBC.
5: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living. Hum. Accurate traffic.
2: Continental Cars Audi Q7 run out.
3: A high of 18, cloudy with showers on and off today. Citybound on motorways still quite heavy. Southern 56 minutes, Manukau to town. Slow from Manurewa, heavy a lot of the way, Manukau to Remuera. Southwestern, heavy northbound through Wiri. Northwestern, 40 minutes, Massey to town. We're heavy from Upper Harbour, easing at Greylin. Northern, 30 from Constellation, heavy at Silverdale and still heavy gravel to the bridge.
2: Save up to $40,000 on the Audi Q7 range at Continental Cars Audi. T's and C's apply.
4: Professional Financials has thought up. लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
5: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
4: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यहीं अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
5: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 फॉर सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई
6: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए शान फूड्स असली स्वाद हर घर के लिए
7: This winter, with all the dreaded lurgies about, NZ Blood needs blood and plasma donors more than ever. So, if you're able to, get your blood buddies together and book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood, give plasma, save lives.
8: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
9: Bunnings has great value nail to help you beat winter. Grab 30 seconds 1-litre mould off just $7.61. Or damp-free 2-pack disposable moisture absorbers only $5.98. Head in store or online for even more great value. Bunnings
0: Check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
10: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 9. A warning that foreign actors are not the only threat to New Zealand's security. The spy agency says it is the most challenging global threat environment in recent times, but Director General Andrew Hampton says domestic violent extremists are being heavily influenced here.
11: Anti-Semitism, Islamophobia, as that language becomes more normal, the harder it is for my agency to identify the small number of people who actually have the intent and capability to undertake an attack within all that noise.
10: New housing data shows roughly 1 in 5 Auckland resales are making a loss. Cotalities at Calvin Davidson says nearly 21% of properties sold for less than their original price in the 3 months to June.
12: There's still a lot of new property supply coming through in terms of construction, so that's keeping a lid on values and giving the power to buyers.
10: Caroline Levitt is stepping down as White House press sec. Donald Trump posted on Truth Social that one of his most trusted aides will be leaving at the end of August to spend time with her family. She has a 2-year-old son and a nearly 4-month-old daughter. Levitt will stay within the Trump sphere, though, acting as an outside advisor. In sport, Ryan Fox is excited to get back to work on the PGA Tour. It's been almost a month since the Kiwi golfer won the Open Championship Major. Fox did plenty of celebrating, and he's looking forward to the first FedEx Cup event in Memphis.
13: It's kind of nice to just get out and play, and at least golf feels kind of normal at the moment, so we'll see how that goes over the next couple of days.
10: Fox tees off at 5:25 tomorrow morning. To rugby with Shift 4, week 3 of the NPC kicks off after 7 tonight with Wellington hosting North Harbour.
0: Sports News, brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
14: World's best, hamari good brands nahi hai.
0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
15: सुपर सिटी ऑकलैंड में आज का वेदर याद रहे ज्यादातर क्लाउडी रहेगा। अभी भी कई इलाकों में मॉर्निंग फॉग जो है ये आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि बाद में चलकर तो मौसम साफ होने का अनुमान लगाया जा रहा है, पर आज रह रहकर थोड़ी बहुत बारिश जो है ये भी होने की संभावना है। सनसेट आज का होगा 5:46 PM पर। ओवरनाइट टेम्परेचर इज 10 डिग्रीज, हाई ऑफ 18 एक्सपेक्टेड है आज बाद में चलकर, जबकि करंट टेम्परेचर 13.2 डिग्रीज है।
0: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा,
1: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस। फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरी विन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून एंड हैरिंगटन लिविंग एट बेजरस मनको, इंग्लिश हेरिटेज इंस्पायर्ड फर्नीचर फॉर एवरीडे लग्जरी लिविंग। व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या बकते हो,
16: अरे कहना क्या चाहते हो।
15: हेलो क्योरा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं आज का हमारा द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा एंड दिस इज व्हाट्स गोइंग ऑन, जहां पर थोड़ी देर बाद आज कम्युनिटी में हमारे हो रहे कुछ इवेंट्स पर भी चर्चा करेंगे, कैसे आप उनका हिस्सा बन सकते हैं इस पर आपको डिटेल्स जो है ये हम जरूर प्रोवाइड करेंगे। बट ऑन दी अदर हैंड आज का डेली राउंड अप ये भी इसी घंटे जो है रहेगा खास आपके लिए। बट राइट नाउ क्या बकते हो, आज की क्या बकते हो स्टोरी अबाउट बर्ड्स।
17: हाँ, चिड़ियों के बारे में ये बात तो मुझे पता नहीं थी। कैसा रहेगा अगर यू नो what if you could tell someone was already in a relationship simply by listening to them speak।
15: हाँ, वैसे humans के मामले में ये तो possible नहीं है, बड़ा अच्छा झूठ बोल लेते कभी कभी कुछ कुछ लोग, तो आप नहीं figure out कर पाओगे। So they are identifications in regards with the things they wear, जिसके basis पर पता चलता है कि वो relationship में है, committed है या नहीं है। But as I said, they are able to lie, which is why people can't predict or know. But in birds matters, ये possible है।
17: Yes, क्योंकि कहते हैं कि जो male pied flycatchers हैं, वो जब किसी female bird के साथ होते हैं और उसके बाद if they move on to another territory जहाँ पर एक और female की वो तलाश करते हैं, तो जिस तरह से वो गाना गाते हैं वो चेंज करते
15: ट्यून उनका बदल जाता है।
17: हाँ, उनका गाना बदल जाता है, गाना छोटा हो जाता है और जो syllables है उसको कम रिपीट करते हैं। और साइंटिस्ट को ये बात पता चल गई। जब साइंटिस्ट ने गाने बजाए फ्रॉम मेल बर्ड्स हु हैड पार्टनर्स टू फीमेल पाइड फ्लाई कैचर्स, द फीमेल्स रेस्पोंडेड डिफरेंटली टू सॉन्ग्स फ्रॉम बैचलर बर्ड्स, और वो जिनका किसी के साथ पहले रिश्ता हो चुका था,
15: राइट,
17: तो डिफरेंटली उन्होंने रिएक्ट किया।
15: हाँ, तो म्यूजिक किस तरह का वो जो है ये प्रोड्यूस करते हैं उस बेसिस पर ये पता चल जाता है।
17: हाँ, इन शॉर्ट व्हेन द फीमेल न्यू द सॉन्ग वाज कमिंग फ्रॉम अ बर्ड जो ऑलरेडी पेयर हो चुके थे, वो डिफरेंटली बिहेव करते थे। और इफ इट केम फ्रॉम अ बर्ड व्हिच वाज बैचलर वाज नॉट पेयर्ड, तो फीमेल बर्ड्स का रिएक्शन डिफरेंट
15: होता है, राइट। सो दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। आई मीन नेचर और एनिमल्स, यू नो, ये एक सर्टेन वे से इनको बनाया गया है और उनके बारे में जब भी कुछ सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं तो काफी फैसिनेटिंग होता है। एंड वी होप दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन वाज इक्वली फैसिनेटिंग फॉर यू।
17: हाँ, तो ये तो इन्फॉर्मेशन तो हो गया। बाय द वे, अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो तकरीबन 20 मिनट हो गए ना जो हम बोर्डिंग कॉल है
15: ये बचकर। एग्जैक्टली, ये बच चुका है बोर्डिंग कॉल ऑलरेडी। कुछ लोगों ने ध्यान दिया लेकिन गलती ये कर दी कि उन्होंने BC जो है ये लिखकर भेजा हमारे पास।
17: नहीं, उनको लिंक चाहिए होगा ना।
15: हाँ, नहीं, मैं वो मुझे पता है, पर कुछ लोगों ने नहीं किया ना।
17: हाँ,
15: वो चीज है। तो अगर आपने सुना है, लिंक नहीं मिला है आपको लेकिन बोर्डिंग कॉल आपने सुना कि कितने बजे प्ले हुआ, तो BC यानी कि बोर्डिंग कॉल, इसका शॉर्ट फॉर्म आप लिखोगे, अपना नाम लिखोगे, आपके पास उस पर्टिकुलर पेज का जो लिंक है ये आ जाएगा, जो जैसे ही लिंक पर आप क्लिक करोगे इट विल टेक यू डायरेक्टली टू द एंट्री पेज और वहां पर लिखा होगा एंटर कोड नाउ। तो जैसे ही ये आप देखोगे एंटर कोड नाउ लिखा हुआ है, वहां पर आपको जाकर टाइप करना होगा बोर्ड नाउ BORD स्पेस NOW और फिर उसे सबमिट कर दे। दैट्स हाउ यू विल बी पार्ट ऑफ द ड्रॉ, जहां पर आप भी जीत सकते हैं हम बोर्डिंग कॉल में 2 रिटर्न एयर टिकट्स टू वनवातु विद सोलमन एयरलाइंस प्लस $1,000 स्पेंडिंग मनी।
17: तो ये शानदार इनाम जीतने का मौका अभी भी टाइम है आपके पास. इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट बीसी लिखकर 5599 पर भेजिए, लिंक आपको मिलेगा. और जस्ट सिंपली विजिट रोवा अगर आपके पास लिंक है एंड एंटर सबमिट बोर्ड नाउ टाइप करके सबमिट जो है ये आप करते हैं. और भी बहुत सारे इनाम हम आपको दे रहे हैं ना.
15: बिल्कुल,
17: रक्षाबंधन के मौके पर हमारा जो फेसबुक पेज कॉम्पिटिशन ये भी चल रहा है.
15: यस, और इसमें कैसे पार्ट ले सकते हैं आप ये हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे. प्लस अगर आपको न्यूजीलैंड फैशन वीक जो है ये विटनेस करना है, इसके लिए भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप पासेस जीत सके. लेकिन उसके लिए क्या करना है जानने के लिए सुनते रहिए.

0: going on?
1: What's up?
0: What's up, Auckland?
2: तो चलिए जान लेते हैं क्या कुछ हो रहा है हमारे आसपास, हमारी कम्युनिटी में, और कैसे आप इन चीजों का हिस्सा जो है ये बन सकते हैं. सबसे पहले न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन आपको इनवाइट कर रहे हैं टू बी पार्ट ऑफ द फोर्थ न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट जो 23rd and 22nd of August को रहेगा बकनहेड स्काउट्स हॉल पर. और यहाँ पर प्लेयर्स ऑफ ऑल डिफरेंट स्किल लेवल्स जो है आपको वेलकम किया जा रहा है टू पार्टिसिपेट. अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं फॉर मोर डिटेल्स आप कॉल कर सकते हैं न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पंकज मोंगा को 02109085067 पर.
3: साथ ही में याद रखें कि एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम जो है कि होने जा रहा है और ये है भजन जेम्स लाइव. न्यूजीलैंड कल्चरल ट्रस्ट का ये बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन जो साउथ ऑकलैंड ड्राइविंग स्कूल लिमिटेड या ड्राइविंग साउथ ऑकलैंड ड्राइविंग लिमिटेड आपके लिए लेकर आ रहे हैं रवितेश देव और उनके साथ एक बहुत ही पावरफुल लाइव बैंड आपके लिए प्रेजेंट करने जा रहे हैं. एक बहुत ही खूबसूरत डिवोशनल म्यूजिक की शाम, फ्यूजन भजन, कीर्तन, ये सब कुछ आप इंजॉय कर सकेंगे. नेक्स्ट वीक सैटरडे को ये रहेगा 7 PM से वैदिक सेंटर 32 ग्लासगो पापा टोयोटो में. टिकट सिर्फ $30 है और 12 साल से या 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एंट्री एब्सोल्युटली फ्री. स्नैक्स और कावा जो है ये अवेलेबल रहेगा उस रात आपके लिए. वहां पर टिकट्स आप ले सकते हैं जेस फ्रेश मार्ट पापा टोयोटोय, वैली फ्रेश पापा टोयोटोय और शिव प्रसाद एंड सन्स कैल्स्टन से. ऑनलाइन टिकट्स eventbrite.co.nz विजिट करते हुए आप ले सकते हैं.
2: और साथ ही साथ आपको ये भी याद दिला दें कि ग्रैंड भजन नाइट ये होने जा रहा है हनुमान विस्तार पर और इट विल बी कंटिन्यूड फ्रॉम वेयर इट वाज लेफ्ट लास्ट ईयर. वहाँ से ये कंटिन्यू होगा. पिछले साल भी ये दोनों कलाकार आए थे परफॉर्म करने के लिए, अविनेश बलराम जो ऑस्ट्रेलिया से आए हैं और अशोक या जूनियर अशोक जो न्यू USA से आए हैं. ये जो पर्टिकुलर ग्रैंड भजन नाइट है ये होने जा रहा है राधे राधे बॉयज द्वारा और ये एक ऐसा भजन नाइट है जिसका हिस्सा आप श्योरली बन सकते हैं वैदिक सेंटर पापा टोयोटोय पहुँचते हुए इसी फ्राइडे को, यानी कि कल रात ये होने जा रहा है. और कल रात अगर आपको इसका हिस्सा बनना है तो इसके लिए टिकट्स आप ज़रूर ग्रैब कर लें. जेस फ्रेश मार्ट पापा टोयोटोय आप जा सकते हैं टिकट्स लेने के लिए. और ये याद दिला दें वैदिक सेंटर पापा टोयोटोय में ये रहेगा कल रात को.
3: साथ ही में ऑकलैंड भक्ति सत्संग आपके लिए लेकर आ रहे हैं ग्रैंड त्रिकोणा कीर्तन नाइट जिसमें कलाकार रहेंगे सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अचुदन नायर, लोटो का फिजी के अश्विन कुमार अप्पा और ऑकलैंड न्यूजीलैंड के नितिन गाउंडर. ये तीन कलाकार जो हैं ये एक साथ स्टेज पर परफॉर्म करने वाले हैं नेक्स्ट वीक फ्राइडे को 21st August को रात 7 बजे से वैदिक सेंटर 32 ग्लासगो पापा टोयोटोय में. और टिकट्स जो है सिर्फ $20 है जो आप ले सकते हैं जेस फ्रेश मार्ट पापा टोयोटोय से.
2: तो याद रहे आपके आसपास आपकी कम्युनिटी में भी अगर कुछ चीज़ें हो रही हैं एंड यूड लाइक अस टू टॉक अबाउट इट तो आप हमारे पास डिटेल्स ईमेल कर सकते हैं buzz@mfm.com पर, buzz@mfm.com पर. थर्सडे 13th August की सुबह आप सभी के नाम हम कर रहे हैं और फिलहाल 19 मिनट हो रहे हैं 9 बजकर. एक ज़रूरी बात आपको याद दिला दें इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जब जिंदगी मुश्किल लगने लगे तो आपको अकेले इसका सामना करने की ज़रूरत नहीं है. पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज पूरे न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. इनकी एक्सपीरियंस टीम आपकी लैंग्वेज और कल्चर को समझती है ताकि आपको सही समय पर सही सपोर्ट मिल सके. अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जिसका मकसद है मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने को बढ़ावा देना. अगर आपको या आपके किसी अपने को मदद की ज़रूरत है तो एशियन हेल्पलाइन पर 0800-862-342 पर फ्री और कॉन्फिडेंशियल सपोर्ट के लिए आप कॉल करें. याद रहे 0800-862-342 या फिर asianfamilyservices.nz, asianfamilyservices.nz विजिट कर सकते हैं.

0: 31st. Credit criteria, fees, T's and C's apply.
1: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने हम
2: तेरी बेस है फाड़ू मेरी हाइज के लिए हम
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja
0: brought to you by Fortune with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzara Smugco, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
3: अभी 24 मिनट हो रहे हैं 9 बजकर और कल हमने आपको तो बताया ही है न्यूजीलैंड फैशन वीक के बारे में. नेक्स्ट वीक बहुत कुछ होने जा रहा है और नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को रात 8:30 बजे से क्वींस वोफ पर शेड 10 जो है ऑन की स्ट्रीट इट्स गोइंग टू बी अ हाइव ऑफ एक्टिविटीज क्योंकि ये एक रात होगी डेडिकेटेड टू इंडियन फैशन कल्चर और क्रिएटिविटी. एक बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी आपके लिए प्रेजेंट की जा रही है जहां आप इंडियन फैशन को न्यूजीलैंड फैशन वीक में देख सकेंगे और इसे टाइटल दिया गया है खादी बियॉन्ड बॉर्डर्स. 4 लीडिंग इंडियन डिजाइनर्स जो हैं ये ऑकलैंड आ रहे हैं और जहां वो शोकेस करेंगे ट्रेडिशनल जो हाथों से बनाया जाता है हैंड वोवन खादी फैब्रिक और किस तरह से इसको री इमेजिन करके रिक्रिएट करके कॉन्टेम्प्रेरी फैशन में प्रेजेंट किया जा रहा है. ये एक बहुत ही मेजर इंटरनेशनल गेम चेंजर कहा जा रहा है फैशन वर्ल्ड में. और इस प्रोग्राम में नेक्स्ट वीक ट्यूजडे को आ रहे हैं राजेश प्रताप सिंह वन ऑफ इंडियाज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डिजाइनर्स जिन्हें जाना जाता है उनके बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेलरिंग और मॉडर्न टेक के लिए और खासतौर पर ट्रेडिशनल क्राफ्ट. तो ये सिर्फ एक शो नहीं है यहाँ पर जो कनेक्शन है इंडिया और न्यूजीलैंड का ये भी सेलिब्रेट किया जाएगा थ्रू फैशन. और 4 डिस्टिंक्ट डिज़ाइनर्स जो है ये डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं कि खादी कैसे बहुत ही लग्जेरियस हो सकता है कॉन्टेम्प्रेरी हो सकता है एक्सपेरिमेंटल हो सकता है एंड सीरियसली कूल भी हो सकता है.
4: तो अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं और न्यूजीलैंड फैशन वीक में आप भी सेलिब्रेट करना चाहते हैं खादी इसको तो इसके लिए हमारे पास पासेस हैं आपको देने के लिए जीत सकते हैं आप. लेकिन अगर आप इसे अटेंड करना चाहते हैं विद अ ब्रिक ग्रुप तो आप याद रहे अपना जो टिकट है ये nzfashionweek.com/tickets/khadi nzfashionweek.com/tickets/khadi जो है ये विजिट करें और यहाँ से टिकट्स ग्रैब कर ले. बट पासेस जीतने के लिए अब आपके पास टाइम है. खादी लिखे सबसे पहले KHADI और आप हमारे पास अपना नाम जो है ये लिखकर सेंड कर सकते हैं 5599 पर. इट्स दैट सिंपल. सबसे पहले खादी फिर आपका नाम और 5599 पर सेंड कर दे. बदले में आपको मिलेगा मौका टू विन डबल पासेस टू द न्यूजीलैंड फैशन वीक हैपनिंग ऑन ट्यूसडे 18th of August जहां पर अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप भी अपने नाम कर सकते हैं ये पासेस और न्यूजीलैंड फैशन वीक में खादी बियॉन्ड बॉर्डर्स इसे सेलिब्रेट कर सकते हैं.
1: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड
5: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ
6: मैं लाऊं अपना ए गेम
1: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: तो गजेंद्र वर्मा और साथ में इनके साथियों की आवाजों में आपके लिए आज का ये चैट बस्टर हम पेश कर रहे थे ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। फिलहाल चलिए, आपको हमने कहा था ना कि बहुत से मौके आपको मिलते रहेंगे हमारे साथ विजेता बनने की। इधर कई लोगों ने अपने अपने नाम के साथ हमारे पास खादी ये लिखकर भेजा है और न्यूजीलैंड फैशन वीक इसके तहत इंट्रोड्यूस हो रहा है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम खादी। ये एक ऐसा मटीरियल है विच इज़ एसोसिएटेड विद इंडिया एंड ऑफकोर्स इसे यहाँ पर इस साल न्यूजीलैंड फैशन वीक में सेलिब्रेट किया जा रहा है। एन अपॉर्चुनिटी है आपके पास इसे विटनेस करने का। अगर आप पासेस जो है ये लेना चाहते हैं न्यूजीलैंड फैशन वीक के लिए तो nzfashionweek.com/tickets/khadi ये आप विजिट करें। एंड ऑन द अदर हैंड पासेस जीतने के लिए खादी लिखकर KHADI लिखे, फिर अपना नाम लिखे और 5599 पर हमारे पास इसे सेंड कर दें। आपके पास अनदर 2 मिनट्स का टाइम है जिसके बाद हम कॉम्पिटिशन रैप अप कर देंगे।
1: और इस दौरान अपने जो टेक्स्ट मैसेजेस है ये 5599 पर आप भेज सकते हैं। यही नहीं, आपको रक्षाबंधन के मौके पर भी शानदार इनाम जीतने का मौका हम दे रहे हैं। हमारा फेसबुक पेज कंपटीशन जो है बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा है और इस बार आपको क्या करना है कि कोई भी एक चीज़ जो आप भाई बहनों के लिए बहुत ही स्पेशल हैं, यू नो, फ्रॉम अ टी शर्ट टू ए ओल्ड कैमरा या फिर कोई ड्रेस जो आपके भाई ने शायद आपको तोहफा दिया था या एक शर्ट जो आपकी बहन ने तोहफा दिया था जो आपने बहुत ही संजो कर रखा है क्योंकि इट कैरी सो मच ऑफ इमोशनल वैल्यू, आप उसकी एक फ़ोटो जो है ये शेयर करें। विजिट आवर फेसबुक पेज और जो रक्षाबंधन पोस्ट फीचर्ड फोल्डर में आपको मिलेगा उसके कमेंट सेक्शन में उस चीज़ की फ़ोटो आप शेयर करें। उसकी कहानी जो है 2-3 लाइनों में ही आप बता सकते हैं एंड टैग योर सिबलिंग, आपके भाई या बहन को आप उसमें टैग कर दें and that's it, you become part of the draw.
0: Absolutely. Abhi tak agar dekha jaye bahut se logon ne apni entries jo hai ye bheji hain but sahi tarike se sirf Sunil Raj ji jo hai inki entry aayi hai. Ek to inhone ek object ki photo share ki hai which is a watch aur fir inhone ye likha hua hai ki ye watch unke liye itna special kyu hai aur of course साथ में अपनी बहन सानवी इनको उन्होंने टैग भी किया है। तो थैंक यू सो मच सुनील जी आपके एंट्री के लिए। याद रहे दीज आर द 3 कंडीशंस अगर आप हमारे साथ रक्षाबंधन कंपटीशन में पार्ट लेना चाहते हैं दिस ईयर। फेसबुक पेज विजिट करें, फीचर्ड फोल्डर में आपको मिलेगा एक पोस्ट अ लाइफ टाइम इन वन ऑब्जेक्ट और इसी पोस्ट को आपको लाइक करना है। कमेंट सेक्शन में किसी एक ऑब्जेक्ट की फ़ोटो डालनी है जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया आपको कि कैसे कैसे ऑब्जेक्ट्स की फ़ोटो ये हो सकती है और उस फोटो के साथ कैप्शन में 2-3 लाइन में आपको बताना है कि क्यों ये ऑब्जेक्ट आपके लिए इतना स्पेशल है और अपने भाई या बहन को टैग करना है। दीज आर द 3 कंडीशंस दैट यू हैव टू मीट एंड वंस यू डू दैट यू विल बी पार्ट ऑफ दिस ड्रॉ जहां पर आप रक्षाबंधन के इस खास मौके पर हम पर जीत सकते हैं हमारे साथ $300 कैश। तो कंपटीशन आपके लिए जारी है, सोशल मीडिया पर फेसबुक पर जाकर जरूर आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 23 मिनट्स अवे फ्रॉम 10 फॉर नाउ और थोड़ी देर बाद आपके लिए लेकर आएंगे आज का हमारा डेली राउंड अप।
2: Mornings made better.
3: Two fryanda, 4 toast, butter, jam, and a special chai.
2: The breakfast show with Vijay and Pooja.
4: Keep calm because Punjabi swag is on.

0: Streaming on Rover.
1: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.
4: After payday sale at Freedom won't last long. Get 25% off site-wide, online only. Shop now. Sale ends Sunday, only at Freedom.
5: आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं. पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को उनकी भाषा में मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है. अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है. कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800 862 342 या विजिट करें asianfamilyservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट.
6: You filled the pinata before I sealed it, right?
7: No, you did.
6: I thought you did.
8: Get groceries in as little as 60 minutes with New World Express Delivery. T's and C's and exclusions apply. See online for details.
9: South Auckland Driving Limited presents Bhajan Gems, live concert by Ravitesh Dev, devotional fusion bhajans or kirtans with live band. Saturday, 22nd August, 7 p.m. Vedic Center, Papatoi. Tickets sirf $30. Free entry for children under 5. Sare proceeds, Gift of Life, Fiji ko donate honge. Providing free heart surgeries. Powered by Events Auckland, Maki and Party Hire. Tickets available from Eventbrite, Jay's Fresh and Valley Fresh, Papatoi. Or Shiv Prasad, Kelston.
10: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है.
11: हाँ, अच्छा
10: बताओ तुम्हारा फोकस. फोकस साडा कुछ नहीं.
11: मिसेस सिंह.
12: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
13: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु. कॉल 0928130 50 और विजिट focuskitchens.co.nz.
14: There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.nz. Terms and conditions apply.
15: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
16: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
17: What's going on?
18: 19 मिनट रह गए हैं 10 बजने में और डेली राउंडअप में सबसे पहली खबर जो है इसमें ये बात सामने आई है कि ऑकलैंड के कुछ एम्बुलेंस पेशेंट्स हैं, इनको फांगरे अस्पताल ले जाना पड़ रहा है बिकॉज नोचो हॉस्पिटल इज टू फुल टू टेक देम. नोचो हॉस्पिटल में जगह नहीं है.
19: दैट्स व्हाई दे गोइंग टू फांगरे.
18: यस, और ऑलरेडी कहते हैं कि फांगरे अस्पताल जो है ये छोटा है बाकी के मिलान में. अभी ही वो स्ट्रगल कर रहा है विद एक्सट्रीमली हाई पेशेंट नंबर्स दिस विंटर. रेडियो न्यूजीलैंड की एक रिपोर्ट जो है ये आई है जिसमें कहा गया है कि डाइवर्जन्स वर टेकिंग प्लेस ऑन ट्यूसडे नाइट विच वॉज ऑल्सो वेरी बिजी एट फांगरेज एमरजेंसी डिपार्टमेंट. डाइवर्जन्स जो है पिछले हफ्ते भी हो रहे थे. जो कोस्ट कोस्ट हेल्थ केयर ग्रुप के जीपी हैं टिम मेलोय, जिनका एक क्लिनिक जो है ऑकलैंड में है, मोस्ट नॉर्दर्न टाउन वेल्सफोर्ड जो है जस्ट शाय ऑफ नॉर्थलैंड बॉर्डर, उनको एक खत जो है ये भेजा गया बाय सेंट जॉन एम्बुलेंस लास्ट वीक टेलिंग हिम एनी पेशेंट फ्रॉम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रोडनी डिस्ट्रिक्ट हु नीडेड टू गो टू एन एमरजेंसी डिपार्टमेंट वुड बी टेकन टू फांगरे. Normally, वो नोचो अस्पताल आते थे. That was due to huge demand on the services at नोचो हॉस्पिटल, उन्होंने कहा. ऐसा समझा जाता है. फांगरे वॉज ऑलरेडी अंडर सीरियस प्रेशर इट सेल्फ. इट इज अबाउट हाफ द साइज ऑफ नॉर्थ शोर हॉस्पिटल. हेल्थ न्यूजीलैंड के डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन ब्रेड हिली ने बताया कि इट वॉज अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ एम्बुलेंसेज दैट वे एक्चुअली डाइवर्टेड टू फांगरे. ये प्रैक्टिस जो है अनयूजुअल नहीं है उन्होंने कहा. एंड यूज द टाइम्स टू मैनेज डिमांड एंड एंश्योर पेशेंट्स कैन रिसीव केयर एज क्विकली एज पॉसिबल.
2: दूसरी ओर आरएनजेड पर एक और एक रिपोर्ट जो है ये आई है और दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट इज अबाउट अ ग्रुप ऑफ न्यूजीलैंड बस ड्राइवर्स जो कि सिडनी मूव हुए आफ्टर दे वर प्रॉमिस्ड गुड पे एंड अ बीच साइड लाइफस्टाइल. लेकिन उनके बारे में ये बताया जा रहा है आफ्टर दे हैव बीन देयर दे हैव बीन लेफ्ट इन पुअर अकोमोडेशन और काफ़ी अगर पोटेंशियली देखा जाए तो दे विल फेस क्वाइट हेफ्टी कॉस्ट्स अगर उनको घर वापस आना हुआ न्यूजीलैंड. तो कहा गया है न्यू साउथ वेल्स ट्रांसपोर्ट यूनियन ने कि 17 कीवी ड्राइवर्स करंटली इस सिचुएशन में है विद एज मैनी एज 30 एक्सपेक्टेड टू बी रिक्रूटेड अंडर द सेम स्कीम. यूनियन ने कहा है कि ड्राइवर्स वर हिट विद अ $10,000 बॉन्ड या $10,000 वर्थ ऑफ बॉन्ड शॉर्टली बिफोर स्टार्टिंग वर्क. After some had already resigned from jobs in New Zealand और अपनी belongings को बेच बाज कर ये यहाँ से New South Wales जो है ये गए थे. यूनियन ने ये भी कहा है कि taking bus company Kelis to court arguing कि arrangements जो है वो काफ़ी unlawful थे और potentially amount हुआ है या फिर देखा जाए तो potentially exploitation जो है ये face किया गया है by these Kiwi drivers और that is what they are fighting the case on. कंपनी ने सारे के सारे एलिगेशंस को रिजेक्ट करते हुए कहा है कि वर्कर्स वर गिवन द कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स इंक्लूडिंग रिपेमेंट ऑब्लिगेशंस बिफोर उन्होंने रिलोकेट जो है ये किया. यूनियन ने कहा है कि कुछ ड्राइवर्स ऑलरेडी कंसिडर कर रहे हैं न्यूजीलैंड वापस जाने की वाइल अदर्स हैव रिपोर्टेडली बीन लिविंग इन क्रैम्ड अकोमोडेशन और फिलहाल सिडनी के हाई हाउसिंग कॉस्ट की वजह से स्ट्रगल का सामना जो है ये कर रहे हैं.
18: गंभीर बारिश का फोकस जो है ये किया गया है फॉर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ आइलैंड और बे ऑफ प्लेंटी में कई जगहों पर लगातार गंभीर बारिश और बाढ़ चढ़ने की पॉसिबिलिटी भी है. मेट सर्विस ने बे ऑफ प्लेंटी का जो इलाका है वेस्ट ऑफ कवेराउ इसको अपग्रेड किया है टू एन ऑरेंज हैवी रेन वार्निंग आज सुबह क्योंकि एक स्लो मूविंग फ्रंट जो है ये ईस्ट की ओर जा रहा है. अनदर 60-80 मिलीमीटर्स ऑफ रेनफॉल जो है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है उस इलाके में. बाय फ्लिंटी सिविल डिफेंस ने आज सुबह ये चेतावनी जो है इलाके के लोगों के साथ शेयर की है.
19: Let's go. Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your

0: ब्रॉट टू यू बाय 0800 रचना। इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन। दो बातें।
1: पहली बात आज की, कहते हैं कि कभी अगर गुब्बारा आपके मुंह पर फट जाए तो गुस्सा ना करें।
2: अच्छा, वो क्यों?
1: कभी कभी ऐसा होता है ना, फुलाते वक्त
2: फूट जाता है।
1: हाँ, तो गुस्सा ना करें क्योंकि वो आप ही हैं जिसने उसे बढ़ाकर उसकी औकात से बड़ा कर दिया है।
2: अच्छा, वेल, असल जिंदगी में रिश्तों के मामले में, लोगों के मामले में भी इसे हम अप्लाई कर सकते हैं ना।
1: आप सोच सकते हैं क्या करना
2: है। है, I know you're trying not to say it, but it is possible.
1: और आज की दूसरी बात
2: जी,
1: एक दिन कहानी बनकर हम सब रह जाएंगे।
2: बिल्कुल,
1: कोशिश करें कि कहानी अच्छी हो।
2: Absolutely. तो चलिए, इन्हीं बातों के साथ आपसे चाहेंगे इजाजत जाने की। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। आज आप सभी के साथ इस समय के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट आज तो बहुत ही बढ़िया इंटरेक्शन जो है ये आपके साथ हुआ, रिकॉर्ड नंबर ऑफ मैसेजेस जो है ये हमारे पास आए आज, उसके लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, हैव लॉट्स ऑफ फन, एंजॉय योर थर्सडे। कल मिलते हैं ठीक सुबह 6 बजे पर।

0: Factor.
1: Ladies and gentlemen, dil thaam ke baithiye kyunki aa rahi hai
2: My Time with Kashika.
3: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल. वैसे समय धन से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और खोया हुआ धन जो धन होता है वो फिर भी हासिल हो जाता है, लेकिन अगर ये बीता हुआ समय आप वापस नहीं ला सकते तो ये खो ही जाता है. तो इसीलिए याद रखिएगा कि भाई अब वी आर वेरी वेरी क्लोज टू द वीकेंड और ऐसे में आपने अपने लिए प्लान वैन बना ही लिया होगा, लेकिन इन प्लान्स में अपना प्लान ऐड करना बिल्कुल मत भूलिएगा. देखो ना, आ गई फिर से रिमाइंडर क्लॉक याद दिलाने के लिए कि भाई आपसे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. भाई जान है तो जहान है कि नहीं, लेकिन इसीलिए कहते हैं ना, जब फासन योर सीट बेल्ट, तो पहले अपनी कुर्सी की पेटी बांधो, उसके बाद किसी और की. जब आप अपनी उड़ान भर रहे हैं भाई, अपनी उड़ान भरने के लिए आपको इन बातों को याद दिलाने के लिए मैं काशिका आ चुकी हूँ. 12 बजे तक आपका मेरा साथ बना रहेगा. कशिश फूड्स के सौजन्य से आपके लिए ये बिल्कुल मुमकिन हो जाता है सफ़र 10 से 12 बजे के दरमियान. और आज कुछ ऐसा करते हैं कि आज एक्सपर्ट कोई नहीं, लेकिन आप हमारे एक्सपर्ट हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ बस थोड़ी देर बाद मैं लाइन्स खोलूँ और आपसे आपके भाई या बहन से रिलेटेड कोई ना कोई बात पूछूं. कुछ भी हो सकता है, कैसे आपको उन पे इतना प्यार आया, कैसे आप एनॉय हुए, या कैसे कुछ ऐसी घड़ियां हैं जिनको आप इस समय मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं. आप 0800 हम पर कॉल कीजिएगा जब एक मैं बहुत अच्छा सा रक्षाबंधन का गाना बजाऊं. लेकिन अभी के लिए आपको एक गाने की तरफ लेके चलती हूँ, एक ऐसी एक्ट्रेस की तरफ लेके चलती हूँ जिसने अपना इतना बड़ा she was called the सुपर हीरोइन ऑफ बॉलीवुड. इन्होंने कमाल कर दिया था और ये थी नन अदर देन श्रीदेवी जी. आज इनकी बर्थ एनिवर्सरी है और ऐसे में इसे हम आपके साथ सेलिब्रेट भी कर रहे हैं. चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल से ट्रैक की तरफ जो उनके लिए उनकी बहुत महत्वपूर्ण मूवी थी.
0: बचाओ क्या

0: एक्सपर्ट्स अड्डा।
1: आज हमारे एक्सपर्ट आप हैं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप ज़रूर मुझे कॉल करें 0800 00 हम पर और बताएं कि आप कितने ज़्यादा एक्सपर्ट थे और आपको लगता था कि आपकी एक्सपर्टीज़ जो थी वो आपके भाई या बहन ने फुस कर दी, फिस कर दी। ऐसे में कोई मेमोरी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप हमें कॉल कर सकते हैं 0800 00 हम पर। और दो लकी विनर्स $250 कैश लेके जाने वाले हैं। ये ड्रॉ 28th of August के दिन होने वाला है, सो ये कैश जीतने के लिए आपको मुझे यानी कैश को फ़ोन करना पड़ेगा। ऑल राइट, यहाँ तो ये तो मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे आप सोशल मीडिया पे यानी कि फेसबुक के पेज पे भी पहुँच सकते हैं और $300 कैश जीत सकते हैं। कोई ऐसी मेमोरी, कोई ऐसी चीज़ जो आपकी एक्स्ट्रॉर्डनरी मेमोरी है, जहाँ पे कोई आपके पास कुछ उनकी ऐसी कीमती चीज़ें जो आपने उनसे छुपा ली, चुरा ली, आपको उनसे मिली, वो आपके पास अभी भी है, अगर वो है उसकी फ़ोटो खींचो, हमारे फेसबुक के पेज पे आओ, उसके साथ एक फ़ोटो अपलोड करके 2-3 सेंटेंसेस में अपनी मेमोरी हमारे साथ शेयर करें और कोशिश करके अपने भाई या बहन को टैग ज़रूर कर दीजिए। $300 कैश जीतने का ये सुनहरा मौका है आपके लिए। जो विनिंग स्टोरी होगी वो फ्राइडे 28th of August के दिन उनको $300 कैश भी मिलेगा और उनकी स्टोरी रेडियो पे भी पड़ी जाएगी। चलो, यहाँ तक तो हम पहुँच ही गए हैं, लेकिन अब आपकी कॉल का मुझे इंतज़ार है। जल्दी करो और कॉल करो, क्योंकि ये मौका मैं चाहती हूँ आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए। जब मैं कहती हूँ ये मौका, ऐसे मौके हमारे पास बहुत कम आते हैं जहाँ हम कहते हैं कि आपको ये जीतने का मौका मिल रहा है, तो ये खूबसूरत मौका आप बिल्कुल मत खोइएगा। आई एम श्योर इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी मेमोरीज आपकी डेफिनेटली होंगी, और ऐसे में कुछ ना कुछ मैंने अपने भाई के बताया था ना आपको बारे में, जहाँ पे वो लंदन गए थे पहली बार, मैंने कहा भाई मेरे लिए कुछ लेकर आओ, मुझे उस समय नेल बाइट करने का शौक होता था, तो मैंने कहा मेरे लिए आर्टिफिशियल नेल्स लेकर आओ, काफ़ी महंगे होंगे उस दौरान में, बट ही मस्ट हैव गॉट देम, ही गॉट देम फॉर मी। आज तक वो नेल्स मेरे पास हैं, टूटे फूटे जैसे भी हैं, मगर आई हैव केप्ट देम विद मी। सो यू नो सम थिंग्स लाइक दिस डेफिनेटली हेल्प यू एक्चुअली एंड रीलिव योर मेमोरी, है ना। चलो, ये तो मेरी मेमोरी हो गई, बट आप कुछ शेयर करना चाहते हैं 0800 00 हम पर, ये मौका मत खोइएगा। लेकिन अब थोड़ी देर में ऑफिस शाउट आउट भी मैं लेकर आने वाली हूँ। अगर आप 5599 पर टेक्स्ट करेंगे तो मैं आपकी कॉल पे अगर आप करना चाहें डेफिनेटली, नहीं तो वी आर हैप्पी टू इवन टेक योर मैसेज ऑन द टेक्स्ट प्लेटफॉर्म 5599 पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं।
0: माय टाइम विद कशिका,
2: आजकल चल रहा है बहुत न्यूज़ में, हैप्पी तो नहीं।
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा,
3: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
4: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है temperature.
5: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप, west side है ना, west side of Auckland है ये. We have lots of fun basically with the cold weather.
4: कौन है?
5: Hunua और Waitakere.
4: अच्छा, Hunua west में?
5: किधर है Hunua?

0: Living.
1: Weekdays 6 to 10 a.m.
2: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
3: क्यों, क्या हुआ?
2: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
0: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.
4: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा. न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी. जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा.
5: मुझे भी
4: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड. खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए.
6: Proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
7: Indelible Homes, your building expert.
8: For 30 years, Avaara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, Ghee Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avaara.co.nz.
9: Dinner is sorted with fresh deals at New World North Island. Get skinless chicken thigh fillets, $17.99 per kilo. And Pam's carrots or brown onions, select size, $3.49 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
1: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
10: Office shout out.
11: तो ऐसे में मेरे पास पुके कोई से एक रिक्वेस्ट आई है एंड आई विल ट्राई एंड मेक दिस पर्सन फील वेरी स्पेशल, बट वो थोड़ी देर के बाद. लेकिन अभी के लिए आपके लिए ऑफिस शाउट आउट में मैं बता देती हूँ कि ये कॉल आ रही है मेरे पास टीना आपकी फ्रॉम वगार किचन. वगार आप अपना काम कर रही हैं और आप हम हमेशा लगा के रखती हैं. थैंक यू सो मच फॉर दैट. अच्छा चलो, आपने तो डेफिनेटली मुझे मैसेज कर ही दिया है, लेकिन इसी के साथ साथ आप सबको एक और तरीका है मैसेज कराने का. आप पूछ रहे होंगे आप क्या है. न्यूजीलैंड फैशन वीक जो है ये होने वाला है, और ऐसे में ये न्यूजीलैंड फैशन वीक में इंडिया का फैशन कल्चर क्रिएटिविटी भी ऑन बोर्ड है, यानी कि खादी बियॉन्ड बॉर्डर्स. यहाँ पे चार मेजर इंडियन डिज़ाइनर्स ऑकलैंड आ रहे हैं और वो शोकेस करने वाले हैं कुछ हैंड स्पन हैंड वोवन फैब्रिक जो कंटेम्प्रेरी होगा फैशन. लेकिन ये मेजर इंटरनेशनल फैशन नेम जिनका नाम है राजेश प्रताप सिंह, ये भी आ रहे हैं. अगर आप इनकी सोफिस्टिकेटेड टेलरिंग, इनकी डिज़ाइन, इनकी क्राफ्ट को देखना चाहते हैं, दिस इज़ द टाइम जहाँ पे ये 18th of August के दिन 8:30 पे होने वाला है एट द क्वींस वॉर्फ एट की स्ट्रीट. ये इंटरनेशनल डिज़ाइनर किस तरह से जो हैं शोकेस करने वाले हैं, ये आपको सुनहरा मौका मिलेगा देखने के लिए. बस आपको क्या करना है, 5599 पे खादी लिखना है और फिर आपका नाम हम ड्रॉ में ऐड करेंगे फॉर अ डबल पास. nzfashionweek.com/tickets/khadi के जरिए आप पूरी इंफॉर्मेशन पा सकते हैं.
1: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

चलिए माहौल बनाने के लिए मेरे पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैसेज आया है और ये मैसेज है सिद्धार्थ देसाई आपके लिए। आप आज अपना 25th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सिद्धार्थ एक बहुत ही काइंड, रिस्पेक्टफुल एंड केयरिंग यंग मैन आप बन चुके हैं और आप इंटरेस्टेड हैं हिस्ट्री में, इन कम्युनिटी सर्विसेज, और आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्रैक, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना डेडिकेट किया है आपकी मम नीता ने, आपके डैड हार्दिक ने, आपके भाई सूरज ने, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने और जितना भी देसाई परिवार है, इन सभी की ओर से एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग आपके लिए। बहुत ही इंस्पायरिंग गाना है ये एंड आई एम वेरी श्योर आप अपना बर्थडे जो है बहुत ही धूमधाम से, क्योंकि ये सिल्वर जुबली है आपकी, तो बहुत ही खूबसूरती के साथ इसको आप सेलिब्रेट करे होंगे। टीम हम की ओर से भी अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू सिद्धार्थ। सिद्धार्थ देसाई, दिस सॉन्ग गोज आउट टू यू बाय us and of course a dedication to you by your parents. Big.

0: Get ready.
1: Passengers, stand by. The next hump boarding call could be your ticket to paradise. Listen out and get ready for your chance to win 2 return air tickets to Vanuatu and $1,000 spending money.
2: Thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
3: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
4: Eat better, live better, and we want you to enjoy better and have a lovely, lovely life. जहाँ पर एक छुट्टी आपके लिए कितना बड़ा रंग लेकर आ सकती है आपके जीवन में. और ऐसे में 2 return tickets to आपके लिए Vanuatu, और वो Solomon Airlines के जरिए सौजन्य से आपको मिल रहा है, along with $1,000 of spending money. तो आपको क्या करना है, अभी तो बोर्डिंग कॉल आई नहीं है आपकी, बोर्ड नाउ का जैसे ही अनाउंसमेंट होता है आपके पास लगभग 30 मिनट्स हैं जहां पर आप रोवा ऐप के जरिए जाके बोर्ड नाउ करके क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं अपनी एंट्री. एंड दैट्स नॉट येट ओवर, क्योंकि आपको बता दूं ये एक्सपीरियंस कमाल का होने वाला है. Vanuatu एक ऐसी खूबसूरत जगह है जिसे मैं कह सकती हूँ आफ्टर फिजी यू वुड बी काउंटिंग इट एज लाइक वन ऑफ दी ट्रॉपिकल डेस्टिनेशंस. ठीक है, अगर इस पैराडाइज में आपको जाना है तो बस वेट करते रहिए हमारा, जब बोर्डिंग कॉल के लिए बोर्ड नाउ का अनाउंसमेंट आएगा. अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट बात है, अगर किसी को ये चैलेंज है कि बोर्डिंग कॉल आप नहीं कर पा रहे, तो गीता नायर आपको BC नहीं लिख के भेजना था, आपको वेट करना है. और आपको BC जब आप लिखते हैं तो आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के ज़रिए उस पर्टिकुलर टाइम पे ही आपके लिए वो एक्टिव होगा आपका, आपकी एंट्री. सो उसका इंतज़ार ज़रूर करिए. कीप हमिंग.
5: 80s के रेट्रो गाने.

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Hum. A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
2: Indelible Homes, your building expert.
3: बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes Bombay biryani ho ya butter chicken korma ya chana masala recipes chahe vegetarian ho ya non vegetarian Shan recipe mixes har dish ko bilkul ghar jaisa banati hain to intezar kis baat ka aaj hi apne nazdeeki supermarket se Shan recipe mixes khareediye Shan Foods asli swad har ghar ke liye
4: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए ई-वेस्ट हो या कोई अजीब चीज तो उसे सीधा बिन में ना डालें पता करें कि वो कहां जाना चाहिए oaklandcouncil.govt.nz/whereitgoes पे तमाकी तुरुकी ओल्टीगे द ओकलैंड
5: सुनो बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी
6: हाँ मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर ले लें
5: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए मेरे दोस्त ने भी की थी अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए अब रेंट भी आ रहा है
6: पर डेवलपमेंट के पैसे
5: आपको नहीं लगाने NZPMI सब संभाल लेगा NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.go.nz या कॉल 0800-4-NZPMI
7: 99 Centaur here, with more 99 cent deals this week at Pack and Save. Yeehaw! Ah, come here. Ah, gotcha. Yeah, this isn't my first Rodelio. 99 cent week, on now at Pack and Save.
1: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
2: Indelible Homes, your building expert.
8: बबीता थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार
9: क्यों क्या हुआ
8: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था $20,000 चाहिए थे बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत एक हफ्ता हो गया नो रिस्पांस फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है
10: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री कॉल 0800 LOGIC G दैट्स 0800-564-424
11: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
12: चलो सपनों की दुनिया में आपको मैं लेके चलती हूँ और जब मैं सपनों की दुनिया के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ एक इम्पॉर्टेंट बात है ये जो चींटियाँ होती हैं ना माय गॉड कभी कभी तो ये जो चींटियाँ होती हैं ना इरिटेट करने लगती हैं बट एक बात बताऊँ आपने कहा आपके सपनों में चीटियाँ आई ये छोटी छोटी अनोयंस जैसे कि मैं कर रही थी अपनी कुछ छोटी छोटी बातों पर होना शुरू हो जाता है और चीटियाँ जो होती हैं एक्चुअली देखा जाए तो एक कंसर्न एक इशू को जो बहुत बड़ी नहीं होती है उसको आप बिग डील बना देते हैं और ऐसे में इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं ऑल्टरनेटली ये जो एंट्स होती हैं या ये जो चीटियाँ होती हैं आपको अवेयरनेस बताती हैं कि आपका जो अनोइंग बिहेवियर है टुवर्ड्स समथिंग और समवन गेट्स वेरी वेरी कंपल्सिव और ऐसे में अगर मैं इसके लिए बता सकती हूँ आपको कि अगर नेगेटिवली आप सोचें तो ये साइन जो है आपको बताता है कि ओह आई हैव टर्न्ड इनटू अ स्नॉब बट लेट्स नॉट से दैट एंट्स या चीटियाँ जो हैं रिफ्लेक्ट करती हैं क्या आप किसी तरह से किसी भी सिचुएशन में अनॉय नहीं होते हैं किसी चीज़ पे आपको छोटी छोटी बातों पे नाराज़गी नहीं होती, और ये कंसर्न्स जो आपकी अनोयंस की होती है आपकी लाइफ में फिर अटैक करना कम कर देती हैं। कभी इस चीज़ को आप ट्राई ज़रूर कीजिए कि आप कभी थ्रेटन फील कर रहे हैं, एम्बेरस्ड फील कर रहे हैं, तो डोंट गिव इट अप। एक विश होती है आपकी जहाँ आप किसी चीज़ के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर आप कोशिश करते हैं उस चीज़ को पूरा करने की, है ना। तो बस इन्हीं सब बातों के साथ साथ एक बड़ी प्यारी सी डेडिकेशन आ रही है, और ये डेडिकेशन आ रही है आदिति आपके लिए। आप मुझे इस समय ईस्ट ऑकलैंड से सुन रही हैं और आपने ये डेडिकेशन की है फॉर योर हस्बैंड अनूप। तो गाना सुनते हैं दिल से दिल तक का ये ब्यूटीफुल सा ट्रैक आदिति आपकी ओर से आपके हस्बैंड अनूप के लिए। सुनिए और झूमिए।
9: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: यू बाई 0800 रचना। इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
1: तो आपको भी एक ऐसे गाने की तरफ लेके चलती हूँ जहाँ पर श्री अम्मा यंगर अयप्पन जो है, इनका रियल नेम श्री देवी जो है, इनका एक कमाल की एक मूवी थी जिसमें वाकई जो इनका कैरेक्टर था, इनकी जो फिल्म थी, एंड इट वाज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। दैट मूवी यश चोपड़ा की जो फिल्म थी, इतनी कमाल की फिल्म थी, इतनी कमाल की कहानी थी, लेकिन उस समय वो कहानी इतनी ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं की गई थी। लेकिन आज अगर हम मुड़ के देखते हैं, इट वॉज अ मास्टरपीस, और इस मास्टरपीस में चार चांद लगाए थे नन अदर दैन द लेट बर्थडे गर्ल विच इज श्रीदेवी। एंड इन्होंने वाकई ही कमाल कर दिया। इनका करियर स्पैन किया था फ्रॉम द यू नो फॉर 50 ईयर्स, आई कैन से दैट। जस्ट एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट 1967 में, शी इज वॉज 1963 बॉर्न, या सो ये इन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू किया था फ्रॉम द एज ऑफ 4, और ये काम करती चली गई थी। एंड या शी डिड प्ले अ मेजर मेजर रोल टिल 2017 मॉम फिल्म जो उन्होंने की थी, जिसकी वजह से इनको नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस भी मिला था। ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि एक इनकी यू नो किस हालात में इनकी डेथ हुई, इन द गेस्ट रूम ऑफ जुमेरा एमिरेट्स टावर्स होटल इन दुबई, एक एक्सीडेंटल ड्राउनिंग के जरिए। बट उनको याद करते हैं हम उनकी अदाकारी के साथ, उनके गानों के साथ, उनकी शोखियों के साथ। एंड शी वॉज नेम्ड द फर्स्ट सुपर स्टार आफ्टर आई थिंक अमिताभ बच्चन एज अ फीमेल लीड। लेट्स एन्जॉय दिस।

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: The highs of 18 overnight, temperature of 10. आज का forecast बताया जा रहा है, low clouds हैं, drizzly showers जो हैं आप expect कर सकते हैं. दोपहर खूबसूरत निकलेगी. वैसे it feels like 17 degrees right now. 5:46 पर sunset बताया जा रहा है. My time discussion. Mid morning
2: massage. Ladies and gentlemen, दिल थाम के बैठिए क्योंकि आ रही है.
3: My time with Kashika.
1: स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 11:04 हो गए. देखिए एक बटन एक्स्ट्रा दब दब गया, बट कशिश फूस के सौजन्य से आपके लिए माय टाइम लेके 10 से 12 बजे के बीच में मैं आ जाती हूँ. और ये तो मिड मॉर्निंग मज़ा इसका वक्त है, और ऐसे में 11:04 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में. आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं, अपना कुछ सोचा है आपने, क्या करने वाले हैं? वैसे आपको बता देती हूँ कि हमारा हम बोर्डिंग कॉल कभी भी बच सकता है, यानी कि वो मौका होगा आपके लिए कि आपको फटाफट जाना है और पहुँच जाना है हमारे रुवा ऐप के ज़रिए. जाकर आपको डाउनलोड करना है अगर नहीं किया रोवा ऐप, और फिर आप वोट कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं आप अपनी एंट्री. प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने कहा था कि समय धन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है. खोया हुआ धन तो फिर भी मिल जाता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, और ऐसे में आपका समय बहुत ज़्यादा हमारे लिए अनमोल है. इसी नोट पर चलिए अब वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. आपने अभी भी ट्यून इन किया है तो आपका साथ निभा रही हूँ मैं काशिका 12 बजे तक.
0: जाओ क्या?

Eat better, live better. लेकिन एक चीज जरूर होती है जो हम लोग कभी कभी फॉरगेट कर जाते हैं, भूल जाते हैं, और ये विटामिन की टैबलेट होती है जो हम सुबह के समय लेते हैं, और फिर दोपहर को कैल्शियम लेते हैं, रात को विटामिन डी लेते हैं, परहैप्स एक हर्बल कैप्सूल लेते हैं जस्ट बिफोर गोइंग टू बेड. लॉट्स ऑफ पीपल यू नो दे टेक सेवरल सप्लीमेंट्स और ये एक आपके डेली रूटीन का पार्ट बन जाता है, बट बॉडी इज नॉट लाइक अ शॉपिंग बास्केट. मैं यही कह सकती हूँ क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स ऑटोमेटिकली आपका मतलब होता है हेल्थ से रिलेट किए जाते हैं. कई सप्लीमेंट्स जो आप एक साथ लेते हैं ये अननेसेसरी होती हैं, डुप्लीकेशन होती है, इंटरफेयर करती हैं विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिसिन या न्यूट्रिएंट्स, और कभी कभी कुछ आपके दूसरे लेवल्स ही बढ़ा सकती है. ये प्रॉब्लम और हार्ड हो सकती है जब आप कोई मल्टीविटामिन लेते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि आप अलग से कैल्शियम भी ले रहे हैं, आयरन भी ले रहे हैं, विटामिन डी भी ले रहे हैं, उसमें शायद सेम न्यूट्रिएंट्स हों. ऐसा होता है और ये सप्लीमेंट्स जो होते हैं ये बेनिफिट करते हैं इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस. आपके मेडिकल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है और कि आपको वो सप्लीमेंट्स ज़रूरी हैं या नहीं हैं, उनके बेनिफिट्स हैं कि नहीं हैं. बट दिस डज नॉट मीन के सप्लीमेंट्स बैड होती हैं, बुरी होती हैं. कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं, कुछ जेन्युइनली लोगों को पता चलता है, एक बड़ी कंसर्न होती है, कुछ प्रोडक्ट्स इजीली मिल जाते हैं, लेकिन ये मार्केट किए जाते हैं ये नेचुरल है, इसमें एनर्जी है, इम्यूनिटी, हेयर, बोन, इल यू नो आपके इलनेस से रिलेटेड. लेकिन वन ऑफ द ईजीएस्ट मिस्टेक्स जो हम करते हैं, एंड इट्स अ वेरी वेरी ऑब्वियस वन, एक कोई कभी भी चार डिफरेंट बॉटल्स आप खरीदते हैं विदाउट रियलाइजिंग उसमें सेम न्यूट्रिएंट्स हैं, तीन चार में से तीन में. एक मल्टी विटामिन जो होती है उसमें विटामिन डी और कैल्शियम हो सकती है. एक सेपरेट बोन हेल्थ सप्लीमेंट जो आप विटामिन डी के साथ लेते हैं, कोई और प्रोडक्ट आप लेते हैं इम्यूनिटी, एनर्जी, जनरल वेलनेस के लिए. तो ये सप्लीमेंट जब आप लेते हैं आप काउंट नहीं करते कि कितनी बार आपके अंदर बॉडी में ये गए हैं. ये जो लेबल्स होते हैं बॉटल्स पे डेफिनेटली चेक करने के लिए होते हैं. इन्हें डेफिनेटली आपको चेक करना चाहिए कितने मल्टी विटामिन हैं. विटामिन ए ऑफन, जैसे फॉर एन एग्जांपल हम यूज़ करते हैं क्योंकि इट्स लाइक एन एडल्ट अपर लिमिट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. इसको कहते हैं कि रेटिनॉल के लिए बहुत अच्छा रहता है.

0: और एक अच्छा सोर्स होता है, बट आप कोशिश कीजिए इसे एक मेंटल या सॉरी मेडिकल सुपरविजन के ज़रिए आप ले सकते हैं। इसका हाई इंटेक शायद आपको प्रॉब्लम दे सकता है, आपके लिवर में इफ़ेक्ट कर सकता है। विटामिन डी ये एक प्रॉब्लम है एक्सेसिव डोज के लिए, और कहा जाता है कि अगर आप इसकी अपर लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं तो डॉक्टर्स कई बार कहते हैं हाई डोज इसलिए देते हैं क्योंकि उनको मेडिकल रीज़न पता होता है, लेकिन एक्सेसिव इनटेक इसका लेने से आपके किडनी में फ़र्क पड़ सकता है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। लेसन इज़ नॉट दैट कि हर किसी को विटामिन ए या डी नहीं लेना है, रिस्क होती है, बट आपको वो बॉटल ज़रूर पढ़नी होती है। अब वो कैल्शियम आयन की अगर मैं बात करती हूँ, सिमिलरली ये एक इनका एग्जाम्पल है एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड, यानी कि आप ये सप्लीमेंट्स स्टॉप कर सकते हैं, मेडिकली आप पता कर सकते हैं कि आपके लिए ठीक है कि नहीं है। दो मिनरल जैसे कि कैल्शियम और आयन, ये कम्पीट करते हैं इन एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी के लिए, और हो सकता है डिफरेंट टाइम्स अगर आप इसको ले लें तो बेटर रहेगा। कैल्शियम इंटरफेयर करती है विद डिफरेंट मेडिसिन एज वेल, तो यू हैव टू गिव दिस अ शॉट। आपकी मॉर्निंग में आप कुछ टैबलेट्स लेते हैं, बट मेक श्योर यू आर रीडिंग इट इनफ। आयन के लिए कहा जाता है, इसकी डेफिशिएंसी बहुत लोगों को यहाँ पर होती है, इट्स अनदर हेल्थ कंडीशन, बट इसका राइट स्केड्यूल आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक आयन की प्रेपरेशन आपके ओवरऑल ट्रीटमेंट के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और पेशेंट अगर आयन लेता है तो आपको पहले डॉक्टर को कंसल्ट करना होता है, उसके बाद आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। कुछ लोग ये मेडिसिन लेते हैं क्योंकि आपकी ब्लड प्रेशर, आपकी थायराइड, आपकी डायबिटीज़, आपके हार्ट कंडीशंस, आप कुछ लोग ब्लड थिनर के तौर पे लेते हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल।
1: Attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter code now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
2: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
3: Let's go.
2: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
4: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो,
5: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
6: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
7: 19 साल बाद शिवम इज बैक, अ मैन हॉन्टेड बाय ग्रीफ एंड लॉस, सर्चिंग फॉर अ पर्पस इन लाइफ। आवारापन 2 स्टारिंग इमरान हाशमी एंड दिशा पाटनी।
8: मौत मेरा उससे एक पुराना रिश्ता है, एक कर्ज है जो मुझे चुकाना है।
7: आवारापन 2 रिलीजिंग इन सिनेमास ऑन अगस्त 14th। Distribution partner Forum Films. Rating TBC.
9: Take your furry friends back to their roots. Add a little Jimbo's. Raw meat mixed into mealtime. Feed as a main meal, topper or treat. Get yours now in your supermarket pet fridge and give your pets the Jimbo's they deserve.
10: आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को उनकी भाषा में मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है। अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है। कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800-862-342 या विजिट करें asianfamilieservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट।
11: At Bunnings, we've got Father's Day sorted. Jumbuck 3-piece barbecue tool set, only $10.20. Trojan 33-piece keyring compact toolkit, just $45.98. Make Dad's Day at Bunnings.
12: Bunnings Warehouse.
11: Lowest prices are just the beginning.
13: Craving ho rahi hai. Us thick,
10: और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल, 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री, परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी टिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए, या बस सीधा टब से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस, ऑलवेज देसी, अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड. Bring home the taste of tradition. Kashish, natural yogurt.
3: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
10: Ladies and gentlemen,
12: got airplane tickets with your name on them.
10: This is the boarding call for Solomon Airlines flight number HUM 104.2 FM to Vanuatu. Boarding is now in progress. Yeah. Please proceed to Rova and enter board now.
2: Thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
13: Six-word story.
0: ऑल राइट, मेरे आज की सिक्स वर्ड की जो स्टोरी है थोड़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ी प्यारी सी है, लेकिन हाँ, इन्होंने लिख के भेजा है कि लिसन केयरफुली, आई नेवर ट्रस्टेड यू. ओ माई गॉड, हाउ कैन दैट बी दैट यू आर नॉट ट्रस्टेड. ये किसके लिए आपने लिख के भेजा है भाई, बता दीजिए. क्या आपका नंबर है? 2040 आपने लिख के भेजा है. लिसन केयरफुली, आई नेवर ट्रस्टेड यू एंड ओके, आई गॉट योर टेक्स्ट. आपने कहा दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू मी, बट दिस इज़ रिलेटेड टू द मेडिसिंस आई वॉज टॉकिंग अबाउट वाइल अगो, कि सप्लीमेंट्स आप लेते हैं. तो आपने ये कहा कि दिस इज़ रिलेटेड, द टेक्स्ट ऑफ सिक्स वर्ड स्टोरी इज़ रिलेटेड टू वॉट यू वर टॉकिंग अबाउट काशिका, दैट ये सप्लीमेंट्स हम लोग नहीं, आई डोंट गेट कैरिड अवे बाय दिस, आई नेवर ट्रस्टेड देम. ओके, आई गॉट यू नाउ, थैंक यू फॉर योर क्लैरिफिकेशन. कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं कुछ बोल रही हूँ और आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा फीलिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी रिसर्च काफ़ी ज़्यादा कर कर आती हूँ, सो दैट आपको सबसे ज़्यादा उससे गेन हो. लेकिन एक और चीज़ जो है आपके लिए मैं लेकर आने वाली हूँ, उसे मिस आउट नहीं कर सकते, बट इन अ बिट.
3: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

ये तो हम जानते हैं कि न्यूजीलैंड इज वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज टू लिव इन, लेकिन अटेम्प्ट्स हैं ऑफ फॉरेन इंटरफेरेंस जो टारगेट कर रहे हैं न्यूजीलैंड की पॉलिटिकल फिगर्स को एट बोथ नेशनल एंड लोकल लेवल्स, और ये कॉन्स्टेंटली होता जा रहा है. तो कंट्री की इंटेलिजेंस के चीफ ने बताया है दैट दे प्रिडिक्टिंग दैट दिस विल कंटिन्यू थ्रू आउट द इलेक्शन कैंपेन.

0: शिकार।
1: वाह,
2: हाउ
1: अद्भुत।
2: अद्भुत बात तो ये है कि रवितेज देव जो है एक इनक्रेडिबल लाइव बैंड लेके आने वाले हैं, जहाँ पे फ्यूजन भजन, कीर्तन, डिवोशनल म्यूजिक आपके लिए लेकर आ रहे हैं, विद सम कंटेम्प्रेरी अरेंजमेंट्स। टैलेंटेड वोकलिस्ट होंगे यहाँ पे, म्यूजिशियंस जो है अकम्पलिश्ड हैं, वो एक वाइब्रेंट लाइव कॉन्सर्ट आपके लिए तैयार कर रहे हैं, विच इज़ क्यूरेटेड बाय NZ कल्चरल ट्रस्ट। और ये स्पेशल इवेंट जो है, इट्स बीइंग हेल्ड इन एड ऑफ गिफ्ट ऑफ लाइफ फीजी। तो ये 22 अगस्त को, नेक्स्ट सैटरडे को शाम 7 बजे वैदिक सेंटर पापाटोइटो में होने वाला है। बच्चे अंडर 5 आर फ्री, $30 की टिकट है। eventbrite.co.nz के जरिए आप टिकट खरीद सकते हैं।
3: Attention everyone, हम बोर्डरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं, और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग है हॉट सीट पर।
4: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
3: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
4: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
3: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बोर्डरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए, और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं।
4: सबसे बेस्ट 2 परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
3: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
5: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स, बॉटनी टाउन सेंटर।
6: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
7: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
6: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
7: Available at selected branches. T's and C's apply.
8: पूजा की थाली में राखी सजाते हैं, धागों के जुड़ने से दिल मिल जाते हैं, माथे पे रोली का तिलक लगाते हैं और मीठे की मिठास से अपनों को करीब लाते हैं। इस रक्षाबंधन दीजिए अपने अपनों को कुछ ऐसा जो उन्हें उनके होने का एहसास दिलाए। सोना संसार के साथ, जहां आप पा सकते हैं बेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन फॉर योर लव्ड वंस। सोना संसार, 190 स्टॉडर्ड रोड माउंट रॉस्किल और 138 ग्रेट साउथ रोड पापातोइतोइ। सोना संसार, संसार रिश्तों का।
9: When life becomes overwhelming, you don't have to face it alone. For over 28 years, Asian Family Services has supported Asian communities across New Zealand, offering mental health, addiction, gambling, and social support by professionals who understand your language and culture. Now launching Reach In, Reach Out, a national campaign to encourage open conversations about mental health, because a simple conversation can make a real difference. Call Asian Helpline 0800-862-342 or visit asianfamilieservices.nz for free and confidential mental health support.
10: Hi everyone, New Zealand's 2026 general election is coming soon, and this time it's different. You now need to enrol before voting starts. We're out telling everyone, aren't we, pup?
11: Remember, if you want to vote, you need to enrol first. Do it by 25 October at vote.nz. If you're already enrolled, you'll receive a pack from us soon. Just open it up, check your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.
12: So, you've been looking at adding a modular home to your property.
13: Yes, but I want to subdivide too.
12: Zelo by Ashcroft Homes. A range of stylish modular homes packed with premium inclusions with full subdivision support if you need.
13: Really?
12: Yep. From planning and consents through to construction, the team can help manage the entire process.
13: Zelo. I like the sound of that.
12: Discover the Zelo difference at zelo.co.nz.
14: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट, squirrel.co.nz।
2: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
15: Rescue me, recycle me.
2: रेस्क्यू में, रिसाइकिल में आज मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया, जो कल आपने मेरे को कॉल करके बताया था। आपने कहा था लेफ्ट ओवर सब्जी की मैं पाव भाजी बना देती हूँ। अभी एक बहुत ही ब्यूटीफुल महाराष्ट्रियन फूड है जो काफ़ी सारी वेजिटेबल्स के साथ हम ऐड कर सकते हैं। तो भाई, व्हाट यू हैव एक्सप्लेन टू मी इज एक कप आपका लेफ्ट ओवर मिक्स्ड वेजिटेबल्स था, आपने लिया और मीडियम हीट पर आपने 2 टेबलस्पून आपने ऑयल डाला, उसमें ज़ीरा डाला और आपने 1 कप फ्रेश टोमाटो प्यूरी डाला, चॉप किए हुए टमाटर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सारी की सारी सब्जियों को आपको हल्का हल्का ब्लेंड करने के बाद आपको इसमें ऐड कर देना है और लाल मिर्च का पाउडर, गर्म मसाला, हल्दी, नमक, इन सबको ऐड कर दीजिए। आपका जब मसाला रेडी हो जाता है तो जो लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी है वो आप ऐड करें और पाव भाजी का मसाला आराम से यहाँ मिल जाता है, उसको ऐड कर दीजिए। एक थिक कंसिस्टेंसी पे जब आपकी सब्ज़ी पहुँच जाती है तो ये मैश्ड वेजिटेबल्स को आप फोक के साथ, कांटे के साथ ठीक कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी अगर आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं। हरी मिर्च, हरा धनिया आप ऐड कर सकते हैं। 1 क्यूब बटर की तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसके बारे में बात करी और मुझे खूब पानी आ रहा है मुंह में। ओके भाई, रिलैक्स काशिका, अभी टाइम है। आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड सी व्हाट वी कैन गो अहेड एंड डू। एंड ऑफ कोर्स लेट्स नॉट फॉरगेट अनदर थिंग, एक खबर आ रही थी जहां 3 लोग अलोंग विद जिसमें एक मॉन्ग्रल मॉब का मेंबर भी था, उन्हें अरेस्ट किया पुलिस ने, जहाँ पे उन्होंने कुछ शॉटगन्स और कुछ ड्रग्स हेस्टिंग्स की एक रेड के दौरान मिले थे। अब ये बताया जा रहा है द कंसर्न इज दैट दे वर यंग चिल्ड्रन लिविंग इन दैट सेम एनवायरनमेंट। हाउ डू यू थिंक इस तरह से लोग इतनी बड़ी क्राइम कर देते हैं और जब बच्चे उनके साथ होते हैं तो क्या बच्चे उनको देख के ये सब नहीं सीखेंगे? ऑफ कोर्स यही सब कुछ सीखेंगे। लेकिन जब मैं बच्चों की बात करती हूँ, ऑर्मिस्टन सीनियर स्कूल के एक स्कूल बिजनेस प्रोजेक्ट पर मनी मेहम के नाम से एक बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट जो है ये बच्चों ने इसे पूरा किया और ऐसे में इन टीनेजर्स जो 4 थे उनकी बातचीत हुई विद ड्राइव शो की टीम सैंडी एंड रुस पे, रोवा एंड स्पॉटिफाई पे आप इन्हें सुन सकते हैं। आप 5599 पे अगर ड्राइव लिख के भेजें ये डिटेल्स आप तक पहुँच सकती हैं।
0: Dil se dil tak. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: यू बाई 0800 रचना। इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
1: जब बात कर रहे हैं अबाउट श्रीदेवी, तो भाई इतनी खूबसूरत एक्ट्रेस, इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेस, और बस इसी दुआ के साथ कि बस उनकी आत्मा को शांति पहुंचती रहे, मैं यहाँ से चलती हूँ। कल सुबह आपसे दोबारा मुलाकात करती हूँ। डू लुक आफ्टर योरसेल्फ्स। मौसम बदल रहा है और मौसम थोड़ा सा चेंज जो हो रहा है, ऑफकोर्स अभी आपको बताते ही चले जाएंगे, लेकिन हाँ बादल तो घेरे ही रहेंगे। तो अभी के लिए चलती हूँ, कल सुबह आपसे 10 बजे फिर मुलाकात करती हूँ। डू लुक आफ्टर योरसेल्फ्स। दिस इज़ काशिका साइनिंग ऑफ फ्रॉम दी हम स्टूडियो सेइंग कि कीजिए स्वीकार काशिका का नमस्कार। आज का दिन कहलाता है बृहस्पतिवार, गुरुवार, वीरवार, जो भी इसे कहना चाहें। आऊंगी फिर धमाल मचाने के लिए, आपसे मुलाकात करने के लिए कल सुबह 10 बजे। दिन कहलाएगा शुक्रवार। लुक आफ्टर योरसेल्फ्स। बाय।

0: driving you home?
1: The Drive Show with Sandy and Rusby.
2: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
3: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
4: वो भी आई लव यू वाला.
3: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ भी किसने बनाया. वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
4: अच्छा आप दिलजीत तो
3: आए आए बताओगे यार.
1: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manuko and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.

0: Adore your floor for less with Flooring Extra's Affordable Floor Makeover Sale. Save on their best-selling range, including 15% off all Quickstep. Visit your local Flooring Extra showroom today.
1: Flooring Extra. Adore your floor.
2: Face it, you're good in groups. So why not turn your superpower into getting a group of blood buddies together? Friends, whānau, workmates, book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood. Give plasma. Save lives.
3: South Auckland Driving Limited presents Bhajan Jams, live concert by Ravitesh Dev. Devotional fusion bhajans or kirtans with live band. Saturday, 22nd August, 7 p.m. Vedic Center, Papatoi. Tickets serve $30. Free entry for children under 5. Sare proceeds, Gift of Life, Fiji ko donate honge, providing free heart surgeries. Powered by Events Auckland, Maki and Party Hire. Tickets available from Eventbrite, Jay's Fresh and Valley Fresh, Papatoi, or Shiv Prasad, Kelston.
4: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है हाँ।
5: अच्छा
4: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
5: मिसेस सिंह
6: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
7: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहुहु कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz
8: डिब्बा खुल गया
9: भरत भाई टिफिन खुल गए छे
10: संजना का डिब्बा खुल गया
11: जब कशिश स्पाइसेस से खाना बनेगा तो सारे ऑफिस की नजर में रहेगा फिर यही तो होगा
10: डिब्बा खुल गया
11: हल्दी मिर्ची गरम मसाला कशिश मसाले अच्छे वाले बाय एनी कशिश प्रोडक्ट एंड बी इन द ड्रॉ टू विन अप टू $10,000 वर्थ ऑफ कैश प्राइजेस गोल्ड कॉइंस एंड गिफ्ट वाउचर्स टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
12: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
13: Good afternoon, I'm Glenn Stewart with the latest at midday. Wellington's mayor wants politicians to focus on the challenges ahead in the wake of the National Party leadership challenge. Chris Penk lost his portfolios with speculation he was working on behalf of other senior ministers. Standing next to rumoured real contender Chris Bishop, Andrew Little says they need to get it together.
14: The only message I would have for this Chris and every Chris in Parliament is this is a really important election and actually this is a country that is in desperate need of good, sound leadership.
13: More houses are selling at a loss.